0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान

किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 अगस्त 2026, सुबह के 5:53 और 28 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

आइए अब सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। प्रातः 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार। 6:02 पर समय रहेगा प्रोग्राम सुप्रभात का, आपके साथ लेकर रहेंगी भावना नायर। 7 बजे हिंदी में मुख्य समाचार आप सुनेंगे। 7:02 पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR लेकर शालिनी सिंह होंगी आपके साथ। 8 बजे हिंदी में मुख्य समाचारों का समय रहेगा और 8:02 पर भावना नायर के साथ आप रहेंगे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में।

साथ रहेंगी शालिनी सिंह। 10 बजे समय रहेगा अंग्रेजी में न्यूज हेडलाइंस का। 10:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक के साथ आप लेकर उत्कर्ष रहेंगे।

11:02 पर प्रोग्राम बॉलीवुड रील्स लेकर आपके साथ रहेंगी निशा। 12:00 अंग्रेजी में न्यूज हेडलाइंस आप सुनेंगे और 12:02 पर समय रहेगा वेस्टर्न म्यूजिक का उत्कर्ष के साथ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। 6 बजने वाले हैं, अब समाचार प्रसारित होंगे।

पेश है इस घंटे की मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक और वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में शुरू होगी। यह बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। यह बैठक आज और भोपाल में कल होगी। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। यह विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय ने बताया कि 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खुलेगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत एमएसवी फेज नूरे ओलिया पर हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों की लगातार घटनाओं को चिंताजनक बताया। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट पेसेंट ने कहा कि ईरान के साथ समझौता होने पर 1 से 2 दिन में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोला जा सकता है। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। कहा किसान हितैषी एथेनॉल नीति से किसानों की आय बढ़ेगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेताओं को सम्मानित किया। भारत के कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में 36 सदस्यीय भारतीय टीम हिस्सा लेगी। दल में 23 पुरुष और 13 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। ये थे इस वक्त के मुख्य समाचार। नमस्कार।

कुछ आवाजें अलार्म से नहीं, एहसास से जगाती हैं और उम्मीद है कि आज की सुबह आपके लिए वैसी ही एक आवाज बन सके। नमस्कार, सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ भावना नायर और अगले एक घंटे हम किसी दौड़ का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। आज की सुबह थोड़ी धीमी होगी, थोड़ी सुकून भरी होगी और शायद थोड़ी सी अपनी भी होगी। आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो, 5 अगस्त सुबह 6:07। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिल से दिल तक और कार्यक्रम है सुप्रभात। आज ना मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आज सुबह आपके मोबाइल पर सिर्फ एक ही नोटिफिकेशन आए, बताऊं क्या उसमें लिखा हो, आपकी जरूरत है, तो सबसे पहले मन में किसका चेहरा आएगा? सोचिए, सोचकर देखिए किसका चेहरा सबसे पहले आप सोचेंगे। सबसे पहले क्या आपके मन में चेहरा आएगा? माँ का, पिता का, किसी दोस्त का, या कोई ऐसा इंसान जो कभी कहता नहीं लेकिन इंतजार हमेशा करता है? आया मन में वो ख्याल? आज ना बस इसी एक वाक्य से शुरुआत करते हैं। आपकी जरूरत है। कोई ये कह दे कि आपकी जरूरत है तो क्या सोचने पर मजबूर हो जाते हैं आप? एक कहानी सुनाऊंगी आपको, एक पिता और बेटे की कहानी। सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो मेरे साथ।

पता है, हर सुबह की ना अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक लैंग्वेज होती है। कोई सुबह खिड़की से आती धूप से बात करता है, कोई चाय की पहली भाप से, और कुछ सुबह सिर्फ एहसास छूट जाती हैं। हो सकता है आप अभी वॉक पर निकले हो, किसी के घर में अभी इस समय टिफिन पक रहा हो, क्योंकि बच्चों के स्कूल के जाने का समय हो रहा होता है, बस आने वाली हो रही होती है, किसी ने पहले चाय की वो चुस्की ली हो, और कोई शायद अभी भी सोच रहा हो, 5 मिनट, वो 5 मिनट और मिल जाए और मैं थोड़ा और सो लूं। जहां भी है ना, आप जिस हाल में भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि यहां हम कोई भारी भरकम बात नहीं करने वाले, बस यही कहने वाले हैं कि आपकी जरूरत है, हमें आपकी हमेशा जरूरत रहती है। कुछ बातें ऐसी होती है ना जो शायद हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं मौजूद होती हैं, लेकिन अक्सर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। आज ना मैं आपको सुबह कोई खबर नहीं सुनाने वाली, बस एक एहसास सुनाना चाहती हूं कि आपकी जरूरत है। जब आपके फोन पर या कहीं से कोई संदेशा आता है कि आपकी जरूरत है, तो आप किसी अपने के बारे में ही सोचते हैं, जिसे बहुत दिनों से सिर्फ आप सोचते रह जाते हैं कि बाद में बात करता हूं कहकर टाल देते हैं। आज की सुबह ना उसी एहसास के नाम करते हैं। मैं अखबार पढ़ रही थी और वहां एक कहानी छपी थी। जैसे आपको कई कहानियां प्रभावित करती हैं, मुझे वो कहानी प्रभावित कर गई। और सच कहूं आपको, वही कहानी खत्म होने के बाद भी मन में चलती रही। आज उसी कहानी के कुछ हिस्से, कुछ अपनी बातें, कुछ आपकी बातें, और साथ ही ये गीतों का सफर जो सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो, भावना के साथ।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

सच में पता है आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप घर से निकले हों, दुनिया की भागदौड़ में ऐसे उलझ गए हों कि कभी कभी घर लौटते तो हैं लेकिन घर वालों तक पहुंच ही नहीं पाते। आज जिस कहानी की मैं बात कर रही हूं ना, उसमें एक बुजुर्ग पिता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगा दी। बेटा विदेश में बस गया, हर महीने पैसे जरूर भेजता है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है, सुविधाओं की भी कोई कमी नहीं है, घर में सब कुछ है। कहीं ना कि इस चीज की कमी रह गई या उस चीज की कमी रह गई, कुछ नहीं, सब कुछ है। लेकिन पता है एक चीज की कमी है और वो है अपनापन। कहानी में एक दृश्य है, सोचकर देखिएगा। बाबूजी पार्क के बेंच पर बैठे हुए हैं, दूर बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं। कोई बच्चा स्विंग पे है, कोई ग्रुप में खेल रहा है, कोई छुपन छुपाई खेल रहा है, बच्चे चहक रहे हैं, पार्क में हरियाली है। बाबूजी भी सबको देख रहे हैं, सारे बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं। इंतजार बेटे क्या एक फोन का, शायद आज वीडियो कॉल आएगी, शायद आज बिजी होगा, कल फोन आएगा, लेकिन कल भी फोन नहीं आया, शायद आज रात को आ जाएगा। बेटा पूछेगा, बाबूजी आज दिन कैसा रहा, बाबूजी आपने कुछ खाया कि नहीं खाया, बाबूजी कोई और जरूरत हो तो भिजवा दूं। इसी सोच के साथ बाबूजी ने सोचा कि आज बेटे का फोन आएगा और जरूर बेटा ये बात करेगा कि बाबूजी आपको किसी चीज की जरूरत और तो नहीं, आपका दिन अच्छा जा रहा है कि नहीं। लेकिन होता क्या है, फोन नहीं आता, वीडियो कॉल भी नहीं आती, लेकिन जो आ जाता है वो है पैसे। और यही कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हर जरूरत पैसे से पूरी की जा सकती है? मकान बड़ा हो जाने से घर नहीं बनता, घर तब बनता है जब कोई दरवाजा खोलते ही पूछे आ गए। यही कुछ होता है

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

तो सचमुच कभी कभी पैसे की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है आपके समय की, आपके अपनेपन की। एक और प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी ने भी मुझे बड़ा प्रभावित किया। पता, एक शहर में रहने वाला बेटा हर महीने माँ को पैसे भेजता था। उसे लगता था वो अपने फर्ज निभा रहा है। लेकिन एक दिन अचानक सरप्राइज हुआ। सरप्राइज पता क्या हुआ? बिना बताए वो घर पहुंच गया। माँ क्या कर रही थी? माँ आंगन में बैठी थी। बेटे ने मुस्कुराकर कहा, माँ, माँ, माँ, माँ, मैं आ गया। माँ ने पीछे मुड़कर देखा। एक पल को तो विश्वास ही नहीं हुआ। माँ ने फिर से अपनी आंखों को जोर से बंद किया और खोला। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? बेटे के चेहरे पर खुशी थी, वो मुस्कुरा रहा था, वो मां को गले लगाना चाहता था। मां के चेहरे की जो खुशी थी वो बयां नहीं कर सकती। मां बहुत खुश हुई। मां के आंखों में आंसू आ गए। मां ने कहा, बेटा, अच्छा किया तू आ गया। आज पता क्या हुआ? आज ना दाल में नमक थोड़ा कम पड़ गया था। सोचा तू होता तो कह देता। बेटा हंस पड़ा। अरे मां, बस इतनी सी बात? मां बोली, बेटा, बात नमक की नहीं है। बात नमक की नहीं है बेटा, बात उस आवाज की है, बात उस एहसास की है, बात उस जज्बात की है जो इस घर में बहुत दिनों बाद सुनाई दी है, और वो है तेरी आवाज, तेरा एहसास, तेरे वो जज्बात। कभी कभी क्या होता है कि लोगों की मदद हमें नहीं चाहिए होती, लोगों की सहानुभूति हमें नहीं चाहिए होती, बस चाहिए होता है तो उनका अपनापन, उनका साथ, उनका बस साथ बैठकर बात करना। बस इतनी सी बात है लेकिन बहुत गहरी है कि आपकी जरूरत है। What happens is, presence is the most expensive gift you can give to someone, because once you give your time, it never comes back. So आपका एहसास, आपकी प्रेजेंस, आपका अपनापन उस माँ के लिए, उस सपने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसको किसी और चीज से तोला नहीं जा सकता। सुप्रभात। 102.6 FM पे आप है मेरे साथ, भावना के साथ।

दादा बाद में बात करेंगे भी उन्हीं से ही कहते हैं। लगता है ना कि ये तो अपना ही है, बाद में बात कर लेंगे। अरे देर थोड़ी ना हो रही है, ये तो घर पे ही है, बाद में बात कर लेंगे। अभी थोड़ा बिजी हूं, ये कहीं जा थोड़ी ना रहा है, ये तो यही है, बाद में बात कर लेंगे। अजीब बात है ना, हम जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा सुरक्षित प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा इंतजार भी करवाते हैं। शायद इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि वो तो हमेशा वहीं रहेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, समय किसी के लिए नहीं रुकता। कहते हैं कि रिश्ते पौधे की तरह होते हैं, रोज पानी नहीं मांगते, लेकिन बहुत दिनों तक अगर आप उन्हें अनदेखा कर देना तो चुपचाप मुरझा जाते हैं। आज की कहानी ने भी कुछ ऐसा ही कह दिया। बाबूजी ने कभी शिकायत नहीं की, कभी नहीं कहा बेटा तूने फोन क्यों नहीं किया, बेटा मैं तेरा कल इंतजार करता रहा, तूने वीडियो कॉल भी नहीं की। बाबूजी ने किया तो सिर्फ इंतजार, और कई बार। इसीलिए लोग जो करीब होते हैं उनको और उनकी जरूरत जब आपको होती है तभी याद मत कीजिए, उन्हें भी आपकी जरूरत है जैसे हमें आपकी, आपको हमारी। सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो, दिल से दिल तक। सुप्रभात।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

पता है क्या हो गया आजकल? आजकल ये हो गया है कि जब आखिरी बार आपने बिना किसी काम के किसी से बात की हो, ऐसा कभी हुआ है? हाँ बताइए आप, या सिर्फ हाल चाल पूछने के लिए आपने किसी को फोन किया था? आजकल पता है फोन ज्यादा है, बातें कम है, स्टेटस ज्यादा है, मुलाकातें कम है, इमोजी ज्यादा है, गले लगना कम है, और शायद इसलिए हमारे आसपास सब कुछ होते हुए भी ना कहीं एक खालीपन है। अगर आज समय मिले ना आपको, तो किसी इंसान जो आपके बहुत करीब है, जिसको आप मानते हैं कि आपकी जरूरत है पे, कभी भी आ जाएगा, लेकिन आप उसे फॉर ग्रांटेड लेते हुए आ रहे हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अरे अपना ही तो है, उसको फोन जरूर करना। जो आपकी आवाज सुनकर कह रही, अरे आज कैसे याद कर लिया, यकीन मानिएगा उसके बाद जो मुस्कान मिलेगी ना, पूरा दिन आपका बहुत ही अच्छा बीतेगा। पता है क्या होता है कि रिश्ते कैलेंडर की तरह तारीख नहीं,

जो एक बार साल में याद आए। रिश्ते तो सुबह की धूप जैसे हैं, रोज मिले तभी गर्माहट देते हैं, है ना। देखते ही देखते आज की ये सुबह अब अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है मेरे साथ, लेकिन एक बार फिर आपसे मुलाकात होने वाली है। ठीक एक घंटे बाद आपसे 8 बजे में मिलूंगी गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में, लेकिन अगला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर आ रही है मेरी सहयोगी शालिनी। लेकिन जाने से पहले आज की कहानी में मैं सिर्फ एक बात अपने साथ लेकर जा रही हूँ, किसी की जिंदगी में ना सबसे बड़ी खुशी यह नहीं है कि आपके लिए कितना कर सकते हैं, सबसे बड़ी खुशी यह है कि उसे यकीन हो कि जब जरूरत होगी आप उसके साथ होंगे। आज जब आप घर लौटते समय या ऑफिस पहुंचने से पहले या चाय की पहली वो फुर्सत में बस एक फोन कीजिए, कोई लंबी बातचीत नहीं, सिर्फ इतना कह दीजिए कि बस आपकी याद आ गई थी। हो सकता है आपका ये एक सेंटेंस किसी का पूरा दिन रोशन कर दे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपकी सहयोगी, आपकी अपनी हमसफर भावना नैयर आपसे अनुमति चाहूंगी। फिर मिलेंगे एक घंटे बाद, इस नई सुबह का नया एहसास लगातार आपके साथ बरकरार रहे। हैव अ वंडरफुल वंडरफुल मॉर्निंग।

नमस्कार, सुबह के 7 बजने के हैं और मुख्य समाचारों के साथ अब मैं शालिनी। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक और वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में शुरू होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। रिजर्व बैंक द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा आज घोषित करेगा। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। भारत ने नाल सागर में यमन तट के पास भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूर औलिया पर हुए हमले की निंदा की, कहा ऐसे हमले तुरंत रुकने चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताते हुए कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक की आयु की महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय ने बताया कि 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की, कहा किसान हितैषी इथेनॉल नीति से किसानों की आय बढ़ेगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खुल जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेताओं को सम्मानित किया। भारत के कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में 36 सदस्यीय भारतीय टीम हिस्सा लेंगी। दल से 23 पुरुष और 13 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

मैं क्या जी बाहर हूँ, जैसे सुबह लेकर मैं आपके लिए आ गई हूँ, हाजिर हो गई हूँ यहाँ पर। मेरा नाम है शालिनी और अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप ना कराटे लेना बंद कर दीजिए, बहुत हो गया। अब उठ जाइए, सुबह हो चुकी है। यहाँ पर हूँ मैं आपके लिए आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, शुरू हो चुका है शो गुड मॉर्निंग डेलियंस। यार मैं क्या जी सोने मकड़ो, की हाल चाल है। चलिए, आज है 5 अगस्त और हिस्ट्री में आज का दिन क्या खास है वो हम आपको बता देते हैं। तो ऐसा है कि आज का जो दिन है वो आज के दिन ही 2020 में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया था। तो ये बात आपको हमें बतानी थी और इसके अलावा भी बहुत सारी और बातें आपको बतानी है मुझे, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपके लिए चलाऊंगी एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रैक। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस खास दिन के अलावा ना आज कुछ बहुत ही जानी मानी हस्तियों शख्सियतों की जयंती है। जैसे कि 1901 में आज ही के दिन द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने जन्म लिया था, जो कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, साहित्यकार और पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनकी आज जयंती है। 1915 में आज ही के दिन हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक और शिक्षाविद शिव मंगल सिंह सुमन जी का जन्म हुआ था और आज उन्हें हम याद कर रहे हैं उनकी जयंती पर। 1947 में आज ही के दिन हिंदी के जाने माने कवि वीरेन डंगवाल का जन्म हुआ था, आज इनकी भी जयंती है। इन सभी को हमारी यादें हैं और साथ के साथ इनको हमारी श्रद्धांजलि भी है। इनका जो, ये भले ही हमारे बीच में ना हो लेकिन इनका जो महत्वपूर्ण कार्य है, इनकी जो सीख है, वो हम सबके साथ है। फिलहाल आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रैक और उसके बाद आते हैं और भी ढेर सारी बातें करेंगे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6।

यादों से सजती है महफिल मेरी, तेरी यादों से सजती है महफिल मेरी, तन्हाई में खलती है कमी तेरी। यादें भी कैसी हैं ना, जाने अनजाने हम तक पहुंची जाती हैं। और कुछ ऐसी यादें हम तक आ गई हैं, कुछ ऐसी शख्सियतों की यादें जिन्हें हम कभी भुला नहीं सकते। 1852 में आज ही के दिन आचार्य प्यारे मोहन जो है उनका जन्म हुआ था। उड़ीसा के जाने माने राष्ट्रवादी और समाज सुधारक ये रहे, इनकी आज जयंती है। सन 1969 में वेंकटेश प्रसाद का जन्म हुआ था, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज और कोच रहे ये, इनकी आज जयंती है। सन 1930 में चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले प्रसिद्ध अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग का भी जन्म हुआ था, इनकी भी आज जयंती है। हम इन सबको इनके बलिदान, इनके त्याग, इनके कठिन परिश्रम के लिए, इनके द्वारा दी गई सीखों के लिए याद करते हैं अपने कार्य के रूप में। ये हमारे दिलों में आज भी जिंदा है, इन्हें शत शत नमन। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में आपके लिए एक प्यारा सा गीत पेश करते हैं और उसके बाद फिर हाजिर होंगे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6।

नहीं नहीं ठीक है, मतलब अगर आप बिन बताए कहीं जाना चाहते हैं तो अपने किसी जान पहचान वाले के साथ अगर आप उनको कह दें कि बिन बताए कहीं ले चलते हो तो बात ठीक है, लेकिन ये बात ना आप कैब वाले को मत बोल दीजिएगा वरना आप खतरे में पड़ सकते हैं। मैं सच बता रही हूँ। मैं क्या जी सोने मगड़े हालचाल तो ठीक है ना। मैं हूँ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आपके साथ चलनी। मेरा नाम और चैनल का नाम है क्या, ये तो आप जानते ही, और साथ के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर चल रहा है शो ते फेर की करा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या करने जा रही हूँ। मैं आपको ना बताने जा रही हूँ कि अब जी में है कि उनको बुलाकर देखें वो बार बार याद आए तो क्या करें। ये शेर पढ़ने वाली थी मैं आपके लिए, भूली गई थी, याद आ गया एग्जाम से जुबान पर। तो ऐसी यादें हमारे साथ अभी कुछ और भी जुड़ी हुई हैं। आज पुण्यतिथि भी है बहुत से कुछ खास शख्सियतों की, तो उनका नाम आपको बता देते हैं। गोपीनाथ बोरदोलोई का भी आज इनकी पुण्यतिथि है। 1950 में आज ही के दिन भारत के ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और असम के पहले मुख्यमंत्री रहे थे, इनकी आज पुण्यतिथि है। लाला अमरनाथ जी के भी आज पुण्यतिथि है। 2000 में ये जो है हमसे इन्होंने विदा ली थी। भारत के महान और ख्याति प्राप्त क्रिकेटर जिन्होंने देश के लिए पहला टेस्ट शतक लगाया था। और इसके अलावा प्राण कुमार शर्मा जी की भी आज पुण्यतिथि है। 2014 में इन्होंने हमसे विदा ली थी। भारत के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट रहे ये, जिन्हें चाचा चौधरी कॉमिक्स के रचयिता के रूप में जाना जाता है। तो इनके लिए इनकी याद में एक खूबसूरत सा गीत, उसके बाद हम करेंगे और ढेर सारी बातें।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: लिखना 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

यह आकाशवाणी रेनबो 102.6 और आपके साथ हूँ मैं शालिनी। और शालिनी के साथ साथ रेनबो चैनल का नाम भी आप जानते ही हैं, आकाशवाणी रेनबो 102.6। और चल रहा है शो गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। तो मैं आपको बता दूं कि आज जिस जिसका भी बर्थडे है ना, मैं उन सबका नाम लेने वाली हूँ रेडियो पर। तो फटाफट से देखा कितनी जल्दी उठ गए आप, इतनी देर से उठाने की कोशिश कर रही थी मैं। हाँ, ये ट्रिक थी वैसे आपको उठाने की। पर देखिए, इतने सारे लोगों का नाम तो मैं नहीं ले सकती क्योंकि हजारों लोगों का आज बर्थडे होगा, लेकिन हाँ मैं आपको विश जरूर कर सकती हूँ। तो आप सबको हैप्पी वाला बर्थडे है मेरी तरफ से। और साथ साथ हैप्पी वाला बर्थडे है किसको, ये बताने से पहले मुझे एक और बात याद आ गई, और ये कि एक लड़की का बर्थडे था ना, तो उसने अपने फ्रेंड से कहा कि सुनो तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो, आज मेरा बर्थडे है। तो लड़के ने कहा कि सड़क की तरफ लाल गाड़ी खड़ी थी, उसकी तरफ इशारा करके कहा कि ये देखो। तो कहते अरे वाह तुम कितने अच्छे हो ना, मेरे लिए गाड़ी लेकर आए। तो बोला हाँ, इसी रंग की, इसी लाल रंग की गाड़ी की तरह ना, मैं तुम्हारे लिए लाल रंग के नेल पॉलिश लेकर आया हूँ। तो फिर तो आप जानते ही कि लाल रंग की गाड़ी के साथ साथ किसका रंग लाल हुआ होगा, है कि नहीं। चलिए फिलहाल वो बात छोड़िए, इस बात पर आते हैं। आज है हम सबकी चहेती अभिनेत्री काजोल का बर्थडे। इनका जन्म हुआ था 1974 में। हमारी भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं जिन्होंने डेब्यू किया था 17 साल की उम्र में, रोमांटिक ड्रामा में फिल्म से इन्होंने डेब्यू किया था 1992 में।

बेखुदी इस फिल्म का नाम था। और साथ ही आज बर्थडे है जेनेलिया डिसूजा का भी, 1987 में इन्होंने जन्म लिया था। और तुझे मेरी कसम इस फिल्म से इन्होंने शुरुआत की थी 2003 में। और इसके साथ ही 1999 में जन्मी एहसास चन्ना का भी आज बर्थडे है। चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में भी हम इन्हें जानते हैं, इसके साथ साथ इन्होंने शुरुआत की थी चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर, और डिजिटल स्ट्रीमिंग और टेलीविजन के रोल के लिए भी इन्हें हम जानते हैं, वहां पर भी इन्होंने खूब धूम मचाई हुई है। तो इन सबको हमारी तरफ से हैप्पी वाला बर्थडे है, और साथ में इनके लिए बहुत ही बेहतरीन से ट्रैक चला देती हूँ, आपके लिए भी है, बुरा मत मानिए। स्टे ट्यून्ड 102.6 सुन रहे हैं आप मेरे अनिशा रानी के साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर चल रहा है शो।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

नहीं नहीं ठीक है ठीक है, जोर से नाचिए, घुंघरू टूट जाए तो जोड़ सकते हैं एक बार को, लेकिन इतना जोर से मत नाचिएगा क्योंकि अगर हड्डियां टूट गई तो जड़ने में टाइम लगेगा, समझ सकते ना, कई बार तो जुड़ती भी नहीं है। मैं क्या जी कितने जा रहे हैं, ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं, अपनी बात तो मैं आपको सुना कर ही रहूंगी। हाँ क्या कहा, जबरदस्ती? हाँ बिल्कुल है, मैं तो ऐसी हूँ, मैं जबरदस्ती करके अपनी बात सुनाती हूँ क्योंकि आपकी भी तो बातें बहुत सारी हम पढ़ते हैं ना यहाँ पर, मैसेजेस जो मुद्दे के हों या ना हो, लेकिन हम तो सब पढ़ते हैं और उसके बावजूद भी आप हमसे क्वेश्चन करते हैं कि हमारा मैसेज क्यों नहीं पढ़ रहे, हमारा मैसेज क्यों नहीं पढ़ रहे, इतनी देर हो गई, बताइए बताइए बताइए। तो वो सारे मैसेजेस हम पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये बताना चाहते हैं कि सारे शोज का फॉर्मेट जो है वो ऐसा नहीं होता कि हम आपके सारे मैसेज पढ़ के बता सकें, तो आप बस इतना समझ जाइए कि आपकी बातें हम तक पहुँच जाती हैं और जिस शो में हम आपको बता पाते होंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि आज जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, यानी कि विश्व स्तनपान सप्ताह चल रहा है 1 से 7 अगस्त तक, ये मनाया जाता है हर साल, जिसका उद्देश्य जो है वो शिशु के लिए स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना और कामकाजी माओं का समर्थन करना है। इसको जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO और यूनिसेफ सपोर्ट करता है। इसकी खास बातें ये हैं कि माँ का दूध जो है वो पहला पोषण है, ये बताना कि ये जीवन की पहली सुरक्षा है, ये बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और इसके साथ साथ कामकाजी महिलाओं के लिए दफ्तरों में बेहतर माहौल की मांग करना है इस दिन का उद्देश्य। तो आप मनाइए ये सप्ताह और इन बातों का ख्याल रखिएगा। फिलहाल मैं माँ की बात सुन के इतना ऐसा एंटी हो गई ना कि बस अब एक गाना तो बनता ही बनता है। आते हैं थोड़ी देर में, स्टे ट्यून्ड, आप सुन रहे हैं 102.6 विद मी शालिनी, गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR चल रहा है। भूल क्यों जाते हैं, याद रखा करिए ना।

0: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नहीं, मैं बता रही हूँ, देख लीजिए कि वाकई वो आँख ही मारी जा रही है, या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है उन्हें, कई बार आँख में कुछ तिनका चला गया होता है। आप तो बस ऐसे ही ना, है ना, कुछ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हर फड़कती आँख ना, आँख मारना ही नहीं होता, कई लोगों को बहुत तकलीफ भी हो सकती है। फिलहाल आपको तकलीफ ना हो, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं हूँ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर चल रहा शो गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और मुझे कहते हैं शालिनी, और आपको क्या कहते हैं तो आपको पता ही होगा, और आपको जो नहीं पता है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब जो आगे आने वाले प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में बता देती हूँ आपको। मैं 8 बजे जो है आपके लिए लेकर आएंगी गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का दूसरा पार्ट, भावना नायर, और इसके अलावा 9 बजे फिर से मुलाकात होगी मेरी आपके साथ दिल के तराने गाने नए पुराने में, और इसके अलावा वेस्टर्न म्यूजिक मैचलेस म्यूजिक आवर लेकर आएंगे उत्कर्ष, और फिर आपके लिए 11 बजे होंगी निशा तंवर बॉलीवुड ट्रेल्स के साथ। इसके अलावा 12 बजे फिर आपके साथ होंगे वेस्टर्न म्यूजिक प्लेट कूल लेकर उत्कर्ष, और इसके अलावा 1 बजे आपके साथ होंगी निशा तंवर रेनबो हेल्पलाइन के साथ साथ, आपके साथ निशा तंवर होंगी, और इसके अलावा 2 बजे आप सुनेंगे आशियाना किसके साथ, स्वाति गुप्ता के साथ, और 3 बजे होगा प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, और इसके अलावा आपके लिए लेकर आएंगी स्वाति गुप्ता एल्फाजन 4 बजे शाम को, और 5 बजे आपके लिए होगा प्रोग्राम सिटी लाइट्स, और इसके बाद होगा 6 बजे मैसेज मसाला मिक्स, और उसके बाद आपसे मिलेंगे मैसेज मसाला मिक्स में मिलेंगे आपसे गीता चौधरी, फिर मिलेंगे आपसे सुशांत मल्होत्रा वेस्टर्न म्यूजिक नॉर्थ ईस्ट ह्यूज प्रोग्राम बेस्ड ऑन नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये 7 बजे आपसे मिलेंगे सुशांत मल्होत्रा, और फिर 8 बजे आपसे मुलाकात होगी गीता चौधरी की म्यूजिक मस्ती में, और फिर 9 बजे आपसे मिलेंगी चंद्रवाणी मुखर्जी आपकी याद आती रही में, और इसके अलावा आपके साथ होंगे सुशांत मल्होत्रा फिर से एक बार वेस्टर्न म्यूजिक लेकर रेनबो क्लासिक्स के साथ, ठीक है, और फिर इसके बाद आएंगे आपके साथ चंद्रवाणी मुखर्जी रात को 11 बजे रंगे महफिल में। फिलहाल आपके लिए ये बेहतरीन सा ट्रैक।

मैं क्या जी, आप जाने का समय हो गया है, जानता जीता नहीं कर रहा, पर जाना पैंदा है ना, किसी और को आना होगा तो हमें तो जाना ही होगा। लेकिन आपसे मैं कहना चाहूंगी कि एक बात बताना चाहती हूँ मैं आपको कि रक्षाबंधन का समय जैसे जैसे पास आ रहा है ना, हमारे जो मैसेज बॉक्स है उसमें भी रक्षाबंधन का असर देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या आप हमसे 28 तारीख राखी बंधवाने के लिए मिलेंगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 28 तारीख को मैं यहाँ पर होंगी या नहीं होंगी ये तो एक अलग बात है, लेकिन अगर हुई तो अलग से भले ही मैं आपसे ना मिल पाऊं, लेकिन देखिए यहाँ पर रेडियो पर भी तो हमारा होना जरूरी होता है ना, क्योंकि इतने सारे लिसनर्स हैं, फिर उनका क्या होगा, उनके साथ भी तो हमें रक्षाबंधन मनाना ही होगा ना। तो बस आप हमें अपने मैसेजेस भेजते रहिएगा और उन्हीं मैसेजेस से आपकी भावनाएं हम तक पहुंच जाएंगी और मैं भी आपको शो के जरिए जवाब दे दूंगी अगर मैं यहाँ पर हुई तो। चलिए फिलहाल मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ख्याल रखिए, ते गाना सुनी जाए, ठीक है जी।

समय हो रहा है 8 बजे। पेश है इस वक्त के मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक और वरिष्ठ अधिकारियों की 3री बैठक आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में शुरू होगी। यह बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में भोपाल ब्रिक्स संस्थान कृति कार्य समूह की 3री बैठक की मेजबानी करेगा। रिजर्व बैंक द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा आज घोषित करेगा। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। भारत ने लाल सागर में यमन के तट के पास भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत एमएसवी फेज नूर ओलिया पर हुए हमले की निंदा की है। कहा, ऐसे हमले तुरंत रुकने चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताते हुए कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। यह विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय ने बताया कि साल 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। कहा, किसान हितैषी एथेनॉल नीति से किसानों की आय बढ़ेगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। राष्ट्रपति भवन के उद्धृत अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खुल जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेताओं को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं। भारत के कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में 36 सदस्यीय भारतीय टीम हिस्सा लेगी। दल में 23 पुरुष और 13 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। ये थे इस वक्त के समाचार। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, कैसे हैं आप? घड़ी के सुबह बज रहे हैं 8:04 और सप्ताह का वो पड़ाव आ चुका है जिसे कहते हैं मिड वीक मॉर्निंग। बुधवार का समय है और बुधवार का दिन है, सोमवार की भाग दौड़ पीछे छूट चुकी है। वीकेंड अभी थोड़ा दूर है लेकिन मन कह रहा है चलो आधा सफर तो तय हो गया। मैं हूं आपके साथ भावना। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, इट्स अ वेंसडे मॉर्निंग।

अरे अरे, मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। जी हाँ, मेरा तो दिल आपके पास है, क्योंकि हमारी बातें तो दिल से दिल तक होती है ना। और ये मिड वीक जो आ चुका है ना, लग रहा है कि बस वो बीच के जो मिड लाइफ क्राइसिस होती है, ये मिड वीक क्राइसिस चल रहा है। क्योंकि ये समय कुछ ऐसा होता है, 8:08 हो रहे हैं, और समय होता है कि कहीं ऑफिस की भाग दौड़ के लिए बस लेट हो रहे हैं, लंच पैक नहीं हुआ है अभी तक। मेट्रो में अगर लोग बैठ चुके हैं तो मोबाइल खुल चुके होते हैं, दिन की प्लानिंग शुरू हो चुकी होती है, स्कूल में बच्चे जा चुके होते हैं, घर पे जो अगर मदर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक राहत की सांस ले रही होती है कि चलो बच्चे अब स्कूल चले गए, आप घर का काम शुरू करेंगे। लेकिन कुछ देर बाद कुछ आराम कर लेते हैं और चाय की चुस्की के साथ 102.6 FM का साथ तो लगातार बना ही रहता है आपके साथ। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का सेकंड वर्जन शुरू हो गया है, पहला शालिनी ने दिया और दूसरा मेरे साथ आप सुन रहे हैं। दिल से दिल तक बातें हो रही हैं। सावन का महीना चल रहा है, रौनक ही रौनक है बाजारों में, राखियों की रौनक आ गई है, राखी का त्योहार बस पास ही है। और आपको बता दें कि मिठाइयों की दुकानों से खुशबू मुझे आने लग गई है। अलग अलग मिठाइयाँ बहुत ही अच्छी अच्छी दिख रही हैं और स्वाद तो अलग ही है उनका। और जब आप ये देसी मिठाइयाँ खाते हैं ना, फिर आपको वो जो विदेशी चीज़ें ना, उसका स्वाद कहीं ना कहीं फीका पड़ता हुआ नज़र आता है, मानते हैं कि नहीं आप। और साथ ही साथ बस सब कुछ और दिन यानी कि 10 दिन रह गए हैं, पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगने वाला है, इंडिपेंडेंस डे इज वेरी नियर। तो चलिए दिल्ली की धड़कनों के साथ गानों का सफर

0: चलिए आगे बढ़ाते हैं, सुनते रहिए 102.6 FM। मौसम का मिजाज तो बता दूं आपको, मौसम के बारे में नहीं जानेंगे, लुका छुपी जो चल रही है हमारी मौसम के साथ। बारिश आती है, फिर लगता है बारिश आने वाली है, फिर वो नहीं आती है। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज भी रुक रुक कर बारिश हो सकती है, ये कहना है हमारे मौसम विभाग का। देखना होगा कि आती है बारिश कि नहीं आती, लेकिन हाँ बदरा तो छाई रहती है, ये तो ज़रूर है। मौसम ने करवट तो ली है, थोड़ी गर्मी से राहत तो मिली है, मानोगे ना, आप मानोगे, है ना। लेकिन घर से निकल रहे हो तो वो छाता लेना मत भूलना, छाता के साथ साथ वो धूप वाला चश्मा भी लेना मत भूलना, क्योंकि क्या है ना, पता नहीं धूप आती है कि बारिश, इसलिए डबल डबल तैयारी से ही घर से बाहर निकलें। और ये जो कह रहे हैं ना कि पौ पौ पौ पौ चल रही है, कुछ नहीं होगा हॉर्न बजाने से, जैसे ट्रैफिक की गति है वो तो वैसे ही चलेगी, आपको बस धैर्य बनाकर चलना है, और हमारा साथ तो है ही आपके साथ। तो चलिए गानों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आज बुधवार है।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैनहट्टन
3: मैन आजमी हैक टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: आप सुन रहे 102.6 FM रेनबो, मेरे साथ यानी भावना के साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। और अब वक्त ऐसा आ गया है और ऐसी बातचीत का आ गया है जो शायद किसी दिन किसी भी जिंदगी बचाने में मददगार साबित हो सकती है। हर साल अचानक कार्डियक अरेस्ट के कारण हजारों लोगों की जान चली जाती है। ऐसे समय में एम्बुलेंस के आने से पहले अगर आसपास मौजूद कोई भी व्यक्ति CPR यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन देना उनको अगर आता है तो किसी भी धड़कन और उम्मीद दोनों को बचाया जा सकता है। इसलिए CPR सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए सीखना भी बेहद जरूरी है। और इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ डॉक्टर नीलम मोहन हैं, जो भारत की एक प्रसिद्ध बाल रोग और लिवर रोग विशेषज्ञ हैं। वे वर्तमान में गुरुग्राम स्थित मेदांता हॉस्पिटल में बाल चिकित्सा, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, हेपेटोलॉजी और लिवर प्रत्यारोपण विभाग की वरिष्ठ निदेशक भी हैं। उन्हें बच्चों के लिवर रोग के इलाज और प्रतिष्ठित BC रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। चिकित्सा के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है और आप स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर भी लगातार लोगों को प्रेरित करती आ रही हैं। डॉक्टर नीलम, बहुत बहुत स्वागत है आपका 102.6 FM में।
1: गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच।
0: सबसे पहले डॉक्टर नीलम, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आज हमारे श्रोताओं को बहुत ही सरल भाषा में बताइए कि आखिरकार CPR होता क्या है और आज के वर्तमान स्थिति में इसकी क्यों इतनी जरूरत है।
1: थैंक यू भावना। एक्चुअली CPR का मतलब है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये एक जीवन बचाने वाली इमरजेंसी टेक्निक है। किसी भी व्यक्ति का दिल जब अचानक धड़कना बंद हो जाता है, इसे हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, और वो बेहोश हो जाता है। कभी उसकी सांस हो सकती है या सांस भी बिल्कुल गैस्पिंग स्टेट में हो। इसमें अगर तुरंत CPR शुरू कर दिया गया तो ये उसको फायदा कर सकता है, बचा भी सकता है। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि इंडिया में ऑलमोस्ट 7 लाख डेथ्स जो कार्डियक अरेस्ट के कारण होती हैं, एंड मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप देखते हैं कि 85% ये प्रॉब्लम्स या घर में या वर्किंग प्लेस में हो रही है। तो अगर घर के अटेंडेंट्स, घर के या हमारे प्रोफेशनल कलीग्स, फैमिली मेंबर्स, इनको अगर CPR आए तो हम उस व्यक्ति को जब तक हेल्प मिली तब तक बचा सकते हैं। तो CPR के दौरान हम जो चेस्ट होता है हमारा, लोअर चेस्ट में, उसकी कंप्रेशन देते हैं ताकि दिल का काम कुछ देर तक उससे स्टार्ट हो सके। एंड जो ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन है वो दिमाग और शरीर के महत्वपूर्ण अंग तक पहुंच सके। तो इसीलिए पेशेंट की बचने की संभावना बढ़ जाती है अगर उसका जब तक एम्बुलेंस आए या एडवांस मेडिकल आए, जो भी उसके आसपास है वो उसको अगर हार्ट की पंपिंग करे
0: जी।
1: और हम नेक्स्ट टाइम बता देंगे कि कैसे करना चाहिए, उससे बच सकता है। यहाँ पर मैं एक और डिफरेंस बताना चाहूंगी, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। हार्ट अटैक थोड़ा सा अलग होता है। हार्ट अटैक में जैसे पसीना आना, दर्द होना, लेकिन इंसान होश में होता है, उसकी धड़कन चल रही होती है। कार्डियक अरेस्ट होता है जब आपकी धड़कन बंद हो जाए। यूजुअली ये बड़ों में रिदम की सर्कुलेशन के कारण होता है और ये दैट इज व्हाई उसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं।
0: डॉक्टर नीलम, यहाँ मैं ये भी पूछना चाहूंगी, आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं, क्या बच्चों और बड़ों को CPR देने की तकनीक में कोई डिफरेंस होता है, और अगर होता है तो आम लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। यूजुअली हम बात करते हैं बड़ों की, जो मैंने आंकड़ा आपको बताया 7 लाख डेथ्स ड्यू टू दिस, दैट इज फॉर यूजुअली अडल्ट। बच्चों में और बड़ों में कारण भी डिफरेंट होता है। अडल्ट में यूजुअली कार्डियक अरेस्ट का मुख्य कारण होता है हार्ट की प्रॉब्लम, इसीलिए चेस्ट कंप्रेशन ज्यादा जरूरी बन जाते हैं। लेकिन बच्चों में कार्डियक अरेस्ट अधिकतर रेस्पिरेटरी फेलियर, सांस की फेलियर, सेप्सिस, शॉक या सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम से होता है। तो इसमें चेस्ट कंप्रेशन के साथ साथ रेस्क्यू ब्रेथ, जैसे मुंह में सांस देना, उसको हम कहते हैं रेस्क्यू ब्रेथ, ये देना बहुत जरूरी हो जाता है एज कंपेयर टू अडल्ट। और इन्फेंट्स में हम जैसे जब टेक्निक यूज करते हैं चेस्ट कंप्रेशन की, तो तब सेंटर ऑफ दी चेस्ट में लोअर हाफ में हम स्टार्ट करते हैं, तो जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस के तहत हम बताते हैं कि 100 टू 120 कंप्रेशन हम देते हैं, और इसके साथ साथ बड़ों में अगर आप ऑक्सीजन नहीं भी दिए, मतलब कि आप मुंह से सांस नहीं भी दिए तो चलेगा, लेकिन बच्चों में कहा जाता है कि दैट एवरी 30 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रेथ देना चाहिए अगर एक सिंगल है। अगर दो लोग है तो 15 कंप्रेशन दें और फिर 2 ब्रेथ दें, 15 कंप्रेशन, और एक ही आदमी अगर उसको कर रहा है तो 30 के साथ उसको 2 ब्रेथ देना चाहिए।
0: साथ साथ डॉक्टर नीलम ये भी बात है कि CPR जब देने की नौबत आती है तो कई लोग डर जाते हैं कि गलत ना हो जाए या मरीज को कोई और नुकसान ना पहुंच जाए, इस डर की वजह से कई बार लोग मदद करने के लिए आगे ही नहीं बढ़ते, आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे?
1: Well, मैं तो यही कहूंगी कि कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ तो करना है। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज सबके लिए यही रहेगा कि सबसे बड़ा नुकसान कुछ नहीं करना है, क्योंकि किसी व्यक्ति का दिल रुक गया तो बिना CPR के उसके बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो हो सकता है कि आपके चेस्ट कंप्रेशन देने से, और अगर उन्हें डर है कि कोई रिब में फ्रैक्चर हो गया, मतलब एक एक्सट्रीम ले लो कि उसको डर लग रहा है कि मैंने कुछ उसका, लेकिन वो फिर भी ठीक हो सकता है ना, जान बच गई तो उस वो भी ठीक हो सकता है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि बिल्कुल ना डरना नहीं चाहिए, कि जब तक आपको पहले एसेस करना चाहिए कि उसकी सांस चल रही है या नहीं आसपास, जैसे हम करते हैं देखिए, और एक फोन नंबर 112 है उसको कनेक्ट करें कि जब तक कोई आए, एक एम्बुलेंस 112 को करना चाहिए। और आजकल ना हर मॉल पे या थिएटर पे या सोसाइटी में एक AED मशीन भी होती है, तो जिसको हम कहते हैं फिब्रिलेटर ऑटोमेटिक, वो भी मंगा लेना चाहिए, ताकि अगर इसके बाद वो जब AED मशीन अगर हम चेस्ट पे लगाते हैं, वो इतनी ऑटोमेटिक होती है, वो खुद आपको बता देती है चेस्ट पे लगाने से कि आपको कंप्रेशन बोलती है कि कंटिन्यू चेस्ट कंप्रेशन, मतलब कि उसको शॉक की जरूरत नहीं है। और अगर आप उस पे रखे तो वो अगर उसको शॉक देने की जरूरत है तो वो रिदम देखती है और बोलती है कि गिव शॉक, तो वो भी हर एक जगह आजकल उपलब्ध है, एयरपोर्ट स्टेशन में, बड़ी बड़ी जगहों सोसाइटीज में। तो ये चीज मैं आपको अब याद दिलाना चाहूंगी अब्दुल कलाम जी की, अगर आपको याद हो अब्दुल कलाम जी शिलोंग में एक लेक्चर देते हुए उनकी डेथ हुई थी IIM में,
0: बिल्कुल,
1: तो शायद अगर उस टाइम कोई किसी को एक बेसिक CPR सपोर्ट उनको दी जाता तो शायद कुछ बेटर हो जाता। तो मैं यही कहूंगी कि हमें उस टाइम में डरना नहीं, ये चेस्ट कंप्रेशन देना है 100 टू 120 कंप्रेशन, और जब आप कंप्रेशन दे रहे हैं देखें कि कम से कम 5-6 सेंटीमीटर गहराई चेस्ट नीचे जाए, तो उसे ऑलमोस्ट 2 inches या कुछ जैसे चेस्ट को देखें, और मूवमेंट्स अगर ब्रीदिंग नहीं हो रही है तो फिर ऑक्सीजन ब्रीदिंग भी देने। तो मेरा मैसेज ये रहेगा कि डोंट वेट, डोंट हेसिटेट, बट डेफिनेटली स्टार्ट एटलीस्ट समथिंग CPR।
0: बिल्कुल, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर नीलम, आपको लगता है कि CPR की ट्रेनिंग स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस और पब्लिक जो संस्थान है, इंस्टीट्यूशंस है, वहां मैंडेटरी हो जानी चाहिए, और हर नागरिक अगर इस कौशल को सीख लेगा तो हमारे समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है?
1: जी बिल्कुल, इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज में ये आमतौर पर सबको सिखाया जाता है, लेकिन इंडिया में CPR की अवेयरनेस के बारे में लोगों को नहीं पता है। इसीलिए मुझे खुशी है कि मैं प्रेजेंट हूँ इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक, जो एक संस्था है, मोर देन 52,000 पीडियाट्रिशियंस इस संस्था में जुड़े हैं। मैं पूरी संस्था को प्रेस करना चाहूंगी कि अभी CPR जुलाई में हमने CPR अवेयरनेस डे के दिन ऑलमोस्ट एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है, डेफिनेटली इंडिया का रिकॉर्ड, 51,000 से ज्यादा

0: लोगों को सीपीआर ट्रेनिंग सिखाई गई एक ही दिन में, और ये काम के में 1300 डॉक्टर सीपीआर चैंपियंस जिन्हें हम कहेंगे, जो सीपीआर ट्रेनर्स हैं एंड कोऑर्डिनेटर्स ट्रेनर्स, इन सबको ये सब जुड़ गए। एंड इसके लिए हमारी एक संस्था, मतलब हम ALS BLS ग्रुप बनाया हुआ है IAP के अंदर, इसमें डॉक्टर लोकेश तिवारी उनके साथ सारे ये ट्रेनिंग देके 1300 डॉक्टर चैंपियंस बना के करे। तो ये एक ये करने का मतलब सिर्फ एक चीज था कि हम लोगों तक पहुंचे और लोगों को समझाएं कि हमने स्कूल्स में किया, पुलिस में किया, इंस्टीट्यूट्स में किया, ताकि लोगों को एटलीस्ट ये समझ आए और ये अवेयरनेस हो कि कितना जरूरी है कॉलेजेस, ऑफिसेज, मॉल, एयरपोर्ट्स, इंस्टीट्यूशन, पुलिस, ये सब स्कूल्स, इनमें कि ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। इतनी अच्छा लग रहा था कि सब बच्चे और बड़े ये पूछ रहे थे और वो सीख रहे थे। तो इसमें एक मैनिक्विन आते हैं, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं, हम वो मैनिक्विन में ऑटोमेटिक मैनिक्विन जब आप दबाए तो उसकी बत्ती ग्रीन होती है, तो आपको पता चलता है कि आप सही कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैनिक्विन में हमने किया, और मेरा एंड में यही संदेश रहेगा कि हर घर में, हर स्कूल में, हर ऑफिस में काम करने व्यक्ति को CPR जानना चाहिए। एडवांस लाइफ सपोर्ट नहीं भी आए, चले वो डॉक्टर्स के लिए है एडवांस लाइफ सपोर्ट, लेकिन एक बेसिक CPR ट्रेनिंग, और आसपास आपके पास AED मशीन है तो मंगा लें, क्योंकि एवरी सिटीजन एक लाइफ सेवर हो सकता है। और ये सीखना सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। यही कहूंगी कि आपने कुछ स्किल नहीं, एक जिम्मेदारी दी। एक दिन आपका सीखा हुआ CPR किसी अपने ही दोस्त या अपनी ही जान या अनजान व्यक्ति को भी जिंदगी देकर बचा सकता है।
1: बहुत खूबसूरत बात की आपने डॉक्टर नीलम मोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद 102.6 FM रेनबो के साथ बात करने के लिए। और आपने जिस सहज और सरल तरीके से CPR की अहमियत को समझाया ना, वे निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।
1: तो दोस्तों, याद रखिएगा कि आपातकाल कभी बताकर नहीं आता, इमरजेंसी नेवर कम्स, ऐसे ही कि आप इमरजेंसी आने वाली है, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन सही समय पर लिया गया सही कदम किसी की जिंदगी बचा सकता है। इसलिए CPR सीखना आज एक कौशल नहीं, जिम्मेदारी बन चुकी है। अपने परिवार और दोस्तों को भी इसके प्रति जरूर जागरूक कीजिए, क्योंकि जीवन बनाने का और बचाने का अवसर किसी को भी कभी भी मिल सकता है। सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो, गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

और अगर आप वीकेंड पे या आने वाले दिनों में कोई प्लान बनाना चाहते हैं और राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान देखना चाहते हैं, तो आपको बता दें ये आपके लिए खुशखबरी है, आम लोगों के लिए खुलने जा रहा है एक बार फिर से अमृत उद्यान। और अगर आप मानसून के मौसम में रंग बिरंगे फूलों और हरियाली का आनंद लेना चाहते हैं ना मेरे दोस्तों, तो 16 अगस्त याद कर लीजिए, इंडिपेंडेंस डे के अगले दिन 16 अगस्त से 15 सितंबर यानी करीब करीब एक महीना रहने वाला है ये अमृत उद्यान, आप घूम सकते हैं। राष्ट्रपति भवन ने इसकी इन्फॉर्मेशन जारी कर दी है और प्रवेश जो है पूरी तरीके से निःशुल्क यानी कि फ्री रहने वाला है, लेकिन आपको ऑनलाइन स्लॉट बुक कराना जरूरी होगा। साथ ही आपको बता दें कि रख रखाव के लिए सोमवार यानी कि मंडे को अमृत उद्यान बंद रहेगा। और इस बार अमृत उद्यान में आने वाले लोगों को समर एनुअल्स ऑफ अमृत उद्यान नाम की खास मॉनसून फूलों की प्रदर्शनी भी देखने का मौका मिलेगा। इसमें बारिश के मौसम में खिलने वाले कई तरीके के खूबसूरत फूल और पौधे दर्शकों के लिए लगाए गए हैं, तो आप आइए प्रकृति को पास से देखिए और इस खूबसूरती का लुत्फ उठाइए। और साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन में दो खास दिनों पर विशेष प्रवेश की व्यवस्था भी की गई है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों के लिए और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों के लिए विशेष प्रवेश की सुविधा रहेगी। साथ ही ऑनलाइन स्लॉट की जब मैंने बात करी, तो ऑनलाइन स्लॉट अगर आपने बुक नहीं कराया है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। हर दिन की बुकिंग उससे एक दिन पहले सुबह 10 बजे बंद कर दी जाएगी और प्रवेश द्वार यानी कि एंट्री गेट पर किसी तरह की ऑन द स्पॉट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, इसीलिए आने से पहले अपना स्लॉट ज़रूर बुक करा लें। और आपको गेट नंबर बता दूं कहां से एंट्री होगी, तो जो भी वहां आ रहा है इस प्रदर्शनी को देखने के लिए, तो गेट नंबर 35 से एंट्री होने वाली है। नॉर्थ एवेन्यू रोड के पास ये गेट नंबर 35 है और लोगों की सुविधा के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन यानी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान तक एक विशेष शटल बस सेवा भी चलाई जाएगी, जो सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक हर 30 मिनट यानी कि आधे घंटे में उपलब्ध रहेगी। क्या क्या सामान आप वहां ले जा सकते हैं, तो राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट के अनुसार आप मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक चाबियां, पर्स, हैंडबैग, पानी की बोतल या फिर जो बच्चों को दूध पिलाने वाली बोतल है और छाता लेके जा सकेंगे। इसके अलावा कोई और सामान को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। तो आप अगर अमृत उद्यान जाने का कोई भी प्लान बना रहे तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो। गुड मॉर्निंग, इट्स अ वेडनेसडे।

0: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
1: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
0: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
1: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

और अब बात उस उत्सव की जिसका इंतजार पूरा देश करता है। स्वतंत्रता दिवस में आप कुछ ही दिन बाकी है और राजधानी दिल्ली पूरी तरह राष्ट्रीय उत्सव के रंग में रंगने लगी है। लाल किले पर तैयारियां तेज हो चुकी है, सुरक्षा व्यवस्था को पहले से बहुत अधिक मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस हो, फोर्सेज हो, लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन इस बार एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिलेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह में बैठने के लिए पता है जो विभिन्न इंक्लोजर होते हैं ना, उनके नाम देश की प्रसिद्ध झीलों के नाम पर रखे गए हैं। जी हाँ, तो जब आप बैठेंगे तो अलग अलग जब स्लॉट्स होते हैं, अलग अलग बैठने की जगह होती है, तो उनके नाम जो है वो झीलों से आप पहचान पाएंगे। जैसे कि आपको बताऊं कौन कौन से नाम, बड़कल, भीमताल, चंद्रताल, चिलिका, दलपत सागर, दिमना, ढूडा सागर, हैफलोंग, हरिके, हुसैन सागर, कनवर और कांकरिया। और आपको साथ ही बताऊं, ये इतने ब्यूटीफुल नेम है ना कि ये आपको आपकी एक संस्कृति से जोड़ते हैं, आपको उसके बारे में बताते हैं। तो ये जो तैयारियां हैं इसके साथ साथ आप अपनी संस्कृति को भी पहचान पाएंगे। और जो साउथ साइड के इंक्लोजर्स होंगे ना, उनके नाम बताऊं, कोलेरू, लोकतक, लोनार, पैंगोंग सो, पुली कैट, पुष्कर, रविंद्र सरोवर, रामगढ़ ताल, रुद्र सागर और सखिया सागर, शांति सागर, वेम्बनाथ और वुलार, ये सभी नाम दिए गए हैं इनक्लोजर्स को। तो बहुत खूबसूरत होने वाला है इस बार का स्वतंत्रता दिवस, और ये आपको आपकी संस्कृति से जोड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं आप कहाँ बैठेंगे उससे भी आप अपनी इतिहास को जान पाएंगे कि देश के बारे में, और देश की जब संस्कृति को पहचानते हैं तो देश के साथ आप जुड़ते हैं। और दिल्ली में भी अब तिरंगे की रौनक बढ़ने लगी है, बाजारों में झंडे, बैज और देशभक्ति के रंग अभी से दिखाई देने लगे हैं। ये केवल नाम नहीं है, पता ही है, देश की प्राकृतिक धरोहर को राष्ट्रीय मंच पर सम्मान देने का एक बड़ा ही ब्यूटीफुल इनिशिएटिव है। हर साल की तरह इस बार भी पूरा देश 15 अगस्त का इंतजार गर्व और उत्साह के साथ कर रहा है। सुनते रहिए मानो 2.6 FM। इट्स अ वेंसडे मॉर्निंग, वीकेंड थोड़ा दूर है और आधा बीत चुका है, आधा अभी बाकी है। इंतजार कीजिए, बने रहिए 102.6 FM के साथ।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, इट्स गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और मैं हूं आपके साथ भावना। और अब एक ऐसी पहल के बारे में आपको बताने जा रही हूं जो सिर्फ और सिर्फ नीडी के लिए नहीं है, यानी कि जिनको जरूरत है उनके लिए नहीं है, ये एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेगी। कैसे, आपको बताती हूँ मैं। हमारे घरों में अक्सर पता है क्या होता है कि ऐसे कपड़े पड़े होते हैं और अलमारियों में ऐसे कपड़े ठुस ठुस के पड़े होते हैं, और जब ढूंढने जाते तो लगता है आज क्या पहनूं, आज क्या, कुछ है ही नहीं, ऐसा लगता है ना। लेकिन अलमारी कपड़ों से भरी होती है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही हालात मेरे घर में भी है। मुझे पता है कि शायद आपके घर में होंगे, हो सकता है शायद आप ऑर्गेनाइज्ड हो। मैं कभी कभी अनऑर्गेनाइज हो जाती हूँ, लेकिन ठीक है, फिर ऑर्गेनाइज होने की कोशिश भी करती हूँ, है ना, वी ऑल अग्री टू दैट। लेकिन अब इस्तेमाल नहीं किए जाने वाले जो कपड़े हैं ना, उनको आप बेहतर ढंग से कहीं एक अच्छे इनिशिएटिव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, क्या होता है कि कई बार जो हमारे अलमारी में पड़े हुए सालों से कपड़े, महीनों से कपड़े

रहते हैं उन्हें हम बेकार भी नहीं करते और रखे भी रहते हैं, लेकिन अब आप उनका सही से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। क्या किया है कि दिल्ली मेट्रो ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है कि इन कपड़ों को एक नई जिंदगी देने का। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो के जो 5 स्टेशन है मैं आपको बताने जा रही हूँ, पंजाबी बाग वेस्ट, शालीमार बाग, शाहदरा, रोहिणी वेस्ट और मयूर विहार फेज 1 पे अर्पण केंद्र शुरू किया गया है। हाँ, अर्पण केंद्र, यानी अर्पण का मतलब ही होता है अर्पण करना, देना। और यहाँ लोग अपने उपयोग योग्य पुराने जो कपड़े डिजिटल प्रक्रिया के जरिए दान कर सकेंगे, मतलब दे सकेंगे, और QR कोड स्कैन करके आप कपड़े जमा करेंगे और फिर उन्हें वो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच जाएंगे। इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू बताया आपको, क्या बताऊं कि टेक्सटाइल वेस्ट को कम करना भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्या है कि आज फैशन की बदलती दुनिया में कपड़ों का इस्तेमाल कम समय के लिए होने लग गया। हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उन कपड़ों को यूज़ करते हैं और फिर नए कपड़े खरीद लेते हैं। तो ऐसा क्या है कि कपड़ों का जो वेस्ट है, टेक्सटाइल वेस्ट है, वो लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में इस तरीके का कैंपेन एक हमारी सोशल जिम्मेदारी बन जाती है, उसके साथ साथ हम इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो इसमें एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम इसे माना जा रहा है। यानी अब आपकी अलमारी में रखे हुए वो बहुत सारे कपड़े किसी के लिए या तो ठंड से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए सहारा बन सकते हैं। कभी कभी पता है क्या होता है कि छोटी छोटी पहल किसी की पूरी दुनिया बदल देती है। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, इसी ब्यूटिफुल इनिशिएटिव के साथ एक और गाना सुनिए।

और इसी खूबसूरत सुबह के साथ चलिया वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, आपका दिन इतनी मुस्कुराहटों से भरा रहे। यू कीप स्माइलिंग लाइक दिस दैट यू हैव बीन स्माइलिंग ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, दो इट्स वेंसडे एंड वीकेंड इज स्टिल फार, बट वीकेंड इज स्टिल नियर, यू कैन थिंक दैट। काम पूरा हो, ट्रैफिक कम मिले आपको, और शाम तक जब थकान लगे तब आप भी अपने आप में एक सैटिस्फैक्शन के साथ आगे बढ़े। सावन की ये फुहारे, आज़ादी के पर्व की तैयारियां और दिल्ली की यही भागती दौड़ती रफ्तार हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगला कार्यक्रम आप तक सुनेंगे दिल के तराने, गाने नए पुराने मेरी दोस्त शालिनी सिंह के साथ, जहां आप नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक सुनने वाले हैं, साथ ही रेट्रो का तड़का भी आपको मिलेगा। तो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए 102.6 FM। हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ वंडरफुल वेंसडे, कीप स्माइलिंग, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।

ये आकाशवाणी का रेनबो चैनल है। 9 बज चुके हैं और अब पेश है मुख्य समाचार। मैं हूं आपके साथ शालिनी। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा। सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक और वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में शुरू होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। नीट यूजी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखा

धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताते हुए कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। कहा, किसान हितैषी इथेनॉल नीति से किसानों की आय बढ़ेगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खुल जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेताओं को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं। भारत के कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचे। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को 9वीं वरीयता मिली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 5वीं वरीयता। और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। नमस्कार।

मैं बता रही हूँ, सच में मैंने कुछ भी नहीं किया, ये आपकी मम्मी है जिन्होंने आपके एसी पंखे कूलर सब बंद कर दिए। आप भी वही है ना जिनके यहाँ पर गुड मॉर्निंग बोलने का रिवाज ही नहीं है, सीधा ऐसे ही होता है ना आपके साथ। मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ, मैं भी इस दुख से बहुत गुजरी हूँ, इसलिए मुझे पता है, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि आपके दर्द को कम करने के लिए और चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए मैं आ गई हूँ लेकर दिल के तराने, गाने नए पुराने। शालिनी कहते हैं मुझे, और आपको क्या कहते हैं तो आपको मालूम ही होगा, नहीं है तो पता कर लीजिए जरा, नींद से जागी तो पता चल जाएगा आप कौन है, जरा शक्ल देखिए अपने आईने में। चलिए फिलहाल मुझे आपसे एक पूछनी थी बात, वो ये बहुत ही जरूरी बात है कि शाम को 6 बजते ही ये अचानक से मच्छर कहाँ से आ जाते हैं, हैं? इनका कौन सा 9 से 6 का ऑफिस होता है बताइए। इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब अगर आपके पास हो ना तो मुझे जरूर दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड।

नहीं चले ठीक है गर्लफ्रेंड को तो आप छोड़कर आ गए, लेकिन आप तो उसी गाड़ी में बैठे हुए हैं ना, उसी बाइक पर बैठे हुए, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये जो आप भागे जा रहे हैं ना सिग्नल तोड़ते हुए, जब चालान कटेगा ना तब जीप बाहर निकल के आ जाएगी। तो मैं बताने समझ के रहिएगा, संभल के रहिएगा, मेरी जुबान भी थोड़ी सी फिसल गई है। यहाँ पर मैं आपको बता देने जाती हूँ क्या, आकाशवाणी रेनबो 102.6 सुन रहे हैं आप मेरी अनी शालिनी के साथ, और शो चल रहा है क्या दिल के तराने गाने नहीं पुराने। और इसके साथ साथ एक बात और है, वो ये है कि कश गए ठीक तो है ना आप, बड़ा अच्छे लग रहे हैं आप, अब उठ गए हैं ना, इतनी देर से मैं कोशिश कर रही थी आपको उठाई दिया गया है, चलिए ये बात तो अच्छी है। लेकिन फिलहाल आपको करना ये है कि आपको अगर चाय पीनी है ना तो मेरे लिए भी बना लीजिएगा, और चीनी थोड़ा सा कम रखिएगा ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत स्वीट हूँ। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, आपके बराबर में खड़ी हुई आपकी बीवी कह रही है। हाँ, बाकी सारी बातें आपको सुनाई देती हैं, बस काम की बात ही सुनाई नहीं देती, बस उन्हीं की बात सुनाई नहीं देती। चलिए चलिए उठिए चाय बनाइए, क्योंकि अपने ही घर से बेदखल होते हुए अच्छे नहीं लगेंगे आप। आपके लिए गाना चला रही हूँ, फिलहाल गाते गुनगुनाते चाय बनाते अच्छे लगेंगे आप।

0: गलत काम थोड़े कर रही हूँ मैं। हेलो, कोई है? मैं बोल रही हूँ।
1: मैं कौन? बकरी?
0: नहीं नहीं।
1: फिर कौन? बिल्ली?
0: नहीं नहीं।
1: अच्छा एक काम करो, हटो, अब मुझे बोलने दो।
0: हाँ तो बोलो ना, कौन मना कर रहा है?
1: अरे तुम चुप रहोगी तब मैं बोलूंगी ना।
0: ठीक है बोल लो। वैसे मैं बता दूँ, बारिश वाला गाना मुझे बहुत पसंद आया। और बारिश से बात याद है कि बारिश में ना खिड़की दरवाजों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। सबसे ज्यादा खुश होते हैं वो खुशी के बारे भूल जाते हैं और फिर बंद ही नहीं होते।
1: अच्छा हाँ ठीक है, अब मुझे बात कर लेने दो। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप हैं मेरे साथ, यानी कि शालिनी कहते हैं मुझे, और चल रहा है शो दिल के तराने, गाने नए पुराने। और दिल के तराने गाने नए पुराने के साथ साथ आप बेहतरीन ट्रैक्स का को एंजॉय कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जो हैं, वो जो मैंने आपसे सवाल किया था कि मच्छरों की क्या कोई शिफ्ट होती है, कोई ऑफिस होता है, तो जवाब आए बहुत सारे लोगों के, कहते हैं कि हाँ भाई बहुत सारे मच्छर तो ऐसे होते हैं कि 24 घंटे शिफ्ट पर रहते हैं, आराम ही नहीं करते हैं। ये बात तो आपने सही कही। और कोई कुछ कुछ कह रहे हैं खाने पीने के लिए निकलते हैं, तो खाने का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ पीने के लिए ज़रूर निकलते हैं। खून हर महीने मैं सोचती हूँ ना कि ब्लड डोनेट करूँगी, लेकिन इतना ज़्यादा खून तो मच्छर भी जाते हैं, बचता ही नहीं है, डोनेट कहाँ से करेंगे बताइए ज़रा। हद ही हो गई है कि नहीं, क्या कहते हैं आप?

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

ओए ओए, क्या बात है, मजा ही आ गया। मैं क्या जी, सोने मकड़ो की हाल चाल है। मुझे पता है आप कह रही हैं क्या कि मुझे प्याज का रस नहीं चखना। ओए मखना, ओए मखना, मैं तो जा रही हूँ ले।

मेरे मकड़ा अब लीजिए स्वाद, क्योंकि आपने ही ना नाचते गाते खुशी खुशी में इस गाने में ना फिसल गए आप। आपने जो है भावनाओं में बहकर अपनी पत्नी को जो है वो शॉपिंग कराने का वादा कर दिया, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता है। अब आपके लिए मैं गाना चला सकती हूँ, आपको फिर से झूम लीजिए। क्या कर सकते हैं आप और हैं, अपनी जेब थोड़ी सी ढीली करिए, उनको भेजिए, क्योंकि प्यास का रख रख नहीं चख ना पड़ेगा आपको रखी हुई प्यास का, क्योंकि सब्जी तो आप ही बनाएंगे ना। एंजॉय करिए आप। आकाशवाणी रेनबो 102.6 सुन रहे हैं आप, मेरे यानी शालिनी के साथ शो चल रहा है दिल की तरह, गाने नए पुराने तो नया वाला पेश है आपके लिए।

हाँ वही इशारे तो आपको समझ में आ ही रहे होंगे अब, क्योंकि वो खुश है ना, और आपने उनको शॉपिंग करने के लिए पैसे जो दे दिए। पैसा है ही ऐसी चीज। वो क्या है ना कि पैसे को लेकर मुझे एक बात याद आ गई, और वो ये कि एक बार ना एक बाबा जो है एक व्यक्ति से पूछते हैं कि बच्चा बताओ तुम्हें जीवन में क्या चाहिए, तो बोला कि पैसा। तो बोला नहीं नहीं पैसे को साइड में रखो, आप बताओ क्या चाहिए। तो बोले वो साइड में रखे हुए पैसे। पैसा है ही ऐसी चीज। वो क्या है ना कि पैसा सबकी जरूरत है, लेकिन पैसा होता बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए सब कुछ नहीं होता है। तो आ जाते हैं अपने मुद्दे की बात पर। आकाशवाणी रेनबो 102.6 सुन रहे हैं आप, मेरे यानी शालिनी के साथ, और शो चल रहा है दिल के तराने, गाने नए पुराने। और ये पुराना नहीं नया गाना मैंने आपको सुनाया, और अब एक पुराने गाने की यहाँ पर जो है वो लाइन लगी हुई है, यहाँ प्लेलिस्ट में वो ऐड कर लिया है मैंने। तो लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या हाल चाल है आपके, हाँ क्या कह रहे हैं, घर वालों के ताने, नए पुराने गाने और बाकी ऊपर वाला जाने। तो बस आपकी इसी कंडीशन के लिए ना मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि डियर जिंदगी, बेशक हमें नचाओ पर गाने तो अच्छे चलाओ, है ना, ये कहना चाहते हैं ना आप भी। तो सुन लीजिए, आपकी बात सुन ली मैंने।

0: मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।

NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित

को साथ रखना। 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक डियरीज, यू आर ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 विद मी शालिनी। शो चल रहा है दिल के तराने गाने नए पुराने, और इन नए पुराने गानों के साथ साथ ना मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमने जाने का वक्त आ गया है। बहुत देर से हम बातें कर रहे हैं, तो जाते जाते मुझे ख्याल आया कि अक्सर आपने भी सुना होगा बचपन में या अभी भी आप सुनते होंगे कि जब भी आप पैसों की बात करें ना, तो आपको इधर उधर कोई ना कोई कहते हुए मिल ही जाता है कि हे पैसे क्या पेड़ों पर रखते हैं, बताओ जब देखो पैसे पैसे करते रहते हो। तो मेरा उनसे ये कहना है कि ठीक बात है कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, पर अगर उगते भी तब भी हमें क्या मिल जाते, क्योंकि जो आम और अमरूद है वो भी तो पेड़ों पर लगते हैं, पर क्या कभी फ्री में मिलते हैं? बताइए, सोचा कभी आपने? इतनी इतनी सोफिस्टिकेटेड बातें ना यहीं पर होती है, मैं ही कर सकती हूँ ऐसी बातें। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर शो चल रहा है दिल के तराने गाने नए पुराने, मेरे यानी शालिनी के साथ। लेकिन अब जो है चल रहा था होने वाला है, क्योंकि अब नया शो आने वाला है, ठीक है, तो आप उसे एंजॉय करिए। फिलहाल मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ना आज से दूर जाने का ख्याल ना सहा नहीं जाता, इसीलिए आपसे कह देती हूँ टाटा, टेक केयर, ख्याल रखिए, तो गाना सुननी चाहिए।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: The middle of the week is not at all lovely and can be annoying in strange ways. The deadline keeps coming, but the weekend feels close enough to imagine. Not quite close enough to touch, though. So before you get back to the grind, we'll take this hour's last break.
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाश।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।

यह है आकाशवाणी रेनबो 102.6 एफएम और अब समय है मुख्य समाचारों का। लाल सागर में यमन तट के पास भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हमला हुआ है। जहाज पर सवार सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक और वरिष्ठ अधिकारियों की 3री बैठक आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में शुरू हो रही है। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। रेपो रेट 5.25% पर ही बरकरार। नीट यूजी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संरचक प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को दिखावटी करार दिया है। भारत ने कहा है कि इससे वास्तविकता छिप नहीं सकती। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उन दावों का खंडन किया है जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार कार्ड वाले विद्यार्थियों को मुफ्त विद्युत साइकिल देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान 16 अगस्त से आम जनता के लिए खुलेगा। आगंतुक 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेताओं को सम्मानित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 16 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। और खेलों में भारत के कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और इसके अलावा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को 9वीं वरीयता मिली है। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने भी 5वीं वरीयता हासिल की है। और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ये थी एफएम रेनबो पर इस घंटे की खास खबरें।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: एग्जैक्टली ये है 102.6 FM रेनबो 11:02 दिखा रही है स्टूडियो क्लॉक। मैं निशा यहाँ पर पहुंच गई हूँ बॉलीवुड ट्रेल्स लेकर, जहाँ पर बॉलीवुड की कभी बड़ी सारी बातें होंगी। वैसे देखिए बातें तो हम सुबह से ही करना शुरू कर देते हैं, आप भी है ना, हम भी, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ, कभी अपने परिवार वालों के साथ में, और कभी कभी हमें चुप होने का मौका मिलता है। हाँ, अगर योग और मेडिटेशन करने की आदत होती है तो देखो शांत रहना पड़ता है। और बहुत लोग कहते हैं, शिकायत करते हैं कि आंख बंद करके जब भी हम ध्यान करते हैं ना तो हमारे अंदर का शोर और ज्यादा बढ़ जाता है। यस, बिगनर लेवल पर भाई ये होता है, लेकिन उसके बाद नहीं होता है। बट लेकिन अभी तो भाई मेडिटेशन करने का कोई टाइम नहीं है। आई नो ये काम का समय है और काम हम सब कर रहे हैं, तो इसीलिए बस अपने आंखें खुली रखिए और कानों को खुला ज़रूर रखिए, क्योंकि जो ये लिसनिंग होती है ना, ये भी मेरे अकॉर्डिंग मतलब एक तरह का बड़ा ही क्रिएटिव मेडिटेशन है। यहाँ पर हमारे सामने म्यूज़िक होता है, बातें होती हैं, लेकिन कोई पिक्चर नहीं होता, तो उस पिक्चर के क्रिएटर हम खुद हो सकते हैं। तो लिसनिंग अपने आप में ही एक बहुत ब्यूटिफुल क्रिएटिव एक्सरसाइज है, आई बिलीव सो। तो कीप लिसनिंग 102.6 FM रेनबो। मैंने रहूंगी आपके साथ इस आवर।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

रंगों से भरे हुए एफएम रेनबो 102.6 को आप सुन रहे हैं। गुड मॉर्निंग जी, बॉलीवुड ट्रेल से प्रोग्राम का नाम। और यस, यहाँ पर बॉलीवुड की और बॉलीवुड से जुड़े कलाकारों की बातें तो होंगी ही, और कुछ लोग हमारी फिल्म इंडस्ट्री में स्पेशली ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ करने से उन्हें पॉपुलैरिटी मिलती है, पब्लिसिटी मिलती है, कुछ ना करने से भी किसी किसी को मिल जाती है भाई फेमस होना चाहिए उसके लिए। इमरान खान इज वन सच नेम, हमारे आमिर खान जी के रिश्तेदार। बहुत सालों से, आई थिंक ऑलमोस्ट एक डिकेड से वो फिल्मों से गायब है, और ये पूरे डिकेड में उन्होंने अच्छा खासा ब्रेक लिया है, अपने आप को रिज्यूविनेट किया है, ऐसा वो आए दिन इंटरव्यूज में कहते रहते हैं। बट अब फाइनली उन्होंने अनाउंस किया है कि यस, ही इज कमिंग बैक, फिल्म्स में आ रहे हैं। और एक फिल्म है अधूरे हम अधूरे तुम, जिसके लिए शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं ये, और जल्दी ये फिल्म प्लेटफॉर्म्स पर आएगी और आप इस फिल्म को एंजॉय करेंगे। इनकी कमबैक फिल्म होगी जो कि एक ग्रोन अप्स की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, और इन्होंने कहा है कि बिल्कुल एज अप्रोप्रिएट रोल इस फिल्म में इनको मिला है, मतलब जिस एज फेज में ये हैं उसी कैरेक्टर को वो निभा रहे हैं। आई थिंक अपना एक कनेक्शन हमेशा ढूंढते हैं ये अपने कैरेक्टर के साथ में, मतलब अब परफेक्शनिस्ट के रिश्तेदार हैं तो ऐसा तो इफेक्ट आ ही जाता है ना सभी के सामने फिलहाल अधूरे हम अधूरे तुम तो जब आएंगे तब आप देखेंगे, लेकिन ये गाना ये भी कुछ ऐसे शब्दों को लेकर आया है।

102.6 FM रेनबो, मेरा नाम है निशा। वैसे एक और लड़की मेरे अलावा जिसकी बात मैं करने वाली हूँ, अगर वो हिंदी सिनेमा में ना होती ना तो बहुत कुछ मुझे लगता है अधूरा रह जाता। बड़ी ही नटखट, नादान और इतनी शरारती थी कि इनकी माँ ने बचपन में इन्हें कह दिया था कि हाय काश तुम्हारी भी एक बेटी हो, बिल्कुल तेरे ही जैसी हो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि ऐसे बच्चे के पेरेंट्स होना क्या होता है। पिताजी लग्जरी कार्स के इतने शौकीन थे तो एक बड़ी सी लग्जरी गाड़ी के नाम पर ही इनका नाम रखना चाहते थे। खैर वो मम्मी जी ने होने नहीं दिया। आपको पता ही चल गया मैं किसकी बात कर रही हूँ। भाई हमारी प्यारी काजोल आज जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, और असल ज़िंदगी में जब भी हम काजोल की बात करते हैं ना तो वो DDLJ की सिमरन याद आ जाती है ना, वो स्वीट सिंपल लव स्टोरी याद आ जाती है। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में की। 1974 में मुंबई में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। और एक ऐसे परिवार से आती हैं जो कि फिल्मी बैकग्राउंड रखता है। माँ तनुजा और पिताजी जो इनके शोमू मुखर्जी, वो एक निर्माता थे। अब फिल्मों के माहौल में पली बड़ी, लेकिन हाँ कहती हैं कि हमेशा स्ट्रगल कर ये आगे आई हैं और इनकी एक्टिंग तो हम सबको पसंद है ही। खुदी नाम की फिल्म से इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास सफल नहीं रही थी ये फिल्म, लेकिन अपने अभिनय को धीरे धीरे धीरे इन्होंने नोटिस कराए दिया, खास तौर पर जब बाजीगर आई थी, है ना। और उसके अलावा इन्होंने तो कभी खुशी कभी गम, हलचल, फना, माय नेमिस खान, इश्क, करण अर्जुन और दिल क्या करे, एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। और काजोल और अजय देवगन की प्रेम कहानी भी भाई काफ़ी फेमस रही, लोगों ने इनकी जोड़ी को पसंद करते हैं। लेकिन काजोल एक इंटरव्यू में कह रही थी एक बारी कि भाई हमारी फिल्म स्टोरी बिल्कुल भी फिल्मी नहीं थी, जो लव स्टोरी थी बहुत ही ज़्यादा सिंपल, एक दोस्ती से शुरू हुई, धीरे धीरे समझदारी से आगे बढ़कर ही हमने जो है आगे इससे एक रिश्ते का नाम दिया था। चलो जो भी किया, समझदारी का काम किया ना, उसमें हम खुश हैं एज अ फैन। सो काजोल जी, वेरी हैप्पी बर्थडे। हमारी प्यारी शरारती, एकदम बेबाक, हाजिर जवाब और दमदार एक्टिंग, अगर इन शब्दों से किसी को बयां किया जा सकता है ना तो वो काजोल ही है। बॉलीवुड की चुलबुली सुपरस्टार को अ वेरी हैप्पी बर्थडे टुडे।

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

नजर न लगे भाई, सच में बड़ा अच्छा मौसम बाहर हुआ है। हल्की हल्की बारिश हो रही है। फिलहाल बाहर का तापमान 29 के आसपास बना हुआ है। हाँ जी, आई अग्री कि ह्यूमिडिटी है दिल्ली एनसीआर के वेदर में, बट कोई नहीं जी, आप गाने सुनो, इंजॉय करो एफएम रेनबो पर बॉलीवुड ट्रेल्स। वेरी गुड मॉर्निंग, मैं निशा आपके साथ में। और यस भाई, रेडियो तो आप सुन रहे हैं, ये तो मुझे आपकी प्रेजेंस लगातार दिखाई दे रही है। और बॉलीवुड सरताज बनना चाहते हैं ना? हाँ, तो अब ये मुझे ऐसा लगता है कि प्लास्टिक एज, क्योंकि हमें चारों तरफ प्लास्टिक बहुत ज्यादा नजर आता है, ऐसा मैं मानती हूं कि ये प्लास्टिक एज है। और साथ ही सोशल मीडिया, इंटरनेट जब वाइडली अवेलेबल है, तो आप कितनी जल्दी मेरे सवाल का आंसर कर पाते हैं। अभी भी खटाखट भेजे जा रहे हैं। पहले मैं सवाल तो पूछ लूं, रामायण का ट्रेलर देख लिया आपने? हाँ, सब लोग लगे हैं बुराइयां करने में और कोई तारीफ करने में, मतलब जिसको जो फील होता है। तो ये जो रणबीर कपूर स्टार रामायण है, इस रामायण सीरीज में एक फिल्म में श्रुपनखा का कैरेक्टर है, वो कौन सी एक्टर एक्ट्रेस हैं जो प्ले कर रही हैं, बस उन्हीं का नाम आपको मुझे लिखकर भेजना है। 9868107070 इज द नंबर। आप अपनी नाम और जगह के साथ में ये बस मुझे मैसेज कर दीजिए राइट आंसर, और मैं आपको बस ऐसे अच्छे अच्छे गाने भेजती रहूंगी। युहानी और जुबिन नौटियाल की आवाज़ में, राइट हियर ऑन 102.6 FM।

आप भी सुन लीजिए, दिस इज 102.6 आकाशवाणी रेनबो. मैं निशा, बॉलीवुड ट्रेल्स इज द नेम ऑफ द शो. और आप वैसे सुबह से मुझे, मतलब मैं सोचती हूँ मैं यहाँ फिल्म्स की अपडेट देने के लिए आती हूँ, बातें करने के लिए आती हूँ, लेकिन आप भी ना कुछ कम नहीं है, लगातार मैसेजेस करते रहते हैं. काजोल के बर्थडे के बारे में भी पहली अनाउंसमेंट मैंने देख ली थी, शी इज टर्निंग 52 ईयर्स, मतलब की हो गई हैं वो आज. और एक और एक्ट्रेस हैं, जेनिलिया डिसूजा, जिसका नाम मुझे नजर नहीं आया, शी इज टर्निंग 39 और आज ये भी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं अपनी फैमिली एंड फैंस के साथ में. बड़े, मतलब बड़ी ही चुलबुली अदाओं वाली है, बहुत खूबसूरत मुस्कान है इनकी, और इसी वजह से लाखों के दिलों पर राज करती हैं जेनिलिया डिसूजा. रितेश के साथ इनकी शादी हुई है और बहुत ही अच्छे हॉट कपल माने जाते हैं बॉलीवुड के. और 2003 में इन दोनों ने ही एक साथ तुझे मेरी कसम इस फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी, और तभी से इनका कनेक्शन जो है वो जुड़ गया था. सीक्रेट मीटिंग शुरू हो गई थी, ऐसा कई बार ही अपने इंटरव्यूज़ में बताते हैं. और जेनिलिया की बात करते हैं भाई, आज 5 अगस्त के दिन इनका जन्मदिन आता है. कॉलेज में पढ़ाई लिखाई अच्छे से की है इन्होंने और स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे. और पता है आपको, जेनिलिया स्टेट लेवल एथलीट रह चुकी हैं अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर, और ऑल्सो नेशनल लेवल फुटबॉलर भी रही हैं ये. इन्होंने फुटबॉल भी काफ़ी खेला है. बस जब प्यार हो गया, शादी हो गई, और काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म से. और आई थिंक 2012 में इनकी शादी हुई थी, उसके बाद से दो बेटे इनके, रिहान और राहिल, उनके साथ बहुत सारी अपनी रील्स ये डालते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं देखती रहती हूँ इनको. एक लंबा ब्रेक लेने के बाद फिलहाल ये वापसी कर चुकी हैं फिल्मों में, और इन्होंने शुरुआत तो 2022 में ही कर दी थी. वेड नाम की एक मराठी फिल्म से इन्होंने कमबैक किया था, एंड दिस इज़ अनदर मास्टरपीस, सितारे जमीन पर. आई लव द फिल्म. इसमें भी जेनिलिया का छोटा सा रोल था, एंड वेरी हैप्पी बर्थडे टू जेनिलिया ऑल्सो.

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
3: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
2: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
3: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
4: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

102.6 FM रेनबो है ये 11:45 और बॉलीवुड ट्रेल्स आप सुन रहे हैं। बॉलीवुड सरताज बनने के लिए बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब मुझे भेज दिए हैं ऑलरेडी। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ नेम्स आई कैन सी और सभी ने राइट आंसर्स दिए हैं। सवाल मेरा ये था कि जो रामायण का ट्रेलर, जो 4 मिनट का ट्रेलर रणबीर कपूर स्टारर ये इसका ट्रेलर आया है, क्या आपने देख लिया है? और दूसरा ये कि इसमें शूर्पणखा के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो गया है, तो वो कौन सी कैरेक्टर एक्ट्रेस हैं रियल में जो उसे प्ले कर रही हैं? निखिल जैन जी बिल्कुल सही जवाब आपने भेजा है, रवि ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है, विनोद जी का बिल्कुल सही जवाब हमें आया है और उसके अलावा हमें आशु ने लखनऊ से बिल्कुल ठीक जवाब भेजा है, एब्सोल्युटली राइट। और संदीप जी आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बठिंडा से संदीप जी का मैसेज था ये। और वाराणसी से तनुजा शाह ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है हमें और इसी तरह देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। अब इन सभी सही जवाबों में से कोई एक जो हमारा फाइनली बॉलीवुड सरताज बनेगा उसके साथ ऑन एयर हम लोग बात करेंगे। आप हाँ ये फैंटास्टिक से गाना एंजॉय कीजिए फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2।

0: आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो बॉलीवुड ट्रेल्स और बॉलीवुड सरताज का क्वेश्चन मैंने पूछा था, बहुत सारे सही जवाब आए और फाइनली द राइट आंसर के साथ में हमारे आज के बॉलीवुड सरताज मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो विनोद जी, स्वागत है आपका FM रेनबो पर।
1: थैंक यू जी।
0: अपने आसपास के लोगों को फिलहाल के लिए तो थोड़ी शांति बनाने के लिए कह दीजिए जी। मीनवाइल आपसे मैंने सवाल पूछा था कि जो रामायण का लेटेस्ट ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसे लोग पसंद कर रहे हैं, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक कैरेक्टर जो है श्रुपणखा, वो कौन सी एक्ट्रेस जो है वो निभा रही हैं, जरा बताइए क्या है उनका नाम?
1: रकुल प्रीत सिंह।
0: यस, एब्सोल्युटली राइट आंसर विनोद जी, कंग्रेचुलेशन, सही जवाब आपने दिया है। और रामायण आपको पसंद है विनोद?
1: बचपन से
0: है ना, मेरा भी कुछ ऐसे है, जितनी मर्जी बार देखने को ये मिले ना ये कहानी, हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाया की जाती है ना।
1: हाँ, मैंने तो पढ़ी भी हुई है।
0: वेरी नाइस। तो कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है आपका रामायण में, अगर एज अ ग्रंथ में से मैं पूछूं?
1: राम जी और हनुमान जी।
0: अच्छा, और इसका क्या कारण है, क्या एक सीख आपको राम जी हनुमान जी से मिलती है?
1: मुझे सीख तो राम जी, तो आप जानती है कि आदर्श पुरुष थे।
0: हाँ जी,
1: वो तो पुरुषोत्तम भी उन्हें कहा जाता है।
0: हाँ जी।
1: और हनुमान जी जैसा महान सेवक आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ और ना कभी होगा।
0: हाँ, मतलब वो जो सेवा भाव और एक जो भक्ति भाव वो दिखाते हैं ना, वो तो अनइमेजिनेबल है, मतलब है ना, वही सीख मुझे भी बेस्ट यही पार्ट लगता है हनुमान जी की।
1: लक्ष्मण जी भी इस मूवी में बहुत खास करेक्टर है, कहते हैं ना ये की राम तो हर युग में पैदा हो सकता है पर लक्ष्मण जैसा भाई पैदा होना बहुत मुश्किल है।
0: हाँ हाँ, देखिए हर एक पार्ट में रामायण के हर एक कैरेक्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है विनोद। मैं तो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी की तरह रामायण को जितनी बार भी देखती हूँ हर बार एक नई लर्निंग निकल कर आती है सामने। चलिए, आपसे बात करके विनोद अच्छा लगा, कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच, कीप लिसनिंग। तो ये थे विनोद हमारे साथ बिल्कुल राइट आंसर के साथ में, आप FM रेनबो पर बने रहिए एक और बात के साथ, जल्दी वापस आऊंगी। ये है बॉलीवुड ट्रेल्स और मैं हूं निशा आपके साथ में।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे थे बॉलीवुड ट्रेल्स। अब मेरा यहाँ से जाने का टाइम हो गया, लेकिन जाने से पहले पहले अपनी एक मोस्ट फेवरेट चीज के बारे में तो आपको बताना ही मैं भूल गई हूँ। देखिए, एनिमेटेड फिल्मों का को देखने का मुझे बहुत ज्यादा शौक है, और 2026 में अभी तक टॉय स्टोरी 5 आ चुकी है, हॉपर्स आ चुकी है, जिसे मैंने तो सिनेमा हॉल में जाकर इंजॉय किया था। लेकिन अभी आने वाली फिल्म के बारे में भी आपको बता लेती हूँ। और श्रेक 5 आने वाली है, और बहुत ही अच्छी फॉरगॉटन आइलैंड करके एक फिल्म आएगी, जो कि एक फैमिली के दो फ्रेंड्स के एक्चुअली एडवेंचर पर बेस्ड फिल्म है ये। और पॉ पेट्रोल मूवी जो बच्चे बहुत देखते हैं, ये भी अगस्त के महीने में ही इसी महीने में रिलीज होंगी। तो अगर आप एनिमेटेड फिल्मों के शौकीन हैं तो आप यस यू शुड लुक फॉरवर्ड टू दीज मूवीज, जिसमें डेफिनेटली इंजॉय बहुत ज्यादा होने वाला है। तो फिलहाल आई एम लीविंग यू, और आप अगला शो इंजॉय कीजिएगा, और फिलहाल मैं जा रही हूँ। एंड कीप लिसनिंग 102.6 FM।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड आफ्टरनून डियर लिसनर्स, दिस इज 102.6 आकाशवाणी रेनबो एंड यू आर लिसनिंग टू प्ले इट कूल विद उत्कर्ष शरण, वेयर ट्यून्स एंड थॉट्स कम टुगेदर, बट देयर विल बी टाइम फॉर थॉट्स लेटर, सो लेट्स स्टार्ट विद अ ट्यून, रिदम डिवाइन फर्नांडो बाय एनरिके इग्लेसियस।
2: Feel the rhythm.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: आया है बबल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: वेलकम बैक टू प्ले इट कूल एट 102.6 आकाशवाणी रेनबो, वेयर टुडे इज ऑल अबाउट आवर एनिमल फ्रेंड्स। हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ पेट्स हेल्प अस स्लो डाउन? इट कुड बी अ प्लेफुल डॉग, अ स्लीपी कैट, और इवन फिश स्विमिंग क्वाइटली इन एन एक्वेरियम। इट इज अ प्रूवन फैक्ट दैट पेट्स हेल्प विद लोनलीनेस एंड डिप्रेशन आफ्टर ऑल। ऑन दैट नोट, ही इज टू बी ऑल राइट बाय ऑरोरा।

0: लिखना 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे।

0: 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: If you've just joined us, welcome. This is Play It Cool at 102.6 Akashvani Rainbow, and today we are talking about animals we love and care for. Some of our earliest animal companions repaid that love and care with extraordinary loyalty and helped us become what we are today, a civilization. So here's Together by Avril Lavigne.

0: Miss Archana from Indore writes to us and says, "We adopted a street cat a few months ago and fed it cat food, took care of it. Lo and behold, a few months later, the cat brought her babies to our doorstep. The family now lives in our veranda, roaming free." Now that is a story that can make anyone's heart melt. And after all, we've all had those days when nothing seems to go right. Then a pet walks over, asks for a cuddle, or greets you like you've been away for years, and everything just is better. Tell us about the animal that always makes you smile at 9868107070 while we take this hour's last break.
1: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: वी आर बैक अगेन टू प्ले इट कूल ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो विथ मोर चैटिंग अबाउट बर्ड्स एंड बीस्ट्स। स्पीकिंग ऑफ बर्ड्स, इफ यू लव बर्ड्स, हियर्स अ सिंपल वेल नोन फैक्ट, द हैप्पीएस्ट फ्लाइंग फ्री, नॉट लिविंग इन केजेस। एंड इफ यू आर वंडरिंग हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ देम, डोंट ओवरथिंक इट, लीव आउट सम वाटर, बी काइंड एंड सपोर्ट लोकल bird feeder whenever you can. Help can come in all sorts of shapes and forms after all. Just don't force them into a closed quota. On that note, here's 32 Flavors by Alana Davis.

102.6 एफएम रेनबो पर अब मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक और वरिष्ठ अधिकारियों की 3री बैठक आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में शुरू हो रही है। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। रेपो रेट 5.25% पर ही बरकरार। नीट यूजी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू हो गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को दिखावटी करार दिया है। भारत ने कहा है कि इससे वास्तविकता छिप नहीं सकती। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उन दावों का खंडन किया है जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार कार्ड धारक विद्यार्थियों को मुफ्त ई साइकिल देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान 16 अगस्त से आम जनता के लिए खुलेगा। आगंतुक 15 सितंबर तक भ्रमण कर सकेंगे। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेताओं को सम्मानित किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी खिलाड़ियों और भारतीय मुक्केबाजी संघ की सराहना की है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नई दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। श्री सावंत ने राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को राजनीतिक आरक्षण देने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। और खेलों में भारत के कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय कोरिस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए हैं। इसके अलावा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को 9वीं वरीयता मिली है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को चिराग शेट्टी ने भी 5वीं वरीयता हासिल की है। और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ये थी एफएम रेनबो पर इस घंटे की खास खबरें।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: रेनबो हेल्पलाइन का आज का अंक सजीव नहीं है, ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: रेडियो को ट्यून इन करो और स्ट्रेस यानी कि टेंशन दूर करो, यही है हमारा नारा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जिए एक स्ट्रेस फ्री जिंदगी। तनाव से ग्रस्त रहते हैं लेकिन हर बार यही सोचते हैं कि इस तनाव से बाहर कैसे निकलूं, कोई तो ऐसा हो, कोई तो सच्चा साथी हो, कोई तो सारथी हो जो मुझे सही रास्ता दिखाए। तो सही रास्ता दिखाने के लिए आज हम आपके लिए लाए हैं रेनबो हेल्पलाइन में ये खास प्रोग्राम, और आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट पर। और स्ट्रेस मैनेजमेंट इस विषय पर जानकारी देने के लिए, आपके प्रश्नों के निदान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विशेषज्ञ। सबसे पहले आपको बता देती हूं कि हमारे विशेषज्ञ श्री योगेश कुमार जी साइकोलॉजिस्ट हैं, योगा थेरेपिस्ट हैं, और मैं उम्मीद करती हूं कि इनके माध्यम से आज आप लाभान्वित होंगे। आपको आज बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, कुछ इनकी बातों के जरिए, कुछ आपके प्रश्नों के जरिए। तो अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं योगेश कुमार जी से तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स के माध्यम से 2342 1084, या फिर आप हमें संपर्क कर सकते हैं 2342 1080। ये हैं हमारे दो जादुई नंबर जिनके जरिए आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली के बाहर के श्रोताओं को एसटीडी कोड लगाना होगा 011। अच्छा जी, अगर आप कॉल के माध्यम से संपर्क नहीं कर पाते हैं तो फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेजेस भेज सकते हैं, संदेश आपके तुरंत हम तक पहुंचते हैं 9868107070 पर। तो आइए सबसे पहले सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान श्री योगेश कुमार जी का, जो साइकोलॉजिस्ट हैं और योगा थेरेपिस्ट हैं। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, मैं ये कहूंगी कि साइकोलॉजी अपने आप में एक बहुत ही ज्वलंत विषय है, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट किसी की भी समस्या को कहते हैं आइडेंटिफाई कर लेता है बहुत आसानी से, और साथ ही साथ जब आप योगा थेरेपिस्ट हो तो योगा के माध्यम से परेशानियों का निदान देना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो योगेश जी, आपको पुनः स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद
2: जी। तो आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। आज के आधुनिक और भौतिक युग में तनाव हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा बनता जा रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि तनाव या स्ट्रेस होता क्या है और किन वजहों से होता है, ये हमें बताएं।
3: देखिए, जब व्यक्ति जीवन में किसी बदलाव या चुनौती का सामना करता है तो उसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो इन्हें ही हम तनाव कह सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट स्ट्रेस इज हाउ वी रिएक्ट व्हेन वी फील अंडर प्रेशर और थ्रेटेंड। तो स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव
2: जी,
3: इफ इट हेल्प्स टू अवॉइड चैलेंजेस, डेंजर और मीट अ डेडलाइन
2: जी।
3: तो स्ट्रेस जो है, ऐसी जीवन में विभिन्न परिस्थितियां हैं जिनके कारण स्ट्रेस हो सकता है, और मैं आपको बताना चाहूंगा ये सिचुएशंस, ये परिस्थितियाँ रियलिस्टिक भी हो सकती हैं, अनरियलिस्टिक भी हो सकती हैं। जैसे रियलिस्टिक सिचुएशंस या परिस्थितियाँ क्या हो सकती हैं, किसी व्यक्ति का अगर जॉब छूट जाता है, डिवोर्स हो जाता है, कोई पर्सनल इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, अगर डेथ ऑफ ए क्लोज फैमिली मेंबर है, या कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। तो ये ऐसी सिचुएशंस हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें तनाव होना बहुत स्वाभाविक है। पर कई बार ऐसा देखा गया है कि अनरियलिस्टिक सिचुएशंस में भी लोग तनाव ले लेते हैं, जैसे इमेजिनरी काल्पनिक सिचुएशंस, मान लीजिए जिसे हम फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी भी कहते हैं। इसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा। तो एक महिला आई थी मेरे पास, तो उनकी यही समस्या थी, सी वाज सफरिंग फ्रॉम द फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी। तो जब उनके बच्चे स्कूल चले जाते थे, वैन में उनके बच्चे, स्कूल वैन लगी होती है, जब तक वापस नहीं आ जाते थे, तो उनमें काफी एंग्जाइटी रहती थी इस चीज को लेके कि मेरे बच्चे अगर थोड़ा भी लेट हो जाते तो उनको ये लगा रहता था कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो, पता नहीं कहीं चोट ना लग गई हो मेरे बच्चों को। तो इस तरह की एंग्जाइटी से ग्रस्त रहते थे। तो देखा गया है कि अनरियलिस्टिक या इमेजिनरी सिचुएशंस ऐसी कई लोग जो हैं और भी ग्रस्त रहते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि जब तक मैं बहुत धन संचय न कर लूं, मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं बन सकता। पर ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आप धन संचय ज्यादा कर रहे हैं तभी आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि आजकल जो स्ट्रेस हो रहा है वो रियलिस्टिक सिचुएशन से कम, जो अनरियलिस्टिक सिचुएशंस हैं, इमेजिनरी काल्पनिक परिस्थितियां हैं, उनसे ज्यादा हो रहा है।
2: हमने खुद जन्म दिया है परेशानियों को, फिर कहते हैं तनाव हो रहा है। वैसे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, आइए इनका नाम जानते हैं और क्या इनका प्रश्न है। हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछें आप।
4: जी, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ।
2: जी, नाम बताएं।
4: जी, मेरा नाम मुकेश है।
2: जी मुकेश, अपना सवाल पूछें आप। देखिए ये भी एक स्ट्रेस था इनके जीवन में, अपनी बात को नहीं कह पाए। खैर दोस्त, आपसे यही निवेदन करना चाहूंगी कि आप उन्हें कॉल करें, अगर कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 9868107070 इस नंबर के माध्यम से। तो हम बात कर रहे थे रियलिस्टिक को और अनरियलिस्टिक,
3: जो चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक जो व्यक्ति का

0: जो स्ट्रेस रेसिस्टेंट है वो अलग अलग होता है। स्ट्रेस रेसिस्टेंट कहते हैं द एबिलिटी टू एंड्योर स्ट्रेस विदाउट एक्सपीरियंसिंग एनी नेगेटिव इफेक्ट्स। कई बार आपने देखा है कि कई व्यक्ति जो होते हैं लाइफ में बड़ी से बड़ी चुनौती आती है उसमें भी अपना भविष्य उज्जवल बना लेते हैं, उनका सामना कर लेते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी चुनौतियों के सामने घुटने टेक देते हैं। तो नाउ वी कैन से द सोर्स ऑफ स्ट्रेस इज नॉट एक्सटर्नल एनवायरमेंट बट इट इज द इमोशनल एंड परसेप्चुअल एंड मेंटल फैक्टर्स दैट फॉर्म्स ऑफ अ बेसिक पर्सनैलिटी।
1: दोस्त, सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि आज हम स्ट्रेस मैनेजमेंट बात कर रहे हैं, तनाव जिससे हम सभी ग्रसित रहते हैं, किसी ना किसी समस्या से हम अपने आप को उलझे हुए पाते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को मैनेज करना चाहिए, अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना चाहिए कि हमें ये महसूस होने लगे कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इस जिंदगी को जीने के लिए सबसे पहले कहते हैं ना कि हमें स्वयं का निर्माण करना होता है, क्यों योगेश जी? और जब स्वयं का निर्माण करते हैं तो बाहर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनसे खुद को दूर रखना होता है और कहीं ना कहीं स्ट्रेस इस तरह से मैनेज किया जा सकता है। जी, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सभी मित्रों से एक बार दोबारा अनुरोध करना चाहेंगे कि आज हमारा विषय जो है वो ये कि स्ट्रेस मैनेज कैसे किया जाए। किसी चीज से अगर आपको दिक्कत हो रही है बेहिचक हमसे कहिए, हम आपकी समस्या का निदान जरूर देंगे। जी
0: देखिए, हम चर्चा कर रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति का जो स्ट्रेस रेसिस्टेंस है वो अलग होता है और सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरमेंट ही नहीं, हमारी जो इमोशनल्स और जो मेंटल फैक्टर्स हैं जो हमारी बेसिक पर्सनैलिटी को बनाते हैं उन कारण वो भी जो है स्ट्रेस रेसिस्टेंट हमारा कैसा है तो ये तय करते हैं। तो इसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहा था कि अगर एक व्यक्ति है उसका बॉस डांटता है और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने बॉस से फाइट कर बैठता है और इतना इम्पल्सिव हो जाता है कि इसके डायर कॉन्सिक्वेंसेस भी भूल जाता है कि इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं, कि उसकी जॉब जा सकती है और उसकी एक फैमिली को बहुत ही फाइनेंशियल सेटबैक लग सकता है। तो दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है उसकी भी बॉस से लड़ाई होती है पर वो जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, अपने आप को समझा लेता है क्योंकि मेरा प्रमोशन ड्यू है, इस तरीके की चीजें समझा लेता है। तो आपने देखा कि एक व्यक्ति का जॉब भी जा सकता है और दूसरा व्यक्ति उसी सिचुएशंस में प्रमोशंस भी ले लेता है। तो ये सब यही है कि आप इमोशंस को अपने कितना कंट्रोल कर पाते हैं और जब ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती है तो आप अपना कॉग्निशंस और इंटेलेक्ट कितना यूज कर रहे हैं, आप कहीं ज्यादा इम्पल्सिवनेस से काम तो नहीं कर रहे हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो आपके इमोशंस है, इम्पल्सिवनेस है, आप उसे कंट्रोल कीजिए और आपका जो कॉग्निशंस है, इंटेलेक्ट है, विजडम है, उसका आप ज्यादा यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस भी होगी उसमें से भी आप उभर के आ जाएंगे।
1: जी, उभर कर आ जाएंगे और हर बार अपने आप को समझाना बहुत जरूरी होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस एक छोटा सा प्रयास करना होगा, एक छोटा सा प्रयास हमारी तरफ से आपके लिए।

0: इसे कहते हैं पावर ऑफ पॉजिटिविटी। जब आप ये कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि सब अच्छा होगा, तो ऐसे में तनाव होना नामुमकिन है। क्यों योगेश जी? ठीक कहा मैंने? क्योंकि कहते हैं कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो अगर आप खुद सोच लें कि नहीं, मुझे कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ अच्छा होगा, तो स्ट्रेस जिससे समस्या होगी ही नहीं। बहुत सारे संदेश हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। हमने अक्सर देखा है कि महिलाओं को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, घर परिवार की छोटी बड़ी बातें, और वो बातें कभी कभी इतनी जटिल हो जाती हैं कि हमें लगने लगता है कि हमारा जीवन जैसे निरर्थक हो गया। एक संदेश हमारे पास यहाँ पर आया है, दोस्त ने नाम नहीं लिखा, कोई बात नहीं, लेकिन हम यही चाहेंगे कि आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिले। देवी सोनी है, हीतल सोनी शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, इनके नंबर से मैं इनको पहचानने की कोशिश करी। ये कहती है कि इन्हें बहुत डर लगता है, ये बहुत डरपोक है, बच्चे और पति अगर टाइम पर घर नहीं आते तो घबराहट होने लगती है, और इस नेचर की वजह से, अब देखिए उन्होंने कहा कि इनका ये स्वभाव बन चुका है, इसकी वजह से नहीं लगने लगता है कि ये अपने बच्चों के करियर में बाधा बन रही है, रिश्तों पर विश्वास नहीं होता, ऐसा लगता है कि लोग धोखा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इनके जीवन में शामिल हो चुकी है, और शायद पिता की मृत्यु के बाद इनके साथ ऐसा होने लगा है, शायद इनके साथ कुछ घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से इनका ध्यान अब भटक गया है। आगे बढ़ना चाहती हैं पर नामुमकिन सा लगता है, क्या कहना चाहते हैं आप?
1: देखिए, ऐसी सिचुएशंस में जो आपने कहा, एक महिला है, और महिलाओं का हमने देखा है कि अपने परिवार और बच्चों के प्रति बहुत जो कमिटेड रहती हैं, बहुत डिवोशन के साथ काम करती रहती हैं, तो उसमें अपनी जो वेलबींग है उसके बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। तो यहाँ भी मैं कहूँगा कि थोड़ा यहाँ पर आपको, जैसे जिसे हम कहते हैं कि सेल्फ लव, कि अपने आप से प्यार करिए, क्योंकि जब हम अपनी जो सेल्फ ग्रोथ की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो ये सारी चीजें, क्योंकि आपको जो एंजॉयमेंट है वो सबके लिए एक साइकोलॉजिकल नीड है, वो सबके जीवन में होना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी जो महिलाएं हैं बहुत अपने बच्चों को लेके बहुत ओवर प्रोटेक्टिव या हाइपर विजिलेंट हो जाती हैं। आप जितना ओवर प्रोटेक्टिव रहेंगे बच्चों के बारे में या किसी भी सिचुएशंस को लेके, जब हाइपर विजिलेंट हो जाएंगे, जैसे हमने अभी पहले भी चर्चा में बताया था कि इसे फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी कहती हैं, कि कोई लॉजिकल कोई कॉज नहीं है, कोई रेशनल कॉज नहीं है एंग्जाइटी का, पर आप एंग्जाइटी करे जा रहे हैं, तो ये बड़ी, ये जो एक्सेसिव जो एंग्जाइटी

0: है ये कभी कभी क्या होती है कि आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी खराब कर सकती है। जैसे आपने देखा है कि रेत को आप जितना मुट्ठी में दबाने की कोशिश करेंगे वो उतना हाथ से फिसलेगी। ऐसे लाइफ का भी सिद्धांत है, एक फ्लो के साथ भइए और अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे भी काम करिए, अपने सेल्फ ग्रोथ पे भी काम करिए, हॉबीज कल्टिवेट करिए, अपने को भी स्पेस दीजिए, तो आप देखेंगे अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, योगा करिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है कई हद तक जो है सॉल्व होती मिलेगी।
1: और इसी को कहते हैं शायद स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लिए। कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और मित्र सबसे पहले आपसे ये कहना चाहेंगे, या जो भी कॉलर हमें कॉल कर रहे हैं, आज का हमारा शो स्ट्रेस मैनेजमेंट पर है तो इसके संबंधी ही सवाल पूछें। हेलो जी नमस्कार, अपना नाम बताइए और अपना प्रश्न पूछिए। जी सवाल पूछिए।
2: मैडम ऐसा हुआ है घर में झगड़े वगैरह रहते हैं मैडम, अक्सर किस समस्या से उभर नहीं पा रहा हूँ मैं।
1: किस समस्या से उभर नहीं पा रहे हैं आप?
2: 4-5 साल हो गए मैडम उसकी समस्या से उभर नहीं पा रहा हूँ मैं।
1: समस्या क्या थी, समस्या बताइए पहले।
2: घर में झगड़े वगैरह होते रहते हैं मैडम।
1: घर में झगड़े होते रहते हैं जी। कभी कभी हमारे निजी जिंदगी में इतने सारे मुद्दे होते हैं कि हम उनका कहते हैं निदान नहीं ढूंढ पाते। कभी कभी हमें रास्ता नहीं दिखता और जब रास्ता नहीं दिखता तो हमें लगने लगता है कि अब सब कुछ नामुमकिन है, अब जीवन में जैसे कभी कुछ ठीक नहीं होगा। ऐसा ही कुछ शायद इनके साथ हो रहा है कि घर की जो तनाव है, घर के जो झगड़े हैं, इन पर हावी हो रहे हैं।
0: देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितना आप ड्रैगिंग लाइफ जिएंगे, ड्रैगिंग लाइफ मतलब जितना आप अपने में ही सिमट के रह जाएंगे, ठीक है, तो आपको ये समस्याएं सताती रहेंगी। तो इसके लिए जरूरी है कि अपनी थोड़ा आप चेतना का भी विकास कीजिए। एक कहते हैं ना कि एक कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस की तरफ जाइए, जो कि हम जीवन में नहीं करते। सिर्फ मेटेलिस्टिक जो हमारी जो मंडन एक्टिविटीज हैं उसमें इतना एनग्रॉस्ड हो जाते हैं कि जो हमारी जो स्पिरिचुअल क्वालिटीज हैं, जो हमारे वैल्यूज हैं, वर्च्यू हैं, उनको हम कल्टिवेट नहीं कर पाते हैं और हम समस्या से ग्रस्त रहते हैं, तनाव से ग्रस्त रहते हैं। तो जो भी आप घरेलू समस्या की बात कर रहे हैं तो मैं ऐसे लोगों को हमेशा यही समझाता हूँ कि एंगेज इन सोशल सर्विस, कुछ सोशल सर्विस करिए, हॉबी कल्टीवेट करिए, कुछ अपनी जो चेतना, जो भौतिक चेतना है, जो आपको पारिवारिक माहौल में ही आपकी सिमट कर रह गई है, उसको थोड़ा बढ़ाइए कि जीवन में कितना कुछ है, प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू डू, कि आप जीवन में जब विस्तार करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके जीवन में जो संकुचन है, संकीर्णता है, वो समाप्त होती चली जाएगी।
1: एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो।
3: हेलो मैम
1: जी, अपना नाम बताएं, प्रश्न पूछें।
3: मेरा नाम अपूर्वा पात्रा है मैम, फ्रॉम असम।
1: जी अपना सवाल पूछिए।
3: जी मैम मैं पूछना चाहता था कि मेरे डैड जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में कारण
1: जी
3: घर में बहुत अनमिल जैसा होता है।
1: फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से घर का माहौल जो है वो काफी खराब है, शायद कभी गुस्से में आ जाते होंगे, चिड़चिड़ाते होंगे।
3: हाँ मैम, और मेरे पढ़ाई पे भी वो
1: ध्यान नहीं
3: दे पाते, बहुत सारे प्रभाव डालते हैं।
1: जी जी, देखिए ये जो हम कहते हैं ना कि हमारा जो व्यक्तिगत जीवन होता है, हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है, जो घर परिवार का माहौल होता है, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में ना इजाफा करता है। और जितने भी हमारे कॉलर्स आ रहे हैं सबके कहीं ना कहीं जो पर्सनल लाइफ के इश्यूज हैं वो परेशान कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि ऑफिस कल्चर में तो हम खुद अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। ऑफिस से तो बाहर निकलना बहुत आसान है, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाया जा सकता है, पर परिवार को नहीं छोड़ा जा सकता। तो फाइनेंशियल स्ट्रेस का यहाँ पर इनका मुद्दा है की वजह से जो है वो घर पे बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस है, जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में स्ट्रेस होना शायद एक लाजमी सी बात है।
0: देखिए मैंने जैसे कि शुरू में ही कहा था कि बड़ी रियलिस्टिक सिचुएशंस होती हैं जिनके कारण स्ट्रेस होता है, और ऐसी सिचुएशंस में जो है स्ट्रेस होना स्वाभाविक है। तो इसका यही है कि इसमें मुझे पैसे का अभाव लग रहा है आपके परिवार में, तो आप देखिए आप कैसे कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग सही ढंग से करिए और आप अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और आप सबसे मेन जो चीज है, नेवर लूज होप, आप आशा कभी मत छोड़िए कि हमेशा जो है अंधेरे के बाद जो है सवेरा आता ही है। तो इस तरीके की जब आप ऑटो सजेशंस पे काम करेंगे, अच्छा साहित्य पढ़ेंगे जो आपको मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाए, सबल बनाए, तो आप देखेंगे कि ये सारी चीजें आपके जीवन में बहुत हेल्पफुल होंगी।
1: जी योगेश जी, एक बात और कहना चाहूंगी यहाँ पर, आप तो पूछना भी चाहूंगी, हम उम्मीदें बहुत ज्यादा कर लेते हैं जिसकी वजह से शायद रास्ते नहीं निकल पाते। हम सोचते हैं सामने वाला हमारे लिए कुछ कर नहीं रहा है, अगर वो नहीं कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं अपने लिए या उनके लिए।
0: देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप रिसीविंग एंड पे रहेंगे या दूसरों से एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखेंगे तो आपको तनाव जरूर होगा। तो हमेशा ये है कि मैं कहता हूँ दूसरों से नहीं, अपने आप से भी आप जो है एक्सपेक्टेशंस कम रखिए। कई लोग अपना सेल्फ वर्थ बहुत ज्यादा

0: बढ़ा लेते हैं, अपने खुद से ही एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखने लगते हैं, उससे भी बहुत तनाव होता है। और अपनी लिमिटेशंस को पहचानिए और जो जहां आपको नो कहना है और असर्टिव मैनर में आपको नो कहना भी आना चाहिए, तब आप तनाव से बच सकते हैं।
1: जी, एक हमारे एक दूसरे से बात करने की आदत जो है ना वो कम हो गई है। हम मुद्दों को अपने दिल में रचा बसा लेते हैं और फिर कहते हैं कि मुद्दे हो गए और उसकी वजह से सारा जो खामियाजा है हमारे दिल मस्तिष्क को झेलना पड़ता है, खासतौर पर महिलाओं को। देखिए, एक सवाल हमारे पास आया है, इनकी परेशानी इन्होंने मैसेज के थ्रू भेजी है हम तक। ज्योति संजीव कहती है, इन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है क्योंकि घर का पारिवारिक माहौल की अगर बात करें, ससुराल में है तो ससुराल का माहौल हर महिला के लिए अलग अलग तरीके से होता है, कहीं एडजस्टमेंट होते हैं कहीं नहीं होते, इसकी वजह से इनको बहुत स्ट्रेस होता है, दिन रात ये टेंशन में रहती है और उनको लगता है कि जैसे जीवन निरर्थक सा है, जीवन के मायने नहीं रह गए। तब शायद जब हमें कोई सुनता नहीं है, जब हमारी बात पे कोई हामी नहीं भरता, जब ये नहीं कहता कि तुम वैल्यूएबल हो फैमिली के लिए। शादी के 9 साल हो गए हैं, इनके बच्चे भी है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है। अब ये घबराहट कैसे आदमी को खत्म कर सकती है, यानी कि उसकी मानसिक स्थिति को खराब कर सकती है? ये
0: देखिए, मैं एक वेदों से लाइन बोलता हूँ तो उससे इस चीजों का एक जवाब मिल जाएगा। वेदों में लिखा है, मर जाएंगी सब भ्रांति भूल, आनंद ज्योति में जल जल कर। तो जितनी भ्रांति हैं, जो डाउट्स हैं, जितने भी गिले शिकवे हैं, इस तरीके की जो मानसिकता इसलिए है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में आनंद की कमी है। तो आपको स्पिरिचुअल रूप से भी सुदृढ़ बनने की कोशिश करनी है, अपनी सेल्फ वर्थ को हमेशा जो है आपको इंटैक्ट रखना है। आप दूसरों में इतना ना उलझे कि अपनी जो सेल्फ एस्टीम सेल्फ वर्थ है आप उस पे जो है बुरा इफेक्ट पड़े। तो आप कुछ ना कुछ आपको अपने लिए करना है, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए करना है, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के लिए करना है। जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आएगी।
1: जी, आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि ऑप्टिमम स्ट्रेस हमारी ग्रोथ हमारी सर्वाइवल पर असर डालता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? और ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर सिम्टम्स क्या है, कैसे पता लगेगा कि हमें स्ट्रेस हो रहा है, मैं स्ट्रेस से ग्रस्त हूं। कभी कभी हमें ना समस्या है, पर समस्या क्यों है, क्या उसके लक्षण है, हमें समझ ही नहीं आता, तो कैसे आइडेंटिफाई करें?
0: देखिए, जो ऑप्टिमम स्ट्रेस है वो हमारे सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए जरूरी है, या हम कह सकते हैं कि हमारी हेल्थ और वेलबींग के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर आपको थोड़ा स्ट्रेस नहीं होगा, अगर बच्चे को, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, अगर स्टूडेंट को पढ़ाई को लेके या एग्जाम को लेके एक ऑप्टिमम स्ट्रेस नहीं होगा तो वो अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा। अगर आपको हेल्थ भी अच्छी मेंटेन करनी है तो उसके लिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी होगी, एक रूटीन फॉलो करना होगा, तो ये भी टू सम एक्सटेंट आपको थोड़ा स्ट्रेस बियर करना होगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेस जो है हमारी हेल्थ और वेलबींग के लिए भी जरूरी है। और कभी कभी देखा गया है कई जो पॉजिटिव इवेंट्स होती हैं हमारे जीवन में, जैसे कि मैरिज है, जैसे किसी के बेबी हुआ है या प्रमोशंस मिली है, ये पॉजिटिव इवेंट से भी हमें स्ट्रेस होता है। इसको हम यू स्ट्रेस भी कहते हैं या पॉजिटिव स्ट्रेस भी कहते हैं, क्योंकि जब हम मैरिज करते हैं या किसी के बेबी होता है या प्रमोशन मिलता है तो आपने देखा है कि उसकी जो नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं, उस व्यक्ति का पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, इस वजह से भी स्ट्रेस हो जाता है। पर ये पॉजिटिव स्ट्रेस है और ये स्ट्रेस होना लाइफ में जरूरी भी है।
1: जी, जैसे हाई स्कूल या बोर्ड के एग्जामिनेशन के दौरान हम स्ट्रेस लेते हैं, लेकिन वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं जब अच्छे अंक प्राप्त होते हैं तो महसूस होता है, क्योंकि उस स्ट्रेस के चलते आप बहुत मेहनत भी कर लेते हैं।
0: मेहनत भी करते हैं,
1: तो ये मेहनत का सिलसिला जारी रहना चाहिए और किनारे जरूर मिलते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रयास करना होता है और साथ ही साथ उन अच्छे लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है, जैसे आज हमने योगेश कुमार जी को आइडेंटिफाई किया कि ये इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगी वो बातें जो उम्मीद करते हैं कि आपकी जिंदगी को बदल देंगी। तो इस बदलाव में आइए एक दूसरे का साथ निभाएं। मैं हूं गीतिका, प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं योगेश कुमार जी, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और योगा थेरेपिस्ट हैं। जानेंगे आपसे आगे भी कि कैसे योगा के माध्यम से हम अपने स्ट्रेस को खत्म कर सकते हैं।

0: वेलकम बैक। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल। प्रोग्राम चल रहा है जी आपका अपना रेनबो हेल्पलाइन, जहां आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। बहुत से मुद्दे हैं जिनके सोल्यूशन हम नहीं ढूंढ पाते हैं, पर हम यही कहेंगे कि हर परेशानी का हल है दुनिया में, और जब हम हल ढूंढ लेते हैं तो स्ट्रेस को शायद आसानी से हम कम कर पाते हैं, खत्म कर पाते हैं। योगेश कुमार जी हमारे साथ हैं और निरंतर आपको ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो आपको प्रेरित करेंगे, क्योंकि जिंदगी खूबसूरत है और खूबसूरत के साथ जिंदगी को कैसे जिया जाता है बता रहा है आपको जी। योगेश जी, आपसे जानना चाहते हैं कि एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमारी बॉडी के अंदर कैसे रिस्पॉन्ड करती है, यानी कि हमारी बॉडी किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करती है। क्योंकि हमने देखा कुछ लोग जो बहुत स्ट्रेस में होते हैं कहते हैं मैं एंग्जाइटी हो रही है, और एंग्जाइटी होते वक्त उनके हाथ कांप रहे होते हैं। तो ये फिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रेस है क्या, कैसे स्ट्रेस ज्यादा लेने से हमारा शरीर जो है जिस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए नहीं करता है।
1: देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, अगर फिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रेस समझना है तो इसके लिए हमें एचपी एक्सिस को समझना होगा। एचपी एक्सिस क्या होता है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रेनल कॉर्टेक्स। क्या होता है, जो ब्रेन में हमारा जो हाइपोथैलेमस है, जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में व्यक्ति होता है तो ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। जब भी हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होंगे तो ब्रेन जो है स्वाभाविक तौर पर अपना काम करना चालू कर देगा। तो ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है वो कॉर्टिकोट्रोफिन्स जो हार्मोन्स रिलीज करता है, और कॉर्टिकोट्रोफिन्स जो है ट्रिगर करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन्स रिलीज करे, और एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन्स जो है ट्रिगर करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को कि वो कॉर्टिसोल हार्मोन्स रिलीज करे। कॉर्टिसोल हार्मोन्स बनने से क्या होता है कि जब व्यक्ति स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में होता है तो उसका जो है ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, और हार्ट बीट बढ़ती है, एनर्जी लेवल बढ़ता है और अलर्टनेस बढ़ता है, ताकि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को एनकाउंटर कर पाए भली बात ही। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जब ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एचपी एक्सिस इज एसेंशियल फॉर डीलिंग विद द स्ट्रेस। बट इफ एचपी एक्सिस इज ओवर स्टिमुलेटेड, कि मान लीजिए अगर एक व्यक्ति डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है और कॉर्टिसोल हार्मोन लगातार बनता जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि उससे साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, कई फिजिकल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो ये होती है फिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रेस।
0: जी, जैसा कि आपने कहा
1: टू सम एक्सटेंट कॉर्टिसोल लेवल सही है, पर बहुत डेली बेसिस पे बन रहा है, ये इट कैन बी डेट्रीमेंटल फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ।
0: जी, वो कहते हैं ना कि अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो जीवन में कितनी भी शारीरिक परेशानियां क्यों ना है

0: आप उनसे निदान पालेंगे, आप उनसे पार हो जाएंगे।
1: बहुत सही कहा।
0: लेकिन कभी कभी मानसिक परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो जन्म देती है शारीरिक परेशानियों को। ऐसा एक सवाल हमारे पास आया पैंथर तोमर का, किशनगंज दिल्ली से। ये कहते हैं कि क्या ज्यादा तनाव से बीपी शुगर बढ़ता है, और ये कहना चाहते हैं कि छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा सोचता हूं, कोई कुछ गलत करता है मुझे बर्दाश्त नहीं होती, गुस्सा आ जाता है, और के लिए नियंत्रण कैसे किया जाए, यानी कि समस्या का निदान क्या है।
1: देखिए, जैसे मैंने अभी बता रहे थे, हम जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल है बहुत अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो हार्ट बीट भी बहुत बढ़ जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज द साइलेंट किलर।
0: जी,
1: तो अगर मैं स्ट्रेस को साइलेंट किलर कहूं तो इसमें बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कई जो है साइकोसोमेटिक इलनेस हैं जिनको जन्म देती है स्ट्रेस, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ओबेसिटी है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हों तो स्ट्रेस किसी भी प्रकार का हमको नुकसान न पहुंचाए।
0: जी, यहाँ पर एक मित्र का सवाल आया है, हालांकि सवाल का जवाब तो हम नहीं दे पाएंगे, पर ये कह सकती हूँ कि हर जगह ना समस्याएं हैं। व्यक्ति अगर कहीं भी जाता है, देखिए अभी आप थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी कि ऑफिस टाइम पर पहुंचना है, रोज ट्रैफिक मिलता है और किसी दिन बहुत ज्यादा मिल जाता है, तो वो ट्रैफिक में अपनी गाड़ी में बैठे रहना और ये सोचना कि आज बायोमेट्रिक मशीन पर समय पर मेरी अटेंडेंस लग पाएगी नहीं लग पाएगी, बॉस को क्या कहूंगी, ये जो तमाम तरीके की जद्दोजहद दिमाग में चलती है ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस देती है। व्यक्ति अगर किसी काम के लिए किसी अस्पताल जाता है, किसी दफ्तर में जाता है, वहां उसका काम नहीं बनता है तो भी स्ट्रेस है कि आज मेरा काम नहीं बना, मुझे फिर चक्कर। तो समस्याओं का तो अंत ही नहीं है, हम खुद को कैसे समझाएं, मुद्दा ये है।
1: देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि ये जो मंडन एक्टिविटी, ये सांसारिक जीवन, ये भौतिक जीवन की आपाधापी, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, ये हमेशा आपके साथ रहेगी। जिसमें आप ऑफिस भी ले सकते हैं, जिसमें जब आप कहीं दूसरे सरकारी ऑफिस जाते हैं वहां आपको प्रॉब्लम्स हो जाती है, या रोड पे जो ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हो जाती है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं दे हैव बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ, पर इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। पर दूसरी समानांतर क्या कर सकते हैं हम कि अपनी सेल्फ ग्रूमिंग, अपनी जो स्पिरिचुअल एनरिचमेंट, अपने एंटरटेनमेंट, अपने जॉय, अपनी हैप्पीनेस की तरफ ज्यादा काम करें, वो आपको अलग से कल्टीवेट करना होगा, हॉबीज कल्टीवेट करनी होगी और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देना होगा।
0: योगेश जी, कुछ लोगों के साथ तो ये भी होता है कि अगर नॉर्मली भी उनको बुखार आ जाए, सर्दी जुकाम हो जाए, तो ये सोचने लगते हैं कि उनको कुछ बड़ी बीमारी हो गई है, और इस वजह से कहीं ना कहीं वो उनकी आदत में शुमार हो जाते हैं। कुछ बातों को तो हम आदत बना लेते हैं।
1: इसे हाइपोकोंड्रिया कहते हैं कि मॉर्बिड फियर अबाउट द हेल्थ, ऐसे लोग भी मुझे मिलते हैं जो अपनी हेल्थ को लेके बहुत बहुत चेकअप भी करवाते रहते हैं और काफी पैसा खर्च करते हैं इन सब चेकअप पे, तो निकलता कुछ नहीं है।
0: जी,
1: क्योंकि इसका भी कारण वही है कि उनको साइकोसोमेटिक डिसीज हो रही होती है जो उसमें नहीं आ पाती है। इसका कारण भी, जो मूल कारण है, वो स्ट्रेस ही है।
0: जी, अब आपसे जानना चाहते हैं कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, हम बहुत सुनते हैं इसके बारे में, तो ये जानना चाहेंगे आपसे ये PTSD क्या होता है और आम जनमानस को इसको जानना कितना जरूरी है।
1: देखिए, इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स कहते हैं कभी कभी, और ये एक साइकेट्रिक कंडीशंस है, और ऐसे लोग इससे ग्रस्त होते हैं जो जीवन में बहुत ही दर्दनाक घटनाएं या प्राकृतिक आपदाओं को देखते हैं या उनका अनुभव करते हैं। ये जो है ट्रॉमेटिक जो इवेंट्स हैं, हो सकती हैं जैसे कि प्लेन क्रैश है, और भी एक्सीडेंट है, मेजर कोई एक्सीडेंट हो गया है, ये सारे, कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया है, और प्राकृतिक आपदाओं में अर्थक्वेक आ गया है, फ्लड आ गई है, अगर ये चीजें जीवन में उसने अनुभव की है। कभी कभी कई लोग सेक्सुअल असॉल्ट को जो है अनुभव करते हैं या देखते हैं, या डोमेस्टिक वायलेंस को देखते हैं या अनुभव करते हैं। ये जो घटनाओं के जो रिकरिंग थॉट्स हैं, मेमोरीज हैं, जो नाइटमेयर्स हैं, उनको हमेशा सताते रहते हैं, उनको नींद में भी डिस्टर्ब करते हैं, ये लोग सही ढंग से सो भी नहीं पाते हैं, तो इसे ही हम जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। एंड द पर्सन्स विद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मे हैव डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कई बार देखा गया है कि सुसाइडल थॉट्स और बिहेवियर भी इनका हो जाता है।
0: जी,
1: तो हमें इससे भी बच के रहने की कोशिश करनी है।
0: जी, कोशिशें करनी है, कोशिशें ही कामयाब होती हैं। बहुत सारे मुद्दों पर हमने बात की है, लेकिन जल्द ही हम बात करेंगे कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा आधारभूत स्तंभ तो जीवन ही है।
1: जी।
0: जब तक सांसें चल रही हैं, हमें इस जीवन को खूबसूरती के साथ और कहते हैं कि बहुत क्रिएटिविटी के साथ

0: तो सृजनात्मक होकर अपने जीवन को उसकी रूपरेखा खुद तैयार करनी है, तो आपसे बात जरूर करेंगे इस गाने के बाद कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाए जिससे कि एक अच्छी जिंदगी जी जा सके। तो एक दूसरे का हालचाल जरूर पूछते रहिए, क्योंकि इससे एक फायदा जरूर होता है कि हमें पता लग जाता है कि सामने वाले की स्थिति क्या है, किस पड़ाव से गुजर रहा है वो, और कभी कभी हम एक प्यारी सी स्माइल से ये पूछकर कैसे हो।
1: देखिए, स्माइल से तो स्ट्रेस अपना भी कम होता है और दूसरों का भी।
0: बिल्कुल, और कैसे हो ये पूछ लेने भर से कभी कभी आदमी अपना दिल खोल देता है और उसको लगता है मैं डिस्ट्रेस हो गया।
1: मानवीय संवेदना एक ऐसी चीज है जो आपको तनाव से बचा सकती है, तो आप जो है बहुत आत्मीयता के साथ जुड़िए लोगों से।
0: जी बिल्कुल, तो आत्मीयता के साथ जुड़िए, क्योंकि जीवन का मतलब ही है वो लोग जो आपको निरंतर मिलते हैं अलग अलग रूपों में।

0: भाई केंद्रित होना तो बहुत अच्छी बात है। जब हम केंद्रित होते हैं, फोकस्ड होते हैं, तो हम जीवन में वो प्राप्त करते हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी हम इतने केंद्रित हो जाते हैं कि एक दूसरे का हालचाल पूछना भी भूल जाते हैं, या हमें लगने लगता है जरूरत क्या है, हम अपने आप में मुकम्मल हैं, खुश हैं, सामने वाला भी ठीक ही होगा। लेकिन बात करने से कभी कभी बहुत सारे मुद्दे सुलझ जाते हैं, जैसे कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सुलझ रहे हैं। अब हम बात करने चाहते हैं आपसे, मैनेज कैसे किया जाए स्ट्रेस को। स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, हर व्यक्ति ये कहता है बहुत तनाव में हूँ, बहुत स्ट्रेस में हूँ, पर कोई ये नहीं कहता कि मैंने अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लिया। तो मुझे लगता है कि आज आप वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें ये रास्ता जरूर दिखाएंगे कि मैनेज कैसे करें स्ट्रेस।
1: देखिए, कई कॉपिंग स्किल्स हैं जो कि आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ, जो बच्चों में तो होती है। जैसे बच्चे मेरे पास आते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन की, चीजों को पोस्टपोन करना, तो आजकल ये बड़ों में भी आ गई है कि प्रोक्रास्टिनेशन से बच्चों में भी स्ट्रेस होगा पढ़ाई को लेके, और बड़ों में भी कि जो भी अपनी जो डेडलाइन है वो सही ढंग से उसे मीट नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज है, आजकल मैंने देखा है कि अपना एंगर, जो मैं कोपिंग स्किल्स में सिखाता हूँ कि कंट्रोल योर एंगर, आजकल बच्चे बड़े आर्गुमेंटेटिव होते जा रहे हैं। गुस्सा जो एग्रेशन है वो बच्चों में भी है और बड़ों में भी है। तो इसके लिए मैं कई टिप्स देता हूँ कि जैसे अगर आप बहुत गुस्सा आता है तो सबसे पहले आपको दो आर्ट सीखनी है। पहली आर्ट है कि फॉरगेटफुलनेस एंड फॉरगिवनेस।
0: जी,
1: मैंने एक मूवी देख रहा तो बहुत अच्छी लाइन उसमें बोली गई, उसमें ये कहा गया कि हम साथ इसलिए नहीं रहते कि हम भूल जाते हैं, हम साथ इसलिए रहते हैं कि हम क्षमा कर देते हैं। तो वो मैं वही कहता हूँ कि अगर क्षमा जो है सीख ली आपने, क्षमा एक ऐसा गुण है, अगर आप में विकसित हो जाता है तो आपके 90% जो प्रॉब्लम है वो आपकी चली जाएंगी। उसी में मैं सिखाता हूँ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। आजकल क्या होता है कि हम जज करते रहते हैं, अपने विकारों विकृतियों को नहीं देखते, दूसरों के विकार और विकृतियों को देखते हैं। देखिए, ग्रोथ तब होती है कि जब हम अपने में कमियां देखें और दूसरों में अच्छाइयां देखें। तो इस तरीके का जब आप नॉन जजमेंटल एटीट्यूड रखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब एम्पैथी रखेंगे, जिसे समानुभूति कहते हैं, आप हमेशा ये देखिए, अपने आप को दूसरे की कंडीशंस पे रखकर देखिए, तो आपको देखेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि आपको गुस्सा कम आएगा। तो एंगर्स पे भी, जो अपने एंगर पे भी आपको काम करना है। फिर आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कई लोग क्या होते हैं, दूसरों से सही ढंग से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए स्ट्रेस बहुत रहता है, अपने आप को वेंटिलेट नहीं कर पाते। जो भी आपकी परेशानी है वो अपने कुलीग से, फैमिली मेंबर से आप जो उसे वेंटिलेट करिए, क्योंकि संवाद, मैं ये मानता हूँ कि ऐसी शक्ति है जिससे युद्ध भी टाला जा सकता है। तो ये छोटा मोटा तनाव क्या चीज है, तो आप संवाद करिए और एक जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लोगों से बना के रखिए, कनेक्शंस रखिए, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत इजाफा मिलेगा। फिर मैं कहता हूँ कि आप ऑटो सजेशंस पे भी काम करिए। हमेशा जब भी आप अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में पाए अपने आप को, तो अपने आप से कहिए कि आई विल रिमेन माई सेरेनिटी अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, आई विल रिमेन ऑलवेज बोल्ड, आई विल नेवर गिव अप। तो इस तरीके जो ऑटो सजेशंस हैं, इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन मजबूत बनता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि उन सिचुएशंस को एक्सेप्ट करिए जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, और अच्छा एक टाइम मैनेजमेंट पे काम करिए। और जो सबसे जो अच्छी क्वालिटी है, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, कि हम क्या देखते हैं, आजकल तनाव इसलिए है कि हम अपवर्ड कंपेरिजन्स करे जा रहे हैं, नीचे डाउनवर्ड कंपेरिजन्स भी करना सीखे, और जो ईश्वर ने दिया है उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहे। ये सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड आपकी जो मानसिक स्थिति को बहुत अच्छा बनाएगा। हमेशा मैं कहता हूँ कि जो रिप्लेस दिस एटीट्यूड ऑफ व्हाट कैन आई टेक विद द गुडनेस ऑफ व्हाट कैन आई गिव, कि हमेशा जो है देने की कोशिश करिए, हमेशा लेने में लगे रहेंगे तो आपको तनाव होगा।
0: जी, तनाव होगा और तनाव और ना बढ़े, इसके लिए जरूरी है, हमारे कॉलर से हम बात कर लेते हैं। हेलो।
2: हेलो मैम।
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताओ, जल्दी से प्रश्न पूछें।
2: जी मैम, मैं अपूर्व पाठक बोल रहा हूँ।
0: जी,
2: मेरा एक प्रश्न था कि जब हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है तब कई लोग जैसे जैसे तैसे रास्ते चुन लेते हैं।
0: जी, जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बहुत स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो कभी कभी हम गलत रास्तों पर भी चलने लगते हैं, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया और हमें लग रहा है कि हमें कोई सूरत नजर नहीं आ रही, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ये जानना चाहते हैं आप।
2: जी मैम।
0: जी, जिंदगी हमें दो रास्ते दिखाती है हमेशा योगेश जी, एक सही रास्ता होता है, गलत रास्ता होता है, और जब हम स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं तो ऐसे में कई लोग पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, गलत रास्ता अपना लेते हैं, और ऐसे में उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। तो स्ट्रेस, जैसे कि आपने कहा था, गुड स्ट्रेस बैड स्ट्रेस, जो हम बात कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रेस को कितना लें। ये बताएं हमें।
1: यही हम स्ट्रेस मैनेजमेंट में समझाना चाह रहे हैं कि देखिए स्ट्रेस से क्या है, कई लोग सब्सटेंस यूज और ये सारी चीजें अल्कोहल और इन सब चीजों का भी यूज करने लगते हैं, और कई मैंने देखा है स्ट्रेस में आके जो है डोमेस्टिक वायलेंस चालू कर देते हैं, अपने फैमिली मेंबर को गाली गलौज देना पीटना चालू कर देते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हम यही कहते हैं कि सबसे पहले मैं कहता हूँ कि डीप ब्रीदिंग पे काम कीजिए, क्योंकि जब भी क्या होता है कि जब भी आप तनाव में होते हैं तो आपकी जो ब्रीदिंग होती है वो रैपिड और शैलो हो जाती है। तो डीप ब्रीदिंग पे जब हम काम करेंगे तो आपकी जो है जो ब्रीदिंग जो पैटर्न है बहुत स्लो डीप चलने लगेगा, जिससे आपकी जो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा, जिससे आपको फील गुड होगा। क्योंकि जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो आपका पूरा इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रांग हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अलोम विलोम कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं, और हम बुद्धिस्ट पैटर्न पे भी जो है अपनी, हमने ज्यादा कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ कब सांस ले रहे हैं, कब सांस छोड़ रहे हैं,

0: हेल करें, थोड़ा अपना जितनी सामर्थ्य है उसे रोकें, होल्ड करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और फिर उसे मुंह से एक्सहेल आप कर सकते हैं। इसे हम कुंभक भी कहते हैं, तो आप कुंभक भी कर सकते हैं। तो ये इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा और स्ट्रेस भी कम होगा। और इसके साथ साथ योगा पे आप ध्यान दें, क्योंकि योगा जो है हमारे अंदर जो हैप्पीनेस हार्मोन्स है, जैसे सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन्स है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन्स है, तो हमारे अंदर जो है हैप्पीनेस हार्मोन सीक्रेट होंगे तो तनाव हमारा अपने आप ही कम होता चला जाएगा।
1: जी, और हम तो हमेशा कहते हैं कि खुश रहिए, क्योंकि खुश रहना ही तो मानव प्रकृति में शामिल होना चाहिए। खुश रहेंगे तो जीवन अपने आप खुश नजर आने लगेगा।
0: पर अंदर से भी हमें बायो ऐसी बनानी है ना,
1: बिल्कुल।
0: तो जब हैप्पीनेस हार्मोन तभी अच्छे ढंग से सीक्रेट होगा तब योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे।
1: जी, ये बात तो यहाँ पर निश्चित है कि ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि स्ट्रेस क्यों हो रहा है, उससे प्रॉब्लम पता लग जाएगी। जब प्रॉब्लम पता लग जाएगी तो प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन ढूंढा जाएगा, और सोल्यूशन ढूंढा जाएगा तो वो स्ट्रेस नहीं होगा, प्रॉब्लम भी हमारी, हमें लगेगा कि वो तो कुछ थी ही नहीं। और कभी कभी जब प्रॉब्लम सॉल्व ना हो पाए फिर भी स्ट्रेस हो रहा है, तो जैसा कि आपने बताया, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, प्रॉब्लम ही नहीं
0: होती। जब भी नहीं होता तो एक अच्छे काउंसलर जो है मनोवैज्ञानिक की, उनके पास प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, आपको जरूर जो है हेल्प मिलेगी।
1: जी, निश्चित ही आपका तहे दिल से धन्यवाद। और कुछ हमारे श्रोताओं तक आप पहुंचाना चाहते हैं तो बिल्कुल।
0: देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर सकते, पर अपने शारीरिक, मानसिक और जो इमोशनल हेल्थ को हम स्टेबल और फिट रख के जो है इसको सही ढंग से मैनेज कर सकते हैं। और इस भौतिकवादी जो समाज में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें जो स्पिरिचुअल क्वालिटीज हैं, अपने वर्चुज हैं, वैल्यूज हैं, उनको भी इंटैक्ट रखना है और अपने मानसिक स्वास्थ्य को सही रखना है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब मस्तिष्क जब जो है कमजोर हो जाता है तो हमारे लिए जो परिस्थितियां हैं वो समस्याएं बन जाती हैं। अगर मस्तिष्क हमारा स्थिर रहता है तो हमारे लिए जो समस्याएं, जो परिस्थितियां हैं वो चुनौतियां बन जाती हैं। पर जब हमारा मस्तिष्क बहुत स्ट्रांग होगा तो हमारी जो परिस्थितियां हैं वो हमारे लिए अवसर बन जाएंगी।
1: जी, योगेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और हमारे श्रोताओं तक जानकारियां पहुंचाने के लिए।

0: रेनबो हेल्पलाइन का आज का कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया गया। इसी के साथ आज का रेनबो हेल्पलाइन यहीं समाप्त होता है।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
5: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर
7: प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
2: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
2: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
3: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की घोषणा की। रेपो दर 5.25% पर बरकरार। वर्ष 2026-27 के लिए GDP का अनुमान 6.7% और महंगाई दर घटी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। झारखंड में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सली गिरफ्तार। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। नीट UG काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को दिखावटी करार दिया है। भारत ने कहा है कि इससे वास्तविकता छिप नहीं सकती। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उन दावों का खंडन किया है जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार कार्ड धारक विद्यार्थियों को मुफ्त ई साइकिल देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान 16 अगस्त से आम जनता के लिए खुलेगा। आगंतुक 15 सितंबर तक भ्रमण कर सकेंगे। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेताओं को सम्मानित किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी खिलाड़ियों और भारतीय मुक्केबाजी संघ की सराहना की है और खेलों में भारत के कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके अलावा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में PV सिंधु को 9वीं वरीयता मिली है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने भी 5वीं वरीयता हासिल की है। और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ये थे अब तक के इस घंटे के मुख्य समाचार।

102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है स्वाति और प्रोग्राम जो है वो है हम कदम। हम कदम में जहां हम आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं, आपकी ज़िंदगी की उस कंपेनियनशिप के बारे में बात करते हैं जो हर रिश्ते से ऊपर होती है, सभी से बढ़कर होती है। और ये आप सुनते हैं हर बुधवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। मैं हूँ स्वाति आप सभी के साथ। और गाना भी आप सुन रहे थे ना, फ्रॉम द मूवी वेकअप सेट, कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज़ में मैंने प्ले किया आप सभी के लिए। कितना ठहराव है ना इस गाने में। हालांकि न्यू एज सॉन्ग्स में ये चीज़ें हमें कम सुनने को मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो ठहराव होता है ना, ये कहीं ना कहीं आपको जो है बांध लेता है। कितने मज़े की बात है ना। इसी स्टेबिलिटी को तो ढूंढते हैं ना हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में, अपने रिश्तों में और अपने जीवन साथी में, जो आपको वो एक खूबसूरत ठहराव जो होता है ना उसका अनुभव कराएं, जहाँ पर आपको किसी चीज़ की चिंता ना हो बल्कि एक सुकून जो है ना वो महसूस होते रहना चाहिए। हालांकि शुरुआती रिश्तों में शब्दों और वादों की ज़रूरत होती है, लेकिन समय के साथ जो रिश्ता गहरा होता है ना, वहाँ पे बात जो है ना, वहाँ पे शब्द आके थम जाते हैं, वहाँ पे शब्दों की ज़रूरत जो है ना ख़त्म सी हो जाती है। और जीवन के एक पड़ाव पर आकर सबसे खूबसूरत पल इनफैक्ट वही होते हैं जहाँ लंबी खामोशी भी बोझ नहीं बनती है, जब आप किसी से बिना कुछ कहे सिर्फ उसकी मौजूदगी में पूरी तरह से कम्फर्टेबल महसूस करते हैं। जी हाँ, जब ऐसा होता है, इसी ठहराव की मैं बात कर रही हूँ जो कि आपके रिश्ते में जिसकी तलाश हमें होती है। और देखा जाए तो चाहे आप अपनी ज़िंदगी के इस खूबसूरत रिश्ते को लेके कोई भी फैंटेसी बुने, जो ये वाले मोमेंट्स होते हैं ना, द कंफर्टेबल साइलेंस, ये सबसे खूबसूरत होते हैं। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम कदम, मेरे यानी स्वाति के साथ। मैं प्ले करने जा रही हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत आवाज़ साधना सरगम और उदित नारायण की। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी
1: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
5: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
4: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
5: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
6: मंगल भवन मंगल हारी।
7: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
8: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।

0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक आकाशवाणी रेनबो।
1: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
5: पता का चाय, गजब का स्वाद।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
9: आकाशवाणी रेनबो।
10: म्यूजिकली यॉर्स 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मैं हूं स्वाति, आप सभी के साथ प्रोग्राम हम कदम चल रहा है सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पे। और भाई, जब हम बात करते हैं किसी भी रिश्ते के, तो हम ये तो जानते ही हैं कि हर रिश्ते में ना थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। हर रिश्ते को बना के रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ नए तरीके लगाने पड़ते हैं, आपको उसमें नयापन भी लाना पड़ता है, साथ ही साथ उसको लगातार बनाए रखने के लिए, जिसको हम कहते हैं मेंटेनेंस करना, जी हाँ मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है। और आजकल वैसे ही जब जिंदगी इतनी तेज़ हो गई है।

है और हर चीज़ जो है ना कुछ ऐसा लगता है कि बस कुछ काबू में ना ज़िंदगी की चीज़ें हैं ही नहीं हमारे, बहुत सारी चीज़ें अक्सर हम लोग ऐसा फील करते हैं कि सर्कमस्टांसेस हैं, लाइफ है, ये सब हाथों से बिखरी जा रही है। तो ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रेस बस्टर होता है, जो आपके शॉकर्स जो होते हैं ना ज़िंदगी के, वो होते हैं आपकी ज़िंदगी के करीबी रिश्ते, उन्हें बना के रखना ज़रूरी होता है, उनको मेनटेन करके रखना ज़रूरी होता है। अपने जो दोस्त होते हैं ना, जिनके साथ दोस्ती हमेशा एक सी रहती है, उनसे भी हमें लगातार जो है ना बात करते रहना पड़ता है, पूछते रहना पड़ता है ना क्या हो रहा है, कैसे हो। उसी तरह से जब ज़िंदगी के सबसे कीमती, सबसे खूबसूरत रिश्ते की बात हो, तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए भी मेहनत जो है ना वो कुछ कम नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि शादी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक बार हो जाए तो उसके बाद खुद ब खुद चलती रहे। ये इनफैक्ट एक, जिसे हम कहते हैं ना कि आज की डेट में इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन जो आपको रोज़ सुबह उठ के लेना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप ये सोचते हैं कि आज का दिन आप क्या करेंगे, उसमें सार्थकता कैसे लाएंगे, ऐसे ही इस रिश्ते के लिए भी आपको हर रोज़ सुबह उठ के इस चीज़ को सोचना होता है, इस चीज़ के लिए तरफ मेहनत करते रहना होता है कि ये रिश्ता जो है ना इसकी नींव कभी भी कमजोर ना पड़े। कभी गलत फहमियां हो भी तो भी जो है अगर नींव मजबूत होती है ना तो वो गलत फहमियां खुद ब खुद कहीं घुल जाती हैं और खत्म हो जाती हैं। और इन चीजों को लगातार निभाते रहने के लिए आपको करनी पड़ती है जो मेहनत, वो करना बिल्कुल हम लोग जो है ना देखा जाए तो इतनी भी कोई बहुत ज्यादा उसमें कोशिश नहीं करनी पड़ती है। बस हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन का आपका लक्ष्य जो है ना वो क्या है, इस रिश्ते को लेकर आपकी सोच क्या है, और अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता खूबसूरत बना रहे तो ऑब्वियसली आपके सारे प्रयास जो होते हैं ना अपने आप ऑटोमेटिकली उस दिशा में मुड़ जाते हैं। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर फिलहाल आज का ये जो प्रोग्राम है हम कदम, इसको मुझे यहीं पर समेटना होगा। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो, थोड़ी देर में आपके लिए लेकर आएंगे खास प्रस्तुति। फिलहाल मैं आप सभी को छोड़े जा रही हूँ इस बहुत ही खूबसूरत से गाने के साथ।

0: दंग। CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। उमंग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर विचार भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरेलकर जी ने। लिखते हैं,
2: बदलना है अगर कल को तो आज को बदलना सीखो, किस्मत की राह न देखो, खुद आगे बढ़ना सीखो।
3: बहुत सुंदर और प्रेरणादायी विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ श्रोताओ, परिवर्तन आज को बदलने से ही आता है, क्योंकि कल कभी नहीं आता
2: जी।
3: आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी का।
2: नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
3: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। स्वामी विवेकानंद जी पर केंद्रित कार्यक्रम उमंग सुना एवं पसंद आया, कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है।
2: आपने आगे लिखा है, कार्यक्रम इस तरह से प्रस्तुत किया गया जैसे स्वामी विवेकानंद जी साक्षात हमारी आंखों के सामने हैं एवं मन लगाकर हम इनका प्रवचन सुन रहे हैं। शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: और राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: गुजरात गांधी ग्राउंड से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
3: तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज की चर्चा में।
2: श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस दोस्त की जो हर समय हमारे साथ रहता है। जरा सोचिए कौन है वो जो इस आधुनिक युग में हमेशा लगभग हम सबके साथ रहता है, कोई रहे न रहे और उसके बिना अब रहा ही नहीं जाता।
3: विमलेश जी, मुझे लगता है आप बात कर रही हैं मोबाइल फोन की।
2: बिल्कुल सही कहा जी जी। अब तो लोग क्या, विद्यार्थी भी मोबाइल के बिना ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे मछली पानी के बिना।
3: जी, बहुत हद तक आपका कहना बिल्कुल ठीक है। विमलेश जी, सच्चाई तो ये है कि कुछ तो रात को भी मोबाइल देखते देखते सोते हैं और सुबह भी मोबाइल देख कर ही उठते हैं।
2: लेकिन अजीत जी, सच्चाई तो ये भी है कि अब मोबाइल के बिना काम भी नहीं चल सकता।
3: जी, वो तो है,
2: हम किसी न किसी प्रकार से उस पर आश्रित हैं।
3: जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हमें एक बात अच्छी तरह से समझना होगा कि मोबाइल तो मात्र एक साधन है
2: जी,
3: महत्वपूर्ण ये है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। इसका सही उपयोग हमें आगे ले जाएगा और गलत उपयोग बिल्कुल पीछे
2: जी।
3: लेकिन

0: प्रश्न है कि मोबाइल का सही उपयोग करें तो कैसे करें?
1: जी अजीत जी, चलिए मान लीजिए परीक्षा 1 महीने बाद है। विद्यार्थी मोबाइल उठाता है पढ़ने के लिए, वो पढ़ाई के लिए गंभीर भी है। मोबाइल में परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन कक्षा चल रही है कि तभी एक नोटिफिकेशन आया, नई रील देखिए। अब बताइए अजीत जी, क्या होगा?
0: फिर एक और रील या स्टोरी और आ जाएगी।
1: बिल्कुल, या सोशल मीडिया पर और कई संदेश आ जाएंगे। पता चला कि उसकी फोटो को बहुत से लाइक्स मिल गए हैं।
0: और एक मैसेज ये भी आ गया कि आपकी फोटो तो साहब बिल्कुल कमाल कर रही है, कुछ और फोटो डालिए। अब क्या होगा हम समझ सकते हैं।
1: देखते देखते 1 घंटा क्या कई घंटे गायब हो गए
0: और शायद पूरा दिन पानी में गया। तो अब सवाल ये है विमलेश जी कि क्या किया जाए।
1: देखिए, यही वो समय है जब पढ़ने वाले को संयम और दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है। एक नियम बनाना होगा, पढ़ाई के समय सोशल मीडिया बंद
0: और नोटिफिकेशन भी बंद।
1: बिल्कुल, नहीं तो हर 5 मिनट में मोबाइल बोलेगा,
0: क्या बोलेगा,
1: मुझे भी देख लो।
0: लेकिन सवाल ये है कि यदि मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ तो विमलेश जी इंटरनेट तो ऑन है, ऐसे में सोशल मीडिया भी तो चलता रहेगा।
1: नहीं अजीत जी, आप मोबाइल छोड़े बिना इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं, इसका भी उपाय है।
0: वो कैसे?
1: हर मोबाइल की सेटिंग में DND या डू नॉट डिस्टर्ब या फोकस मोड का विकल्प होता है, इस विकल्प को चालू कर दें। वहां आप अपनी इच्छा से फोन या सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन खोल या बंद कर सकते हैं। इससे इंटरनेट चालू रहेगा और आप पढ़ाई बिना बाधा के कर पाएंगे।
0: जी मित्रों, आप अलग से भी सोशल मीडिया के एप्स को उनकी सेटिंग में जाकर म्यूट कर सकते हैं।
1: जी,
0: आप एक काम और कर सकते हैं कि सारे एप्स के आइकन मुख्य स्क्रीन से हटाकर दूसरी स्क्रीन पर डाल दें, ताकि यदि संदेश आए भी तो आपको दिखाई ना पड़े।
1: तो श्रोता मित्रों, हम कहना चाहेंगे कि मोबाइल से मनोरंजन जरूर कीजिए, लेकिन इससे अधिक मोबाइल को सीखने का साथी बनाइए। और याद रखिए,
0: मोबाइल पढ़ाई का साधन बने, समय बर्बाद करने का नहीं।
1: पढ़ते समय, परिवार के साथ समय बिताते समय नोटिफिकेशन अवश्य बंद रखें।
0: रोज मोबाइल के उपयोग का समय तय करें और रात में देर तक मोबाइल न चलाएं, और इंटरनेट का सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग करें।
1: मत भूलिए, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं।
0: क्या बात है, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं। जिसने मोबाइल को नियंत्रित कर लिया,
1: समझिए उसने अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर लिया।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, मिलेंगे फिर एक
1: नई जानकारी के साथ।
0: श्रोताओं, आज हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपको एक काम करना है।
1: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर 1 या 2 पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको करना क्या है।
0: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर 1 या 2 पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। और भेज दीजिए अपना स्लोगन हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: यूट्यूब में जाइए, टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के कई विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोता, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है परीक्षा।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कहानी पर आधारित है, जिसे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। कहानी के द्वारा ईमानदारी, परिश्रम, कर्तव्य निर्वहन और कार्यनिष्ठा के मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है।
2: परीक्षा। बात उन दिनों की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। उन दिनों देश में बहुत सारी रियासतें हुआ करती थीं। रियासतें यानी छोटे छोटे राज्य जो अंग्रेजों की अधीनता तो मानते थे लेकिन स्वतंत्र थे। ऐसी ही एक रियासत थी देवगढ़। राजस्थान की देवगढ़ रियासत बहुत ही मनोरम स्थान में बसी हुई थी। रियासत की जनता बहुत प्रसन्न थी। रियासत की खुशहाली के पीछे सबसे बड़ा योगदान था वहां के दीवान यानी मुख्य प्रशासक

0: सुजान सिंह का। वे दयालु, नीति कुशल और बहुत अच्छे प्रशासक थे, लेकिन अब वे बूढ़े हो चले थे। एक दिन की बात है।
1: महाराज की जय हो। दीवान श्रीमत सरदार सुजान सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं।
2: मिलना चाहते हैं इस समय? उन्हें आदर सहित कक्ष में ले आओ।
1: जी महाराज।
3: महाराज
2: आइए आइए दीवान साहब, बैठिए बैठिए। जी कहिए।
3: राजन, पिछले 40 वर्षों से आपके दास ने इस रियासत की सेवा की है। अब विचारा है कि इस सेवा से अवकाश ग्रहण करूं।
2: दीवान साहब।
3: महाराज,
2: हम आपका अनुरोध स्वीकार तब करेंगे जब आप हमारी एक शर्त मानेंगे।
3: आज्ञा दीजिए महाराज। कैसी शर्त?
2: शर्त यह है कि अवकाश ग्रहण करने से पहले आपको राज्य के लिए एक ऐसा दीवान ढूंढ कर देना होगा जो आपकी तरह सुयोग्य हो।
3: जी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा।
0: दूसरे ही दिन देश के सभी प्रसिद्ध समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर विज्ञापन छपा कि देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। इस विज्ञापन का वही असर हुआ जो जंगल में आग का होता है। सैकड़ों लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए देश के अलग अलग प्रांतों से देवगढ़ चल पड़े। आइए अब आपका परिचय कराएं कुछ उम्मीदवारों से। आप हैं श्रीमान अ। आप सोकर उठते थे सवेरे 10 बजे, लेकिन जब से यहाँ आए हैं बेचारे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और बगीचे में टहलते हुए सूर्य देवता के दर्शन करते हैं। और आप हैं श्रीमान ब, स और ज। इनकी तो पूछिए मत। अपने घर में इन्होंने नौकरों की नाक में दम कर रखा था। ये वहाँ अशिष्टता के जीते जागते उदाहरण थे, लेकिन यहाँ तो ये बेचारे नौकरों को भी संबोधित करते समय आप श्रीमन, महामना, मान्यवर और जनाब जैसे संबोधनों और उपाधियों का उपयोग किए बिना बात ही नहीं करते। और इनसे मिलिए। आप हैं श्रीमान क। आप फैशन के मारे हैं, लेकिन यहाँ सादगी की प्रतिमूर्ति बने घूम रहे हैं। अक्सर राजमहल के पुस्तकालय में आप बड़े बड़े ग्रंथों को उलटते पलटते देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर पाखंडोत्सव चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी अयोग्य हैं। उन्हें क्या पता था कि कुशल और अनुभवी दीवान सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही हैं और अनुभवी कान सब कुछ सुन रहे हैं। समय समय पर उम्मीदवारों को समूह वाद विवाद के लिए भी बुलाया जाता था। एक दिन की बात है, सभी उम्मीदवारों को लगा कि विद्वता तो दिखा ही रहे हैं, क्यों ना शारीरिक क्षमता भी दिखाई जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि आज हॉकी खेली जाएगी।
4: चल, चल, चल, चल।
5: गेंद रोको,
0: सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें कहीं दूर से इस मैच को भी देख रही थीं। खेल खत्म हुआ, सभी खिलाड़ी थके हुए थे, शाम होने वाली थी। अब सबने फैसला किया कि राजमहल लौटा जाए। मैदान से थोड़ी ही दूरी पर एक नाला था जिस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना होता था। खिलाड़ी लोग उसी नाले के पास बैठे सुस्ता रहे थे।
6: आज खेल में बड़ा मजा,
7: बहुत मजा आ गया। गोल मारा था भाई, मजा आ गया उसमें तो।
8: हां, गोल हो गया।

0: दिल खुश हो
1: गया। कि तभी एक किसान अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। नाले में कीचड़ था और चढ़ाई ऊंची थी। उसकी गाड़ी वहीं फंस गई।
2: अरे कहां फंस गई?
3: ए, इधर क्या देख रहे हो?
4: साहब, गाड़ी फंस गई है। अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो।
2: अच्छा, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो बड़े आए।
3: चलो साथियों, देर हो रही है। दीवान साहब समय का भी बहुत ध्यान रखते हैं।
5: चलो, चलो, चलो, चलो,
4: अरे,
5: चलो भाई,
4: लेकिन
2: अरे छोड़ो इन्हें, चलो।
1: लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जो वहीं रुक गया। आज हॉकी के खेल में उसे चोट भी लग गई थी और वह लंगड़ा रहा था। वह दृढ़ निश्चय के साथ किसान की ओर बढ़ा और बोला,
6: बाबा तुम गाड़ी में बैठकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ। बस थोड़ी देर में गाड़ी बाहर निकल जाएगी।
4: हाँ, ठीक है,
2: कोशिश करते
4: हैं।
1: और हुआ भी यही। युवक ने पूरा जोर लगाया, किसान ने बैलों को साधा और थोड़ी ही देर में गाड़ी नाले के पार थी।
4: हाँ बेटा, अच्छा किया तुमने।
6: जी बाबा।
4: हुजूर, मुझे रात भर यहीं रुकना पड़ता।
6: तो क्या इनाम देते हो?
4: नारायण ने चाहा तो दीवानी आपको ही मिलेगी।
1: और आखिर वो दिन आ ही गया। सबके दिल जोर से धड़क रहे थे। पता नहीं किसके भाग्य में राजयोग है। राज दरबार सजाया गया।
7: भाई पूरा एक महीना हो गया है। आज फैसला हो।
8: तुम्हें क्या लगता है
7: महाराज?
8: अरे अरे, सुजान सिंह जी भी आ गए।
1: महाराज सिंहासन पर आसीन हुए। रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा,
4: मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा सुयोग्य पुरुष मिल गया है। मैं पंडित जानकी नाथ साह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। जब आप हॉकी खेल रहे थे, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो व्यक्ति जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसमें धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता सभी गुण हैं। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा।
7: सही बात है।
4: उसका संकल्प दृढ़ है। वो स्वयं चाहे धोखा खा जाए,
7: बिल्कुल सही कहा,
4: लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य कर्म से कभी भी पीछे न हटेगा।
1: सभी सरदार सुजान सिंह के चुनाव की प्रशंसा कर रहे थे।
7: अच्छा इंसान हमेशा सही काम करेगा।
4: बिल्कुल।
1: और देवगढ़ रियासत के नए दीवान पंडित जानकी नाथ साह को बधाई दे रहे थे।
5: बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो पंडित जी। बहुत खूब चुनाव किया।
3: महाराज की
9: जय हो।
3: महाराज की
9: जय हो।
3: महाराज की
9: जय हो।
3: महाराज की
9: जय हो।
1: सबकी समझ में आ गया था कि धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता जैसे सद्गुण ही व्यक्ति के सच्चे आभूषण होते हैं।
10: अभी आपने सुना कार्यक्रम परीक्षा, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मित्र की सहायता।
11: सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो समय पर काम आए और हर परिस्थिति में वो आपके साथ खड़ा रहे। Thank you.

0: एक दिन कौवे को भूख लगी। वो खाने की खोज में निकला। उसने उड़ते हुए देखा कि एक शिकारी आ रहा है। शिकारी के कंधे पर जाल रखा हुआ था। वो जंगल की ओर ही आ रहा था। कौवे ने शिकारी को देखकर सोचा,
1: ये शिकारी अवश्य कुछ पक्षियों को पकड़कर ले जाएगा। शिकारी से पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए।
0: उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, किंतु फिर भी पक्षियों को बचाने के लिए वो वापस लौट आया। जंगल में पहुंचते ही कौवे ने काव काव कर सब पक्षियों को इकट्ठा किया और बोला,
1: सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो।
0: सब पक्षियों ने कौवे की बात मान ली। अब कौवा बहुत थक गया था। उसे भूख भी लग रही थी। वो खाने की खोज में जाने लगा। तभी उसने कुछ कबूतरों को देखा। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
1: भाइयों, आप कहां से आए हैं? मैंने आपको पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा।
2: मैं कबूतरों का मुखिया हूं। हम सब पास के जंगल से आए हैं और दाना चुगने जा रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा, लेकिन सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो, सुनो भाइयों, सुनो।
2: कौवे भाई, हम उसके जाल में नहीं फंस सकते। हम उसके जाल पर बैठेंगे ही नहीं।
1: मुखिया जी, वो शिकारी बहुत चालाक है। वो चावल के दाने डालकर जाल लगाएगा।
2: कौवे भाई, हम सब तुम्हारी बात समझ गए हैं। तुम हमारी चिंता न करो।
0: मुखिया कबूतर की बात सुनकर कौवे की चिंता दूर हुई और अब वो खाने की खोज में उड़ गया।

0: थोड़ी देर में जब वो वापस आया तो उसने देखा जंगल में एक स्थान पर सारे कबूतर जाल में फंसे हुए हैं। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
1: अरे मैं तो तुम सबको बता गया था, फिर भी तुम सब इस जाल में कैसे फंस गए?
2: एक जगह चावल के दाने बिखरे देखकर हमें लोभ हुआ। हम चावल खाने नीचे उतरे तो इस जाल में फंस गए।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा देखो, शिकारी आ ही रहा होगा, लेकिन तुम सब साहस से काम लो। साहस और एकता से बड़ी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। तुम सब मिलकर इस जाल को लेकर उड़ सकते हो।
2: हाँ ठीक कहते हो कौवे भाई, ठीक कहते हो, ऐसा ही करेंगे।
0: कबूतरों ने ऐसा ही किया, सब मिलकर उस जाल को लेकर उड़ चले। कौवा भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगा। कौवा चूहे के पास पहुंचा और बोला,
1: चूहे भाई, चूहे भाई,
3: क्या
1: तुम्हारा मित्र कबूतर एक शिकारी के जाल में फंस गया है?
3: कहाँ है मेरा मित्र? मुझे अभी उसके पास ले चलो।
1: चूहे भाई, वो देखो, वहाँ सामने वो एक जाल में फंसा हुआ है। उसके साथ ही कबूतर भी जाल में फंसे हुए हैं।
3: तो चलो कौवे भाई, उनके पास चलें। मैं अभी उनके जाल को काट देता हूँ।
1: हाँ हाँ, चलो
3: चलो चलो कौवे भाई,
1: चलो।
0: चूहा और कौवा जल्दी से उस जाल के पास पहुंचे।
2: चूहे भाई, जल्दी से इस जाल को काट कर हमें मुक्त करो। शिकारी हमें ढूंढता हुआ यहाँ आ सकता है।
3: तुम चिंता मत करो मित्र, मैं अभी जाल काट कर तुम्हें मुक्त कर देता हूँ।
2: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी।
0: थोड़ी देर में चूहे ने जाल काट दिया, सब कबूतर मुक्त हो गए। मुखिया ने चूहे और कौवे का धन्यवाद किया। फिर सब कबूतर उड़कर अपने जंगल की ओर चल दिए। चूहा अपने बिल में चला गया, कौवा भी अपने पेड़ की ओर उड़ गया। वो आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसने देखा था कि मिलजुल कर काम करने में कितनी शक्ति है।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम मित्र की सहायता, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार,
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: माँ बनने का एहसास जितना अनमोल है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। एक स्वस्थ बच्चे का पालन पोषण और इस खूबसूरत सफर की शुरुआत होती है माँ के दूध से। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और मैं हूँ आपकी दोस्त और मेज़बान शिल्पा गुप्ता। हर वर्ष 1 से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाए जाने वाला ये सप्ताह हमें याद दिलाता है कि स्तनपान केवल शिशु का पहला आहार नहीं बल्कि उसके स्वस्थ जीवन और बीमारियों से सुरक्षित रखने की पहली शुरुआत है। आज रेडियो डॉक्टर में हमारा विषय है मातृ और शिशु देखभाल यानी मदर एंड चाइल्ड केयर। गर्भ अवस्था से लेकर जन्म के बाद तक माँ और बच्चे की सेहत, स्तनपान, पोषण और जानेंगे उन जरूरी बातों के बारे में जिन्हें हर परिवार को जानना चाहिए। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर सुजाता दास, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।
1: और हमारे साथ हैं डॉक्टर ललन के भारती, HOD पीडियाट्रिक, JPC हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, प्रेसिडेंट NNF इंडिया। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो डॉक्टर में।
3: शिल्पा जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: दोस्तों हमारे कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम है जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारा फोन नंबर है 2342-1080, 2342-1082। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम

0: को प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात करेंगे मदर एंड चाइल्ड केयर पर। तो सबसे पहले डॉक्टर साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे कि कोई कपल अगर बेबी प्लान कर रहा है तो किन बातों का ध्यान रखे जिससे गर्भधारण सही से हो और बच्चा स्वस्थ हो।
1: जी शिल्पा जी, आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा है। इसमें कई बातें हैं जो एक कपल को ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ अपनी कुछ जांचें करवा लें जिससे आगे गर्भधारण में भी आसानी होती है और डॉक्टर्स को भी उसे फॉलो करने में बहुत आसान रहता है आगे जो भी है। तो कुछ खून की जांचें हैं, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट की जांच है या ब्लड ग्रुप की जांच है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में आरएच नेगेटिव ग्रुपिंग है तो डॉक्टर्स को इस बात का खास ख्याल रखना होता है। कुछ टीके भी लगते हैं। इसके अलावा HIV की जाँच है, दो हस्बैंड वाइफ दोनों को करवानी चाहिए। HPS एंटीजन की जाँच है, HCV की जांच है और एक थैलेसीमिया की जांच है जो बहुत ज़रूरी है, जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को होनी चाहिए ताकि ये जो बीमारी है, जो अनुवांशिक बीमारी है, वो बच्चे में आगे ना पहुंचे। तो इस तरह की बहुत सी जांचें हैं। इसके अलावा अगर मरीज कुछ और जांच दवाइयां ले रहा है पहले से, हृदय रोग की दवाई है या किडनी डिजीज़ की दवाई है या थायराइड की दवाई है या खून की कमी है, उसके लिए वो आयरन कैल्शियम की गोलियां ले रहे हैं, तो ये सारी जानकारी डॉक्टर्स को देना रजिस्ट्रेशन के टाइम पर बहुत ज़रूरी है।
0: डॉक्टर भारती, आपसे जानना चाहेंगे अगर कोई बच्चा न्यूबॉर्न बच्चा है तो उसके लिए फर्स्ट गोल्डन आवर किसे कहते हैं और वो क्यों इम्पोर्टेंट है?
2: गोल्डन आवर यानी जन्म के बाद का पहला घंटा, जो बच्चे के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस दौरान सही देखभाल को से नवजात की जान बचाई जा सकती है और आगे का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। अगर हम इस समय सही से देखभाल करेंगे तो लॉन्ग टर्म आउटकम जो उसका बहुत ही अच्छा होगा। इस एक घंटे में कुछ बहुत जरूरी कदम होते हैं, जैसे कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को अच्छी तरह सुखाना और गर्म रखना। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चे को हम गर्म रखें, क्योंकि बच्चा जो माँ के पेट के अंदर रहता है तो वहाँ टेम्परेचर माँ से मिलता है और अचानक बच्चे बाहर आ जाते हैं तो वहाँ हमारा काम होता है कि उसको हम गर्म रखें, गर्माहट दे, टेम्परेचर मेंटेन करें। यदि ज़रूरत हो तो उस बच्चे को हमें रिससिटेशन भी देना पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चा सांस नहीं ले रहा है अपने से तो तुरंत हमें सांस देना है। वहाँ हम गोल्डन मिनट की बात करते हैं। अगर बच्चा ऐसा होता है कि 10 में अगर 100 में से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सांस नहीं लेता है अपने, उस बच्चे को हमें सांस देना होता है और ये सांस फर्स्ट मिनट में देना पड़ता है। इसलिए इसे हम फर्स्ट गोल्डन मिनट बोलते हैं। जैसा कि आपने अभी कहा कि फर्स्ट गोल्डन आवर, उस तरह से फर्स्ट गोल्डन मिनट होता है जिसमें कि बच्चे को हमें सांस देना पड़ता है और इसको हम न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम कहते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात जो फर्स्ट गोल्डन आवर में होता है वो होता है कि डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, जो नाल होता है उसको हमें तुरंत नहीं काटना चाहिए, उसे एटलीस्ट 60 सेकेंड्स के बाद ही काटना चाहिए अगर बच्चा रो रहा है, सांस ले रहा है। इससे क्या होगा कि माँ के शरीर का जो ब्लड है वो बच्चे में जाएगा और बाद में बच्चे में एनीमिया का चांस कम होगा। तीसरी बातें जो है कि माँ को अपने बच्चे को छाती से लगा के रखना चाहिए, जिससे दो फायदे हैं। एक तो माँ से गर्माहट मिलेगी बच्चे को, दूसरा ये है कि बच्चा से एक बॉन्डिंग बनेगा और उससे क्या होगा कि मिल्क प्रोडक्शन में और सिक्रीशन में हेल्प मिलता है। तो ये भी हमें विद इन 1 आवर बच्चे को मदर्स मिल्क स्टार्ट कर देना चाहिए। तीसरी बात ये है कि जो पहले फर्स्ट फ्यू डेज और फर्स्ट फ्यू आवर्स जो मिल्क सिक्रीट होता है उसको हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं। वो बहुत ही उपयोगी होता है, उसे फेंकना नहीं चाहिए उसे, और उसको देना चाहिए। उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो कि इन्फेक्शन से बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। बच्चे को बिना ज़रूरत माँ से अलग नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो तो उस समय हमें डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। हो सकता है इस बच्चे को हमें नर्सरी के अंदर एडमिट भी करना पड़ सकता है। सो गोल्डन आवर में सही देखभाल जीवन भर बेहतर स्वास्थ्य की नींव रखती है। इसलिए

0: गोल्डन आवर के बारे में हमें जानना चाहिए, हमारे दर्शक को भी हमारे श्रोता को भी जानना चाहिए, और ख़ास करके हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है, जो डिलीवरी अटेंड करते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन और पीडियाट्रिशियन, उनको जानना चाहिए। इसी समय हमें ये भी पता करना होता है कि कौन सा बच्चा को एडमिट करना है नर्सरी में, कौन से बच्चे को सांस ऊपर से देने की ज़रूरत पड़ सकती है, कौन से बच्चे को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। और एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, कि इस गोल्डन आवर में बच्चे को माँ का दूध शुरू कर देना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि अगर बच्चे को हम स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखते हैं माँ के साथ, और इस गोल्डन आवर में ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देते हैं, तो मिल्क का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। दूसरी बात यह है कि जो फेलियर रेट होता है ब्रेस्ट फीडिंग का, वो भी कम हो जाता है। देखा गया है, अभी आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वो 90% से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी भी अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि 1 घंटा के अंदर होना चाहिए, वो उतना नहीं है, वो 50% 55% के आसपास है। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि फर्स्ट गोल्डन मिनट में बच्चे को गर्माहट, दूसरी बात माँ के कांटेक्ट में रखना चाहिए, कॉर्ड को डिले काटना चाहिए, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको डिले करना चाहिए काटने के लिए, और ब्रेस्ट फीडिंग एज अर्ली पॉसिबल शुरू करना चाहिए।
1: जैसा कि आपने कहा कि माँ और बच्चे की जादू की झप्पी वो गोल्डन आर गोल्डन मोमेंट्स में तब्दील हो जाता है। आज वर्ल्ड ये जो हम मना रहे हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक में हम बात कर रहे हैं आज मदर एंड चाइल्ड केयर पर। इस पर हम बातें और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: मेरी दुनिया तू ही रे। अगर किसी परिवार में कोई बच्चा आता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो वाकई में सारी दुनिया उस तक ही सीमित रह जाती है। तो डॉक्टर सुजाता, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई पहली बार माँ बनने वाली जो महिलाएं होती हैं, तो उनको किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए?
1: जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो माताएं गर्भ धारण कर रही हैं, उनके लिए कुछ बातें जो हैं, चार पांच मुख्य रूप से जो बातें हैं वो मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी। पहली बात, अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हॉस्पिटल में अपना एंटीनेटल कार्ड बनवाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके साथ ही हिस्ट्री टेकिंग होती है, एग्जामिनेशन होता है जो पेशेंट का, उसी कार्ड पर लिखा जाता है। ब्लड प्रेशर की जाँच है, पल्स की जाँच है, हाइट है, वेट है, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कार्ड पर मैंशन की जाती है। तो रजिस्ट्रेशन जो है सभी महिलाओं का बहुत ज़रूरी है, और भारत सरकार का काफ़ी प्रयास रहा है। और अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में जो प्रतिशत है वो 25 पॉइंट से भी ऊपर उठ के आया है। तो रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही जो कुछ खून की जांचें हैं, कुछ पेशाब की जांचें हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, चाहे CBC की जाँच हो, या ब्लड ग्रुप की जाँच हो, चाहे HBS एंटीजन की जाँच हो, या VDRL की जाँच हो, या HIV टेस्टिंग की जाँच हो हस्बैंड या वाइफ की, या शुगर की जाँच हो, ताकि प्रेगनेंसी में अधिक शुगर ना बढ़े, जिससे गर्भवती महिलाओं को भी परेशानी होती है और शिशुओं को भी परेशानी होती है। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर की जांच बहुत ज़रूरी है, HPLC यानी कि थैलेसीमिया की जांच बहुत ज़रूरी है। कुछ अल्ट्रासाउंड्स होते हैं जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में करवाते हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी करवाते हैं। तो कब जांच करवानी है अल्ट्रासाउंड की, वो डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। ये चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं कि कब अल्ट्रासाउंड की जांच कराएं, कब खून की जांच कराएं, पेशाब की जांच कराएं। इसके साथ ही समय समय पे डॉक्टर के पास आके अपनी जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। ANC की जांच एक ऐसी जाँच है जिसके द्वारा हम 3-4 चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, शुगर का ज़्यादा होना, बच्चे का ठीक से ना पनपना, RH नेगेटिव प्रेगनेंसी है, या समय से पहले बच्चे का दर्द शुरू हो गया, तो ये सब कुछ प्रेगनेंसीज जो हैं वो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में आती हैं। तो हमें ये सब जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो है वो लो रिस्क प्रेगनेंसी कौन सी है और हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन सी है, तभी हम एंटीनेटल फॉलोअप और एंटीनेटल की जाँच सही ढंग से कर पाएंगे। इसके साथ ही जब भी माताएँ हमारे पास आती हैं, एक एक OPD विजिट में हमें क्या क्या उनको जानकारी देनी है ये बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार का भोजन करें, कैसा भोजन करें, आयरन और कैल्शियम की जो खुराक है वो कब लें, कैसे लें, इसके साथ ही कोई अन्य दवा चल रही है तो उसके लिए भी डॉक्टरी सलाह की सलाह बहुत ज़रूरी है। किस तरह से उस दवाई को लेना है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपकी हृदय रोग की दवा हो, या थायराइड की दवा हो, या पहले से शुगर की दवाई चल रही है, तो ये सारी चीज़ें डॉक्टरी सलाह पर ली जा सकती हैं। इसके साथ ही जो कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज हैं जो प्रेगनेंसी में बताई जाती हैं, हर तरह की एक्सरसाइज नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज हैं जो प्रेगनेंसी में की जा सकती हैं, तो वो डॉक्टरी सलाह के साथ ही करनी चाहिए। कुछ वॉक है, कुछ खाने के बाद 15-20 मिनट का वॉक है जो हम बताते हैं, और इस तरह से कई तरह की जानकारियां जो हैं जो हम एंटीनेटल पीरियड में हम अपनी गर्भवती महिलाओं को दे सकते हैं। ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं उन्हें पिकअप जल्दी कर सकते हैं।
0: डॉक्टर सुजाता, जैसे कि आपने कहा कि प्रेगनेंसी में महिलाएं क्या खाएं क्या ना खाएं, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर भारती ने जैसे कि अभी हमें गोल्डन आर के बारे में बताया था कि गोल्डन आर के बारे में तो हमें पता लग गया, लेकिन ये है कि अगर बच्चा हो गया, हम घर पे ले गए, बच्चा स्वस्थ है, लेकिन क्या ऐसे कोई डेंजर साइंस होते हैं कि जिसके बाद हमें लगे कि हाँ, हमें तुरंत डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करना चाहिए?
2: आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। ये सवाल हर एक पेरेंट्स को जानना चाहिए कि बच्चे को कब हॉस्पिटल ले जाना है या कब घबराने की बात है। तो यदि बच्चा दूध ना पी रहा हो या पहले से कम दूध पी रहा है, बहुत सुस्त हो गया, जग नहीं रहा है, उनकी सांस तेज या कठिन हो रही है, छाती अंदर धस रही है, होठ नीले पड़ रहे हैं, शरीर बहुत गर्म या ठंडा लग रहा है, बार बार वॉमिटिंग हो रहा है, दौरे पड़ रहे हैं, या बच्चा अचानक ढीला पड़ गया, तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। इसी तरह पीलापन, जिसे हम जॉन्डिस बोलते हैं, अगर ये जॉन्डिस सोल में या पाम में आ गया, पहुंच जाए, नाभि से मवाद आ जाए, शरीर पर कई कई फूरे दिखाई देने, एक दो तो हो सकते हैं लेकिन अगर पांच से ज़्यादा पड़ने लगे या बच्चे की गतिविधि अचानक कम हो जाए तो जांच बहुत ज़रूरी है। 3 महीने से छोटे बच्चे में बुखार को हल्के में नहीं लेना चाहिए। घर पर अपने आप एंटीबायोटिक्स या बुखार की दवा देकर इंतज़ार करने के बजाय उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो WHO का क्लियर कट गाइडलाइन है कि अगर बच्चा दूध ना पिए, सुस्त हो जाए, तेज या कठिन सांस लेने लगे, शरीर बहुत गर्म या ठंडा होने लगे, दौरा पड़ने लगे, हथेली या तलवा पीला होने लगे, तो इसे हम प्रमुख खतरे के संकेत मानते हैं और इस समय हमें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नवजात शिशु में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है बच्चे का गर्माहट। तो अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है किसी पेरेंट्स के पास, तो हाथ से भी, हाथ के उल्टे जो पाम के अपोजिट साइड से, उसको हमें एक पेट पर और एक तलवे पर रखना चाहिए। दोनों गर्म होना चाहिए। अगर पेट पर गर्म है और तलवे में ठंडा है तो इसका मतलब बच्चा को हाइपोथर्मिया की तरफ जा रहा है, तो उसे तुरंत हमें गर्म करके रखना चाहिए।
0: ये आपने बहुत अच्छा बताया कि कई बार हम बाहर हो, हमारे पास ट्रैवल कर रहे हो, थर्मामीटर नहीं हो, तो हम बच्चों का इंस्टेंटली चेकअप कर सकें। इस पर हम बातें और भी करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
2: और एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जितना कपड़ा पहनते हैं, बच्चे को एक लेयर अपने से ज़्यादा पहनना चाहिए, नए नवजात बच्चे को, क्योंकि उसमें गर्माहट देना बहुत ज़रूरी है और ये बच्चे यूजुअली हाइपोथर्मिया की ओर जल्दी से जल्दी जा सकता है।
0: ममता की गर्माहट के साथ ये भी जरूरी है। एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
3: हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब सबको।
0: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: मिसेस बेदी बोल रही हूँ, पंचकूला से।
0: जी बताइए, स्वागत है आपका रेडियो डॉक्टर में। बताइए क्या प्रश्न है आपका।
3: थैंक यू। मेरे 2-3 क्वेश्चन है। पहला तो ये है कि प्रेग्नेंट का डाउन सिंड्रोम टेस्ट होना मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि हमारे किसी के बच्चे हुए बहुत बड़ा नर्सिंग होम पर वो टेस्ट नहीं करवाया और बच्चा डाउन सिंड्रोम से पैदा हुआ और 4 महीने में वो खत्म हो गया, ग्रो ही नहीं किया। दूसरा ये कि क्या बड़ी एज में प्रेगनेंसी होने से ज्यादा स्पेशल चिल्ड्रन आ रहे हैं दुनिया में? थोड़ी मेरी एक क्वेरीज दूर करें।
1: जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बातें पूछी हैं। कुछ दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो डाउन सिंड्रोम, आजकल डाउन सिंड्रोम की तरफ अगर हम देखें तो बढ़ती उम्र में अगर प्रेगनेंसी की जाती है तो डाउन सिंड्रोम का जो इंसिडेंस है वो डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर पॉपुलेशन। तो डाउन सिंड्रोम की जाँच बहुत ज़रूरी है, सभी बड़े अस्पतालों में की जाती है, जिसको हम डुअल मार्कर या क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट कहते हैं, जो कि हर बड़े संस्थान में, हर छोटे संस्थान में की जाती है और वो बहुत ज़रूरी है, हर प्रेगनेंसी में होनी चाहिए। पहली बात, कुछ अल्ट्रासाउंड के फीचर्स भी होते हैं। जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब 18 से 20 हफ्ते, 22 हफ्ते के बीच में जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसी स्पेशल बातें हैं जो सामने उभर के आती हैं, जिससे ये काफ़ी हद तक पिकअप किया जा सकता है कि बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, उसमें शायद इस तरह की कुछ परेशानी है, और जिसको हम खून के टेस्ट के द्वारा या बच्चे के आसपास जो पानी है उसे लेके उसके टेस्ट के द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा को सचमुच डाउन सिंड्रोम है। तो आजकल डाउन सिंड्रोम की जांच डेफिनेटली की जाती है और सभी प्रेगनेंसीज के लिए की जाती है। ये आपका पहला प्रश्न था। आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि बढ़ती उम्र की महिलाओं में प्रेगनेंसी, जो गर्भधारण है, वो एक हाई रिस्क फैक्टर है। डेफिनेटली वो एक हाई रिस्क फैक्टर है, क्योंकि इसमें जो हमारी जेनेटिक डिजीज़ हैं जो बच्चे की तरफ जाती हैं उसका प्रतिशत थोड़ा बढ़ जाता है। तो ऐसी प्रेगनेंसीज़ के साथ डॉक्टर्स भी बहुत सावधान रहते हैं। कई तरह की जाँचें होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा जाँचें होती है, खून के पेशाब की जेनेटिक काउंसलिंग होती है, जेनेटिक टेस्ट्स होते हैं। आजकल तो हमारे पास इतने बड़े बड़े टेस्ट हैं कि हम होल जीनोम सीक्वेंसिंग तक कर लेते हैं। तो इस तरह की कुछ स्पेशल जांचें होती हैं जिसके द्वारा ये पता लगाया जा सकता है। तो डेफिनेटली बढ़ती उम्र में कुछ अनुवांशिक बीमारियों का कार जो खतरा है वो बढ़ जाता है बच्चे का। यस,
3: हेलो।
1: हेलो, हाँ जी बताएं।
3: हाँ जी, नहीं, ये डाउन सिंड्रोम टेस्ट किस मंथ में होता है?
1: देखिए, प्रेगनेंसी में 4th मंथ में डाउन सिंड्रोम टेस्ट, थर्ड मंथ के बाद डाउन सिंड्रोम टेस्ट हो जाता है।

0: एक टेस्ट फोर्थ मंथ के बाद होता है, एक अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है 4.5 मंथ्स पे, तो इससे पता चल जाता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम की समस्या है।
1: तो क्या फिर वो बेबी अबॉर्ट करा देना चाहिए?
0: जी, क्योंकि डाउन सिंड्रोम का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो स्पैन है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में पेशेंट की काउंसलिंग के द्वारा, जो माता पिता हैं उनकी काउंसलिंग के द्वारा, इस तरह का डिसीजन लिया जा सकता है कि प्रेगनेंसी को आगे ना बढ़ाया जाए।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत मेरे दिल से एक बोझ उतारा है, मैंने किसी को बताना।
0: थैंक यू वेरी मच।
2: ये तो डॉक्टर साहब आपने इसके बारे में बताया, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी माता पिता खुशहाली से अपने बच्चे को अपनाएं, तो हेल्दी प्रेगनेंसी हो उसके लिए माँ क्या खाएं क्या ना खाएं?
0: जी, जो न्यूट्रिशन है, जो प्रेगनेंसी में जो एंटीनेटल मदर्स हैं, जो न्यूट्रिशन है, जिस प्रकार का भोजन चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पास अधिकतर महिलाएं जो आज भी आ रही हैं, 50-55% महिलाओं में खून की कमी है, एनीमिया है, चाहे वो माइल्ड फॉर्म में हो, मॉडरेट फॉर्म में हो या सेवियर फॉर्म में हो, ये एक चिंता का विषय है। सभी बड़े अस्पतालों में आयरन और कैल्शियम की गोली मुफ्त दी जाती है, उन्हें हर एंटीनेटल विजिट पे समझाया जाता है कि इन गोलियों को लेना बहुत ज़रूरी है। लगातार प्रेगनेंसी में कब तक लेनी चाहिए, उसके बाद भी डिलीवरी के बाद 2 या 3 महीने लेनी चाहिए, आपके अंदर खून की कमी ना हो, किस तरह का भोजन करें, वो बहुत ज़रूरी है। तो 3 बातें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से आप अपनी जो कैलोरी इनटेक है, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो डाइट हम लेते हैं, उस पे अतिरिक्त 300 कैलोरीज का जो वो है फूड इनटेक, वो अधिक होना चाहिए। हमारे खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां हो, सलाद हो, ठीक है, दूध है, दूध से बनी चीज़ें हैं, दही है, कम से कम माताओं को 1 लीटर दूध प्रतिदिन लेना चाहिए। अगर वो एग्स लेते हैं तो 2 एग्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना आयरन इनटेक और अपना प्रोटीन इनटेक डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। और जैसा हमने कहा, 300 कैलोरीज पर डे की अतिरिक्त आवश्यकता होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर 9 मंथ्स, और 500 कैलोरीज प्रतिदिन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है ड्यूरिंग लैक्टेशन, डिलीवरी के बाद, जब तक माताएं बच्चों को दूध पिला रही हैं उसके बाद। एंड प्रोटीन इनटेक भी डेफिनेटली 1 ग्राम पर डे एक्स्ट्रा चाहिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो खान पान है वो किस तरह से हो। तो हम अपने मील को इस तरह की कोई उस तरह का खाना ना ले कि एक साथ बहुत सारा ले लिया या तेल मिर्च मसालेदार भोजन ले लिया। हमें अपने मील्स को प्लान करना होता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, जिसे हम मेजर मील्स कहते हैं। इसके साथ ही हम बीच बीच में कुछ माइनर मील्स ले सकते हैं। इसका मतलब होता है भोजन के बीच में अतिरिक्त हमने कुछ सलाद ले लिया, कुछ फ्रूट्स ले लिया, कुछ फ्रूट जूसेस ले लिए जो घर में बने हुए हों, या हमने कुछ सूप्स ले लिए। इस तरह से हम अपने जो खान पान है उसे नियंत्रित भी कर सकते हैं और उसको ठीक से प्लान भी कर सकते हैं। तो एक एक चीज जो है वो सभी अस्पतालों में एंड हर एंटीनेटल विजिट पे मरीजों को समझाई जाती है। जी,
2: लेकिन कई बार प्रेगनेंसी के दौरान कहा जाता है कि जो मन है वो खाओ, जब मन के हिसाब से खाओगे तभी बच्चा स्वस्थ होगा। तो क्या कुछ ऐसा है जो हमें अवॉइड करना चाहिए?
0: जी,
2: नहीं खाना चाहिए।
0: बहुत सी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले बताया, बहुत ज्यादा तेल मिर्च मसाला जो भोजन है ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह का भोजन आपके लिए ना आपके बच्चे के लिए पौष्टिक है। पानी जो है दूषित नहीं होना चाहिए, जो हमारा भोजन है दूषित नहीं होना चाहिए। खाना खाएं, बनाएं, हाथ धोने के बाद ही भोजन ग्रहण करें, और हमारा जो भोजन है वो बिल्कुल साफ, स्वच्छ, शुद्ध, घर का बना हुआ होना चाहिए। बाहर से आए भोजन खाना खतरे से खाली नहीं है, कई तरह के पेट के संक्रमण और बाकी रिस्क हैं जो बच्चों को हो सकते हैं और माताओं को भी।
2: डॉक्टर दास आपसे, डॉक्टर भारती आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हम बात कर रहे थे बच्चों की, तो जो बच्चा समय से पहले हो जाए या कम वजन का हो, पैदा हुआ, तो उसके लिए क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए, जैसे प्रीमेच्योर डिलीवरी हो या वेट कम हो?
3: तो अभी जैसे हम बात करते हैं नियोनेटल मोर्टैलिटी का, तो इंडिया का नियोनेटल मोर्टैलिटी रेट अभी अराउंड 18 per 1000 लाइव बर्थ है, और प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ ये जो है करीब करीब 1/3 ऑफ द न्यूनेटल मोर्टैलिटी को कॉज है। ये मतलब 1/3 जो टोटल मोर्टैलिटी का हिस्सा प्री मैच्योरिटी और लो बर्थ वेट से कवर होता है। तो हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये ध्यान हमें प्रेगनेंसी के समय से ही देना चाहिए। डॉक्टर दास बता सकते हैं इसके बारे में कि अगर हम मदर को सही समय पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगाएंगे, तो वो बच्चे को हम मॉर्बिडिटी और

0: पेनल्टी कम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका देखभाल, अगर डिलीवरी होता है तो इस मदर्स को हम ऐसे अस्पताल में ले जाएं जहां की लेवल 3 या सारी सुविधाएं हो, वेंटिलेशन की सुविधाएं हो, लेवल 3 केयर नर्सरी की सुविधा हो, तो वहां हमें ले जाना चाहिए इसको। या मान लो कि इसका डिलीवरी किसी ऐसे अस्पताल में हो गया जहाँ लेवल 3 सुविधाएं नहीं है, प्री टर्म बेबी डिलीवर हो गया, तो उसको अच्छे तरह से हमें गर्माहट के साथ साथ लेवल 3 नर्सरी में ले जाना चाहिए। अब ऐसे बच्चे को क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, जैसा कि आपने सवाल पूछा, तो ऐसे बच्चे जल्द से जल्द ठंड पड़ जाते हैं, दूध पीने में ये थक सकते हैं, और इन्फेक्शन का खतरा इसमें अधिक हो सकता है। तो उन्हें अस्पताल की सलाह के अनुसार नियमित रूप से फॉलो अप की ज़रूरत होती है, तो उसको बार बार दिखाने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने डेंजर साइन बताया,
1: जी
0: अगर कोई भी साइंस आ जाते हैं तो उसको तुरंत डॉक्टर्स के पास ले जाना चाहिए। दूसरी बात जो है कि इसमें अगर वजन कम बढ़ने लगे, इस बच्चे में अगर वजन कम बढ़ रहा है, तो वो भी देखना पड़ेगा कि वजन कम क्यों बढ़ रहा है। एक तो कारण हो सकता है कि ये बच्चा ठंडा रह रहा है, जैसा कि हमने अभी बताया कि अपने हाथ से आप देख सकते हो कि इसके बच्चे का पैर जो है वो ठंडा तो नहीं है, हो रहा है पेट के कंपेरिजन में। तो अगर ठंडा हो रहा है तो उसको हमें गर्म रखना पड़ेगा। दूसरी बात जो एक बहुत ही ज़रूरी है वो है कंगारू मदर केयर। ये है यानी बच्चे को माँ या पिता की खुली छाती से स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखना होता है। यह बहुत ही उपयोगी है, इससे गर्माहट मिलता है, स्तनपान और जुड़ाव में सहायता मिलता है। तो ये हॉस्पिटल में तो कंगारू मदर केयर हम करते ही करते हैं, जब ये बच्चे छुट्टी होके जाने लगते हैं तो हम लोग सलाह देते हैं मदर को, पेरेंट्स को, पर्टिकुलरली ग्रैंड्स मदर को, कि आप घर पे भी इसको कंगारू मदर कराएं। तो कंगारू मदर केयर सिर्फ ऐसा नहीं है कि गोद में पकड़ना, बल्कि इसे सीखना पड़ता है सही तरह से, परिवार को अस्पताल से सही तरीके से कंगारू मदर केयर सीखना चाहिए। दूध की मात्रा, वजन, तापमान, सांस और बच्चे की गतिविधि पर निगरानी रखनी चाहिए जब हम कंगारू मदर करते हैं। बच्चा छोटा है इसलिए उसे इन्फेक्शन से बचने के लिए भी अनावश्यक भीड़ या बीमार लोगों के संपर्क और बार बार अलग अलग लोगों के द्वारा गोद में लेना सीमित रखना चाहिए।
1: जी हाँ, आपने बहुत अच्छा बताया हमें कंगारू मदर केयर के बारे में और गोल्डन आर के बारे में। इस पे बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक में रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं मदर एंड चाइल्ड केयर पे। तो डॉक्टर सुजाता, सबसे पहले तो आप हमें अभी ये बताइए कि जो नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, सीजेरियन भी होती है, सी सेक्शन डिलीवरी जिसे हम कहते हैं, तो उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए?
2: जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है जो हमारी माताएं हैं जो गर्भ धारण कर चुकी हैं या डिलीवरी हुई है, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो स्तनपान है वो कब शुरू किया जाए। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्तनपान जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए, प्रेफरेबली एक घंटे के अंदर, डिलीवरी के एक घंटे के अंदर माताओं को अपना दूध देना चाहिए अपने नवजात शिशुओं को। जिसको पहला जो दूध होता है जो पीला और गाढ़ा होता है वो बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम के अपने कई फायदे हैं। इसमें जो एनर्जी दी जाती है, जो मिलती है बच्चों को वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके साथ ही बहुत से एंटीबॉडीज़ होते हैं जिससे शिशुओं को कई तरह के रोगों से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी उनकी डेवलप होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक घंटे के अंदर स्तनपान कराएं अपने बच्चों को। तो ये आपके सवाल का पहला हिस्सा हुआ।
1: और एक दूसरा चीज ये भी जानना चाहूंगी कि साथ में कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कौन कौन सी समस्याएं अक्सर माँ को होती हैं?
2: हाँ, 4-5 तरह की समस्याएं हैं। जैसे कि अगर डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी भी है या सिजेरियन सेक्शन भी है, तो जो पेन है, जो माताओं को निचले हिस्से में पेन होता है जिसकी वजह से वो बैठकर या किसी भी पोजीशन में दूध नहीं पिला पा रही हैं, ये पहली समस्या है। दूसरी बात जो बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं कि माताओं की ये शिकायत होती है कि पर्याप्त दूध की मात्रा नहीं आ रही है। ये जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है जो हमें उन्हें समझाना होता है कि जो बच्चा है उसकी जो कैपेसिटी है, स्टमक की कैपेसिटी है, वो बहुत कम होती है, 5 ml या 10 ml। तो जितना दूध आपका आ रहा है वो बच्चे के लिए सफिशिएंट है। ये काउंसलिंग पार्ट जो है वो जो सभी माताओं के लिए बहुत ज़रूरी है, उन्हें बैठ

0: कि समझाना किस तरह से आप स्तनपान कराएं, किस पोजीशन में कराएं, कितनी बार कराएं, ये एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही कई बार ऐसा होता है कि माताएं अगर ठीक से अपना दूध नहीं पिला पा रही हैं तो हम जिसे कहते हैं दूध छाती का भर जाना, जिसे एंगॉर्ज्ड ब्रेस्ट कहते हैं, या क्रैक निपल्स होते हैं जिनकी वजह से माताओं को बहुत पेन होता है, जो माताएं अपने बच्चों को ठीक से स्तनपान नहीं करवा पाती हैं। तो इस तरह की कुछ आम समस्याएं हैं जो देखने में आती हैं जी।
1: जैसे कि अभी डॉक्टर सुजाता ने कहा कि दूध कम आ रहा है, तो डॉक्टर भारती आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार होता है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा दी है, बच्चा फिर भी रोए जा रहा है, लगता है कि उसने अभी भूखा है, तो कैसे पता लगे कि बच्चा ने डाइट पूरी हो गई है या वो भूखा है? और साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए और पानी कब देना चाहिए बच्चे को?
2: यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले मैं लेता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो जन्म से पहले 6 मंथ तक बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध देना चाहिए। इस दौरान पानी, शहद, घुट्टी, गाय का दूध या कोई भी अन्य चीज़ देने की आवश्यकता नहीं है। माँ के दूध में ही बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। 6 मंथ पूरे होने पर माँ का दूध जारी रखते हुए कंप्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करना चाहिए। घर का ताज़ा, नरम और पौष्टिक भोजन जैसे दाल, चावल, खिचड़ी, मसली हुई सब्जियां और फल देना शुरू कर सकते हैं। माँ का दूध 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक जारी रखना चाहिए। अब आपका मैं दूसरा सवाल लेता हूँ कि कैसे पता चले कि बच्चा सही तरह से दूध पी रहा है? बच्चा स्तनपान के बाद तुरंत शांत हो जाता है और संतुष्ट दिखता है। 24 घंटे में कम से कम 6 से 7 बार यूरिन पास करता है। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि बच्चा फीड करने के बाद सो रहा है अच्छे से और 6 to 7 times यूरिन पास कर रहा है। उसका वजन बढ़ रहा है, एटलीस्ट 20 to 30 grams एक दिन में उसका वजन बढ़ रहा है। स्तनपान के समय बच्चा अच्छी तरह से स्तन को पकड़कर निगलने की आवाज़ माँ सुन पा रही है, तो इससे पता चलता है कि बच्चे को मिल्क मिल रहा है। ये सवाल आता है, मदर्स आती है हम लोग की ओपीडी में ये बता करके कि बच्चे को दूध नहीं हो रहा है, क्या हम अलग से ऊपर से दूध पिला दें? तो माँ को ये बताना बहुत ज़रूरी है, माँ को काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है, माँ को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे को अगर वजन सही से बढ़ रहा है, बच्चा सो रहा है सही से, बच्चा यूरिन पास कर रहा है, तो आपको ऊपर का दूध देने का ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान रखें कि पहले 6 महीने केवल माँ का दूध दें, 6 महीने के बाद पूरक आहार के साथ माँ का दूध दें और 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक स्तनपान करें। यही स्वस्थ बच्चे की सबसे मजबूत नींव है।
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून जी, मोहम्मद इम्तियाज एंड सलमा बेगम, जवाहर कैंप कीर्तिनगर न्यू दिल्ली से। ये लिखते हैं, मेरा सवाल है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत से घरों में आराम के लिए बोला जाता है, जैसे तुम ये ना करो या वो ना करो, यहाँ तक कि फिजिकली एक्टिविटीज़ भी बंद कर दी जाती हैं। बाद में क्या ये प्रॉब्लम का कारण हो सकता है, क्या परेशानी कर सकता है, तो प्लीज़ गाइड करें
0: जी। ये बहुत ही आम बात है जो काफ़ी घरों में देखने को मिलती है कि आप अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को कितना कर सकते हैं और कितना रिस्ट्रिक्ट करना है। देखिए, रिस्ट्रिक्शन ऐसा सच कुछ खास नहीं है, आप अपने घर के जो नॉर्मल काम है वो सभी कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिन में 2 घंटे और रात में 8 से 10 घंटे आप आराम कीजिए। कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज जो डॉक्टर की सलाह पे की जा सकती हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपको अपनी एक्टिविटीज़ को, डेली रूटीन को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करना है। हाँ, जैसे कोई भारी वज़न नहीं उठाना है, इसका ध्यान रखना है, भारी बाल्टी वगैरह इस तरह का कोई सामान नहीं उठाना है, इससे प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लेकिन आप अपना जो नॉर्मल रूटीन का काम है वो डेफिनेटली कर सकते हैं जी।
1: जी हाँ, तो डॉक्टर भारती आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने अभी बताया था

0: कि बच्चों को जब हम बात करें तो वैक्सीनेशन की, तो बच्चों को वैक्सीनेशन कितनी इम्पोर्टेंट है और किस एज तक हमें देनी चाहिए?
1: टीके बच्चे की सुरक्षा कवच है, राइट? जैसे हम बाइक चलाते हैं समय, बाइक चलाते समय हेलमेट पहनते हैं, वैसे ही टीके बच्चे को कई गंभीर बीमारियों और जानलेवे बीमारियों से बचाते हैं। सो वैक्सीनेशन से पोलियो, टीबी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, खसरा जिसको मिजल्स बोलते हैं, रूबेला, हेपेटाइटिस बी जैसी कई बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। टीकाकरण जन्म से शुरू हो जाता है। पहला टीका जन्म के समय लगता है, जिसमें कि हम BCG, हेपेटाइटिस बी और ओरल पीलियो देते हैं। इसके बाद 6, 10 और 14 वीक्स, और फिर 9 मंथ्स, और उसके बाद 12 to 15 मंथ्स, फिर 16 to 24 मंथ, यानी कि 2 साल, और उसके बाद भी उम्र के अनुसार बूस्टर टीके दिए जाते हैं। सो माता पिता को चाहिए कि बच्चे का टीकाकरण कार्ड हमेशा अपने पास संभाल कर रखें, सभी टीके समय पर लगवाएं। यदि किसी कारण से कोई टीका छूट जाए तो घबराए नहीं, अपने पीडियाट्रिशियन या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और कैचअप वैक्सीनेशन करवाएं। ऐसा नहीं कि फिर से वैक्सीन शुरू हो जाएगा, राइट? तो देयर इज प्रोविजन ऑफ कैचअप वैक्सीनेशन, तो वो वैक्सीन शुरू हो जाता। सो समय पर लगाया गया हर टीका आपके बच्चे को स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ साथ मैं एक और टीके के बारे में बात करूंगा, जो कि सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन्स है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको शुरू कर दिया है, वो फ्री में गवर्नमेंट में मिलता है। और इसके साथ साथ कुछ टीके ऐसे भी हैं जो कि गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं है, उसको भी लगाना चाहिए। जैसे फ्लू के टीके हैं, अगर अफोर्डेबल है तो। इसके साथ साथ जैसे चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस ए है, फ्लू का टीका है, सर्वाइकल कैंसर का टीका है, मेनिंजाइटिस का टीका है, तो ये भी लगवाना चाहिए अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करने के बाद।
0: तो ये सारे वैक्सीनेशंस देखा जाए तो बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए हमें वैक्सीनेशन का नाम सुनकर डरना नहीं है।
1: डरना नहीं चाहिए।
0: हाँ, बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाना चाहिए। डॉक्टर सुजाता, जैसे कि आपने कहा था कि अभी हम बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। कई बार होता है प्रेगनेंसी के दौरान घर पर वाकई में ये होता है कि मना कर देते कि काम मत करो, रेस्ट कर लो। कई बार होता है जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं तो उनको क्या एहतियात बरतना चाहिए और कौन से मंथ तक वो काम कर सकती हैं, और काम के दौरान क्या डाइट चार्ट फॉलो करें, क्या स्केड्यूल फॉलो करें जिससे वो काम भी कर ले और फिट भी रहे?
2: देखिए, जहाँ तक कामकाजी महिलाओं का सवाल है, इसमें 3 बातें जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले अपनी डाइट का ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है कि काम की अधिकता के कारण जो डाइट है, जो पौष्टिक आहार है, वही सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया, 300 कैलोरीज प्रतिदिन अतिरिक्त, जैसे अगर एक नॉर्मल लेडी 2200 कैलोरीज ले रही है तो उसमें 300 कैलोरीज और जोड़ के 2500 कैलोरीज पर डे के हिसाब से उन्हें लेना होता है, जिसे वो अलग अलग मील्स के अकॉर्डिंग वो डिवाइड कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, बीच में 3 माइनर मील्स हैं, चाहे वो फ्रूट के फॉर्म में हो, चाहे वो फ्रूट जूसेस के फॉर्म में हो, या सूप्स एंड सैलड के फॉर्म में हो। प्रतिदिन 1 लीटर दूध लेना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही पनीर है, अंडा है, दाल है, जिसपे हमने पहले भी चर्चा की थी, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो प्रोटीन इनटेक है पर डे वो भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों की ग्रोथ के लिए, विकास के लिए, जो आयरन है, कैल्शियम है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है, एक एक चीज़ जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। इसके साथ ही जो महिलाएं हैं वो बीच बीच में छोटे ब्रेक्स ले सकती हैं अपने काम के बीच में। अगर 10-15 मिनट, आधा घंटा अपना ब्रेक ले सकते हैं वो लंच टाइम के बाद या इस तरह से शाम के समय, तो इस तरह से डेफिनेटली वो अपनी जो थकावट है उसे कम कर सकते हैं। जब अगर लंबे समय तक बैठने का अगर काम है तो अपने पीछे कमर के साथ एक छोटा तकिया लगा के, ताकि इससे जो आपकी फटीक है वो कम हो, और आप अपने पैरों के नीचे एक छोटा स्टूल लगा के भी अपना काम को जारी रख सकते हैं। इससे आपके पैरों में जो थकावट है, जो सूजन है, वो काफ़ी कम होती है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। डेफिनेटली यू शुड

0: टेक केयर ऑफ योर डाइट, एक्सरसाइज, आयरन एंड कैल्शियम सप्लीमेंटेशन।
1: इसके साथ में एक चीज और पूछना चाहूंगी जो मेरे मन में आई है, कई बार मूड स्विंग्स भी होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और बाद में भी
0: जी,
1: तो उसका कैसे पता लगे कि हाँ इस वजह से हो रहा है और उसको कैसे नियंत्रण में करें?
0: जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो डेफिनेटली एक ऐसा एरिया है जिसकी तरफ ना मरीजों का ध्यान जाता है ना डॉक्टर्स का ध्यान जाता है। 5% से 10% पेशेंट्स में, इन महिलाओं में जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो देखा गया है। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो महिला ना अपना ध्यान रख सकती है, ना अपने नवजात शिशु का ध्यान रख सकती है, ना पौष्टिक आहार का ध्यान रख पाएंगी, ना आयरन और कैल्शियम की वो खुराक ठीक से ले पाएंगी। तो एक एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपके परिवार को ध्यान रखना चाहिए कि उस महिला को एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एक मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है। ये एक कठिन समय है उनके लिए, डिलीवरी या डिलीवरी के बाद, जिन्हें अपना भी ध्यान रखना है, अपने बच्चे का भी ध्यान रखना है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि परिवार का सहयोग ऐसे कंडीशंस में बहुत ज़रूरी है। और यस, अगर समस्या उत्पन्न होती है तो डेफिनेटली डॉक्टर्स के पास आना चाहिए और इलाज लेना चाहिए। इसका अपना एक अलग ट्रीटमेंट है, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है।
1: जी डॉक्टर भारती, जैसे कि आप प्रेसिडेंट हैं NNF के, तो ये NNF इंडिया क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
2: NNF यानी नेशनल न्यूरोलॉजी फोरम ऑफ इंडिया, यह भारत में नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए काम करने वाला सबसे बड़ा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। NNF का उद्देश्य है कि देश के हर नवजात शिशु को जीवन की सुरक्षित और स्वस्थ शुरुआत मिले। इसके लिए हम डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देते हैं, नवजात देखभाल के मानक स्टैंडर्ड तैयार करते हैं, शोध को बढ़ावा देते हैं और सरकार तथा अन्य ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करते हैं सो दैट कि न्यूनेटल मोर्टैलिटी कम हो। बेबी शुड रिसीव द मिनिमम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अक्रॉस द कंट्री। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर दिल्ली में पैदा हुआ तो उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिले और कोई बच्चा बहुत दूर दरार गांव में हुआ तो वहाँ ना मिले। तो हम लोग इस पर ध्यान देते हैं कि हर एक जगह एक मिनिमम न्यूनेटल

0: है, अगर वो क्राइटेरिया, मैंडेटरी क्राइटेरिया वो हॉस्पिटल फुलफिल कर रहा है, तभी हम लोग उसको सर्टिफाइड करते हैं। तो उस सेंटर पर जाकर के लोग अपने बच्चे को रख सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो हमारा विश्वास है कि हर नवजात का जीवन अनमोल है और सही देखभाल सही समय पर सही हाथों से मिलनी चाहिए, यही एनएनएफ का संकल्प है।
1: और ये एनआरपी क्या है, इसके बारे में भी
0: एना
1: कुछ बताइए।
0: सो एनआरपी का पूरा नाम है नेशनल न्यूनेटल रिसस्टेशन प्रोग्राम। इसका उद्देश्य है जन्म के समय हर नवजात शिशु को उसकी आवश्यकता के अनुसार सही देखभाल मिले। अक्सर लोग सोचते हैं कि एनआरपी केवल उन बच्चों के लिए है जो जन्म के बाद नहीं रोते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग 90% न्यूबॉर्न जन्म के बाद अपने आप रोते हैं और सामान्य रूप से सांस लेते हैं। एनआरपी हमें यह भी सिखाता है कि ऐसे स्वस्थ बच्चे को भी एसेंशियल न्यूबॉर्न कैसे दिया जाए। इसमें बच्चों को गर्म रखना, मेंटेनिंग टेम्परेचर, देर से नाल काटना, दैट इज डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, जन्म के पहले 1 घंटे में माँ का दूध शुरू करना, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट के साथ साथ इन्फेक्शन ना हो, वो सारी बातें भी एनआरपी में सिखाई जाती है। यहीं पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि करीब 10% न्यूबॉर्न जन्म के समय नहीं रोते हैं, मतलब सांस नहीं ले पाता है। तो उसे हमें एयरवे, जिससे कि हवा जाती है, तो एयरवे को खोलना या सांस देने में मदद करने की जरूरत होती है, तो वो भी हमें एनआरपी के थ्रू सिखाया जाता है। और लगभग 1% बच्चे ऐसे होते हैं जिसे कि एडवांस एनआरपी की जरूरत होती है, जिसमें कि हमें चेस्ट कंप्रेशन करना पड़ता है या मेडिकेशन देना पड़ता है, वो बहुत ही कम बच्चे हैं। सो यही कारण है कि एनआरपी केवल रिसस्टेशन ही नहीं सिखाता है, बल्कि हर न्यूबॉर्न के लिए सही, सुरक्षित और एविडेंस बेस्ड केयर देना सिखाता है, ताकि हर बच्चे को जीवन की सबसे अच्छी शुरुआत मिल सके। हमने 10 मई को एनआरपी डे फॉर द फर्स्ट टाइम मनाया, जो कि वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मना, और यह भारत की पहली बार इतने बड़े स्तर पर एक नेशनल मिशन के रूप में एनआरपी डे हमने मनाया। एक ही दिन पूरे देश में हजारों डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर प्रोफेशनल को न्यूनेटल रिसस्टेशन प्रोग्राम का ट्रेनिंग दिया हम लोगों ने। यह अभियान का उद्देश्य केवल ट्रेनिंग देना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि देश के हर एक लेबर रूम या डिलीवरी सेंटर में कम से कम एक एनआरपी ट्रेन पर्सन उपलब्ध हो, ताकि जरूरत पड़ने पर हर नवजात शिशु को जन्म के पहले ही मिनट में सही सांस दिया जा सके। यह अभियान पूरे देश में एक दिन में मनाया गया, विथ ए वन डे वन नेशन वन मिशन के रूप में चलाया गया, जिसमें 11,000 से अधिक सेंटर्स, 2,000 से अधिक इंस्ट्रक्टर तथा 27,000 से अधिक हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ट्रेन किया गया। यह भारत में न्यूबॉर्न केयर के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक अभूतपूर्व पहल रही, और ये पूरे वर्ल्ड में कभी भी 27,000 हेल्थ केयर प्रोफेशनल को एक दिन में फिजिकल रूप से ट्रेनिंग नहीं दिया गया। और ऐसा नहीं था कि ये ट्रेनिंग सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में दिया गया, देश के कोने कोने में, अरुणाचल या अरुणाचल प्रदेश हो या कहीं भी, आप कोई भी शहर का नाम लीजिए, छोटे से छोटे शहर में जहां हमारा मेंबर्स है, वी आर हैविंग 15,000 मेंबर, उन्होंने इसका ट्रेनिंग दिया। और इस ट्रेनिंग में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, फॉक्सी, सारे साथ मिल करके हमें हेल्प किया। और ये ट्रेनिंग तो हमने अभी दिया, लेकिन इसका असर हमें 10 साल तक देखने को मिलेगा।
1: जी डॉक्टर भारती, आपने हमें एनएनएफ और एनआरपी के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर सुजाता, आपसे जानना चाहेंगे आपने प्रेगनेंसी के दौरान कैसे केयर करनी है ये तो हमें बता दिया। अब वैसे हमारा जाने का समय हो गया, लेकिन

0: जाने से पहले हम ये ज़रूर चाहेंगे कि हमारे सारे श्रोताओं को तक ये जानकारी पहुंच जाए कि डिलीवरी के बाद किन बातों का विशेष ध्यान रखना है।
1: जी, डिलीवरी के बाद जो है कुछ चार पांच जो मुख्य बातें हैं उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात है अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना। आप प्रतिदिन नहाएं, अपने दांतों की सफाई, अपने शरीर की सफाई, ईच एंड एवरी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात है पौष्टिक भोजन का लेना। पौष्टिक भोजन होना चाहिए, भोजन पूरा होना चाहिए, जो आप नॉर्मल डाइट में लेते हैं बिल्कुल वही लीजिए। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें कि केवल खिचड़ी लेनी है या दाल का पानी लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी नॉर्मल डाइट को बिल्कुल जारी रख सकते हैं। तीसरी बात इम्पॉर्टेंट जो है वो आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन है। डिलीवरी के बाद 2 या 3 महीने तक आपको आयरन और कैल्शियम बराबर खाना है, जिससे आपके ही नहीं आपके नवजात शिशु को भी काफ़ी फायदा होता है। कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस भी हैं, कुछ पेट के निचले हिस्से की एक्सरसाइजेस, कुछ पेल्विक एक्सरसाइजेस, जिससे शरीर की जो मसल्स है उसमें भी स्ट्रेंथ आती है। आप अगर दर्द है, कुछ परेशानी है तो डेफिनेटली पेन किलर्स ले सकते हैं, मगर डॉक्टरी सलाह और जांच बहुत ज़रूरी है। जी,
0: जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं मदर एंड चाइल्ड केयर पे, हमारा जाने का वक्त हो गया है, तो जाते जाते डॉक्टर सुजाता आप मदर के लिए क्या संदेश देंगी और डॉक्टर भारती आप चाइल्ड केयर के लिए क्या संदेश देंगी?
1: जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट संदेश जो मैं आप सभी के माध्यम से अपनी सभी माताओं को देना चाहती हूँ, अपने सभी पेशेंट्स को, वो है एक कदम आप बढ़ाएं, एक कदम हम बढ़ाएं, तभी स्वास्थ्य के सभी लक्ष्य पाएं। जी,
0: और डॉक्टर भारती आप चाइल्ड केयर के लिए?
2: सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें यहाँ बुलाया, और मेरा पहला संदेश होगा कि बच्चे को गर्म रखें, स्किन स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बनाकर रखें, और ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा दें और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक कराएं। बच्चे को बिना सलाह शहद, घुट्टी, पानी या दवाएं ना दें। बच्चा दूध ना पिए, सुस्त हो जाए, सांस लेने में कठिनाई हो, शरीर बहुत गर्म या ठंडा हो, दौरा आए, पीलिया बढ़े, तो इंतज़ार ना करें, तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाएं। और परिवार बच्चे कि माँ का, बच्चे के साथ साथ माँ का भी ध्यान रखें।
0: तो दोस्तों, माँ का स्नेह, माँ का स्पर्श और माँ का दूध, यही वे अनमोल उपहार हैं जो किसी भी बच्चे को जीवन की सबसे मजबूत शुरुआत देते हैं। स्वस्थ माँ और स्वस्थ शिशु एक परिवार की ताकत है। आज की चर्चा से यही संदेश मिलता है, माँ और शिशु की अच्छी देखभाल, सही जानकारी, सही पोषण पूरे परिवार के सहयोग से होती है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रही डॉक्टर सुजाता दास, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, सफदरजन हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और हमारे साथ है डॉक्टर ललन के भारती, HOD पीडियाट्रिक, JPC हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड प्रेसिडेंट ऑफ NNF इंडिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की।
2: आपका भी बहुत
1: बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद
0: दोस्तों, हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जाते जाते बस इतना कहूंगी, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और खुशहाल परिवार, यही है बेहतर कल की नींव। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर रूबरू होंगे आप और हम आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 विपक्ष के हंगामे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज यह विधेयक सदन में पेश किया था। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को

सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री आज एक दिन की आधिकारिक यात्रा पर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच लंबे समय से चले आ रहे सहयोग को और मजबूत करना है। भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वलीशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक
3: आकाशवाणी।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।
5: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।
6: जी हां, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी FM रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूं SR यानी संतोष राव। कुछ

जी हाँ, दोस्ती एक ऐसा बंधन है जिसको हर कोई अपने अपने नजरिए के तराजू में तौलकर उसका नाम रखता है। कोई दोस्तों को जिंदगी कहता है तो कोई दोस्ती को ईश्वर का अनमोल तोहफा।

दोस्तों, दोस्ती के यही अलग अलग मायने इस रविवार देखने को मिले, जब फ्रेंडशिप डे पर लोगों ने एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड देकर ये जतला दिया कि उनकी जिंदगी में दोस्ती क्या मायने रखती है। दोस्तों, आज के दिशा प्रोग्राम में हम दोस्ती की अलग अलग अहमियत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे अपने कुछ लिसनर से, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर और सुनते रहिए हमारा ये प्रायोजित कार्यक्रम दिशा।

0: जी हाँ, अगर सच्चा दोस्त साथ हो तो जिंदगी की मुश्किल डगर भी आसान लगने लगती है। दोस्तों, जनकपुरी नई दिल्ली की पूजा किसे अपना सच्चा दोस्त मानती हैं, आइए सुनते हैं।
1: मेरा नाम पूजा है और मैं दिल्ली जनकपुरी से बात कर रही हूँ। दोस्ती सिर्फ एक लड़का लड़की के बीच में नहीं होती, दोस्ती तो किसी के बीच में भी हो सकती है। सबसे पहले हमारी माँ हमारे लिए सबसे अच्छी दोस्त बन सकती है, हमारी बहन भी अच्छी दोस्त बन सकती है, दादी नानी कोई भी सच्चा दोस्त हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त कौन सी है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी नानी है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, अपने दिल की हर बात सबसे पहले मैं उनसे शेयर करती हूँ। मेरे लिए असली दोस्त वही होता है जिसके सामने हम बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के अपने दिल की बातें कह सकते हैं और सामने वाला भी हमारी बातों को सुने, समझे और एक सही सलाह भी दे। मेरी नानी बिल्कुल वैसी है। हमारा रिश्ता सिर्फ नानी दोती का नहीं है बल्कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं जब भी परेशान होती हूँ या कोई टेंशन में होती हूँ या कभी मन उदास होता है तो सबसे पहले मैं अपनी नानी के पास जाती हूँ, अपने मन की सारी बातें उनसे शेयर करती हूँ। मुझे बहुत हिम्मत मिलती है उनके साथ और हर बार मुझे कुछ सीखने को मिलता है। सच कहूँ तो जो दादी नानी होती है ना, बहुत प्यारी होती है, बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है ये। देखो, असली फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं है कि लड़का लड़की के बीच में दोस्ती हो। असली फ्रेंडशिप ये होती है कि कोई भी हो, एक दूसरे को समझे, मुश्किल समय में साथ दे, बिना किसी झिझक के एक दूसरे के सामने अपने दिल की बात कह सके और सामने वाला भी उसको समझे, वही असली दोस्ती है। ऐसे रिश्ते हर किसी की जिंदगी में नहीं होते, ये सच में एक ब्लेसिंग है।
0: जी हाँ, ईश्वर की ब्लेसिंग्स हम इंसानों पर कई रूप में बरसती है और ये उस परम पिता परमेश्वर का ही अनुग्रह होता है जब हमें एक अच्छा और सच्चा दोस्त मिलता है।
2: मेरा नाम सूरज है और मैं वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ। वैसे तो दोस्ती के कई पर्यायवाची होते हैं जैसे कि सखा, मित्र, फ्रेंड, लेकिन मेरे लिए दोस्ती का जो सही मायना है वो है भरोसा, मानो एक ऑक्सीजन लाइफलाइन। ये कहने के पीछे दोस्तों जो मेरा कारण है वो ये है, क्योंकि जब जिंदगी आपको चारों तरफ से घेर कर परेशान करती है, अब चाहे वो परेशानियां आर्थिक हो, मानसिक हो, किसी भी तरीके की परेशानी हो, उस परिस्थिति में जब आपका दोस्त आपके साथ खड़ा रहता है, आपके कंधे पर हाथ रख के कहता है तू चिंता मत कर मैं हूं ना, मानो ऐसा महसूस होता है कि 90% वो प्रॉब्लम वहीं पे खत्म हो चुकी है।

0: मेरा नाम काव्या सोनी है। मैं किदवई नगर कानपुर में रहती हूँ। मेरी नज़रों में दोस्ती जीवन का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो हर परिस्थितियों में हमारा साथ देता है, हमारी खुशियों में खुश होता है और मुश्किल समय में हमारा हौसला बढ़ाता है। दोस्ती विश्वास, सम्मान और ईमानदारी पर टिकी होती है।
1: मेरा नाम दिव्यांशी सोनी है। मैं दिल्ली सहाद्रा रोहतास नगर में रहती हूँ। दोस्ती वह नहीं जो हर दिन याद आए, दोस्ती वह है जो हर मुश्किल में साथ निभाए। सच्चा दोस्त वही है जो आपकी मुस्कान की वजह बने और आपके दुख को अपना समझे।
2: कहते हैं रिश्ते तो हम चुन नहीं सकते, लेकिन दोस्त वो इकलौता रिश्ता है जिसे हम खुद अपनी पसंद से चुनते हैं। सच्चा दोस्त वो नहीं होता जिसके साथ हम हंसे, बल्कि सच्चा दोस्त वो होता है जो हमारी तकलीफ में माथा खड़ा हो। दोस्ती में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ना ही कोई अमीर और गरीब होता है। एक सच्चा दोस्त उस आईने की तरह होता है जो हमारी कमियों को हमें दिखाए और हमें सही राह दिखाए।
3: मेरा नाम तनु सरोहा है। मैं दिल्ली जनकपुरी में रहती हूँ। दोस्ती का रिश्ता खून का नहीं बल्कि दिल का होता है, जहाँ बिना कुछ कहे सब कुछ समझ लिया जाता है। दोस्ती में एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए। बिना किसी लालच के एक दूसरे का साथ देना ही सच्ची मित्रता है। दोस्ती केवल शब्दों का मेल नहीं बल्कि दो दिलों का अटूट बंधन है। एक सच्चा दोस्त उस दीये की तरह होता है जो जिंदगी की राहों में अंधेरा होने पर भी हमें सही रास्ता दिखाता है और हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है।
4: जी हाँ, जो साथ छोड़ दे वो दोस्ती के लायक नहीं होते। इसीलिए दोस्त बनाने से पहले अपनी आँखों को खुला रखिए, ताकि उसकी संगति कैसे लोगों के साथ है आपको पता चल सके। और इसके साथ ही अपने कानों को भी खोल कर रखिए, ताकि उसकी वाणी और उसके व्यवहार से आपको ये पता चल सके कि जिसको आप अपना दोस्त बनाना चाहते हैं वो आपकी जिंदगी को रोशन करेगा या आपको उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा जहां आपके लबों पर होगा उसके लिए ये शिकायत।

0: जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम दिशा, जिसमें हमारे कुछ लिसनर्स बात कर रहे हैं दोस्ती के अनेक पहलुओं पर। और आइए अब सुनते हैं गीतकार और समाज सुधारक गौतम सेठ को।
1: मित्रों, मेरा नाम गौतम सेठ है। मैं समाज का दोस्त हूँ, सामाजिक दोस्त। आप सोचेंगे सामाजिक दोस्त क्या होता है? जो समाज की सेवा करे, समाज के लिए काम करे, समाज के लोगों को प्रेम करे, उसे सामाजिक दोस्त कहते हैं। और यही तो दोस्त का मतलब होता है कि दोस्त के लिए अपने आप को बुला देना, दोस्त से प्रेम करना और उसके हर तकलीफ में, हर खुशी में शामिल होना और हर पल रहना। दोस्तों, वैसे तो फ्रेंडशिप डे साल में एक बार मनाया जाता है, लेकिन दोस्त वो एहसास है जो हर पल, हर दिन, हर समय आपके साथ रहता है। दोस्त वो है जो धूप में आपको छाया देगा और बारिश में छतरी का काम करेगा। इसी को दोस्ती कहते हैं। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। जितने भी आपके पुराने मित्र हैं, वो आपके इतने सगे हैं, इतने अपने हैं कि वो अपने लिए बाद में पहले आपके लिए करते हैं। मित्रों, इसी को तो दोस्ती कहते हैं। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। मेरा एक मित्र है राजू। उस समय लैंडलाइन हुआ करती थी। अब आप समझ रहे होंगे कितने पुराने मित्र होंगे वो मेरे, जब लैंडलाइन होता था, तो उससे पहले के भी हैं। तो एक दिन रोज फोन करता था, एक दिन मैंने उस दिन भी फोन किया। जैसे

0: ही उन्होंने आगे से हेलो की रूटीन की तरह। मैंने कहा राजू भाई आप परेशान बहुत हो, क्या बात हो गई? वो जब कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं आप मुझे नहीं बहला सकते, आप बहुत कष्ट में हो, सच बताओ क्या है। इतना कहना था कि उनकी आवाज कांपने लगी और जैसे आंखों से आंसू आ गए हों। उनका गौतम फटाफट मेरे पास आ जा, आज मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे साथ ये हादसा हो गया। तो दोस्तों इसे कहते हैं दोस्ती, जो बिना कहे बिना सुने उसकी बात समझ जाए कि दोस्त के मन में क्या चल रहा है, उसको क्या कष्ट है। जैसे सीप में मोती होता है ऐसे संभाल के रखना। दूसरा मैं आपसे कहूंगा दोस्तों कि आज के समय में नए मित्र में कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने काम के लिए दोस्ती करते हैं, तो थोड़ा सा उनसे सावधान रहना भी बहुत आवश्यक है।
1: दोस्तों हमारी जिंदगी के सफर में कई दोस्त आएंगे और बनेंगे, लेकिन समय के साथ साथ वो भी एक दिन बिछड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों याद रखिए, जिस दिन हम अपना सच्चा दोस्त ऊपर वाले को बनाएंगे, तो वो न सिर्फ हमेशा हमारे साथ रहेगा बल्कि हमारी हर मुश्किल घड़ी में वो हमारा हाथ भी थामे रहेगा और हमको सही मार्गदर्शन देकर वो हमारी मंजिल तक हमको अवश्य पहुंचाएगा। याद रखिए, आपका एक सही या गलत चुनाव बदल सकता है आपके जीवन की दिशा और दशा, इसीलिए दोस्ती सोच समझ कर करें। दोस्तों अगर आप अपने किसी दोस्त के बारे में कुछ बताना चाहते हैं या दोस्ती का कोई अनुभव सुनाना चाहते हैं तो आप हमें जरूर बताएं, और अगर आप हमारे काउंसलर से बात करना चाहते हैं तो आप हमारे काउंसलर से फोन या मैसेज के द्वारा अवश्य बात करें। 7678438471, जी हाँ ये हमारा नंबर है 7678438471। और अगर आप अपनी बात को फोन पर रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो वो भी आप हमको भेज सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और दिशा फाउंडेशन से जुड़कर लोगों को सही दिशा और मार्गदर्शन देकर उनकी जिंदगियों को संवारने में हमारा साथ देना चाहते हैं तो आप हमें आज ही मैसेज करें या हमारे काउंसलर से बात करें 7678438471 पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति, लेकर आई हूं आप सभी के लिए वेंसडे की शाम का वो खास प्रोग्राम जो डेडिकेटेड रहता है हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी को, वहां के कैंपस को, वहां के स्टूडेंट्स को, वहां की फैकल्टी को, एंड ऑब्वियसली जो यू नो द जनरल वाइब एज यू अंडरस्टैंड इट। तो हम आपको लिए चलते हैं हर बुधवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में, वहां के स्टूडेंट से हम करते हैं मुलाकात, वहां के टीचर्स से, वहां के प्रिंसिपल से, और हर बार एक नए कॉलेज से आपको करवाते हैं रूबरू, हर कॉलेज लाइफ के एक नए आयाम से करवाते हैं आपकी मुलाकात। और अब की बार हमारे कदम जहां पर आकर रुके, नाम है उस जगह का शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस फॉर वुमेन, SRCASW इन शॉर्ट। 1989 में स्टैब्लिश हुआ ये कॉलेज जो है, जैसा कि नाम से ही आप समझ गए होंगे, इट इज अ वुमेन्स कॉलेज, और यहां पे अप्लाइड साइंसेस के अलावा मैनेजमेंट की पढ़ाई भी होती है, साइकोलॉजी की पढ़ाई भी होती है, और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी पढ़ाई यहां पर जो है की जाती है। और इस कॉलेज जी हमारी सहयोगी माला नेगी, और उन्होंने की वहां के सभी लोगों से बातचीत, और उन्हीं से हम करवा रहे हैं आपकी मुलाकात हमारे आज के इस प्रोग्राम में अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन। सुन रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर। और चलिए कॉलेज के बारे में और ज्यादा जानकारी जो है ना वो हम ले लेते हैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल से, जिनसे की बातचीत हमारी सहयोगी माला नेगी ने।
2: कहते हैं जिस समाज में महिला शक्ति के विकास पर काम होता है वो समाज कभी पीछे नहीं रहता। महिलाओं का उत्थान समाज के लिए बहुत जरूरी है। शायद इसी उद्देश्य के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय ने कई सारे ऐसे कॉलेजेस की स्थापना की जहां पर महिलाओं की शिक्षा पर विशेष तौर पर बल दिया गया, और उन्हीं कई सारे कॉलेजेस में से एक कॉलेज है शहीद राजगुरु कॉलेज फॉर अप्लाइड साइंसेस, और यहां पर भी महिलाओं की शिक्षा पर विशेष तौर पर बल दिया जाता है। और आज मैं हूं इसी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर पायल मागू मैम के साथ। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। मैम सबसे पहले जानना चाहेंगे, अगर हम इस कॉलेज के बारे में बात करें तो इस कॉलेज की खास पहचान क्या है?
3: इस कॉलेज की खास पहचान ये है कि एक तो ये वुमेन्स कॉलेज है, दूसरा ये अप्लाइड साइंसेस का कॉलेज है। शायद भारतवर्ष में ऐसा कोई और कॉलेज नहीं होगा जो कि वुमेन और अप्लाइड साइंसेस का कॉलेज हो। इसके साथ में यहाँ पे मैनेजमेंट और साइकोलॉजी भी है। सेकेंडली जो विमेन यहाँ से अभी अलुमनाई की तरह ट्रेन होके गई हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हैं, दे आर एम्पावर्ड विमेन। और जो हमारे यहाँ पे आकर स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स पढ़ती हैं, तो उनको वो एक दृष्टि भी मिलती है कि वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा स्टेम के फील्ड में, मैनेजमेंट के फील्ड में, या साइकोलॉजी के फील्ड में करें। तो इसलिए ये एक तरह का अपनी तरह का यूनिक कॉलेज है जो कि विमेन कॉलेज होने के साथ साथ अप्लाइड साइंसेस का कॉलेज है।
2: अप्लाइड साइंसेस सुनने में ऐसा लगता है कि एक ऐसी फील्ड है जहां पर शायद महिलाओं का एकाधिकार नहीं है, क्योंकि अगर हम उस सोच के हिसाब से चले तो कहते हैं कि बॉयज आर मोर परफेक्ट फॉर सच कोर्सेज। क्या आपको कभी ऐसा लगा?
3: नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा कभी भी। गर्ल्स आर इक्वली परफेक्ट, गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। मैंने इसीलिए कहा कि गर्ल्स का कॉलेज और अप्लाइड साइंसेस का कॉलेज है, क्योंकि जब कोएड कॉलेज होता है तो कई बार ऐसा होता है कि बॉयज़ ओवर एंथुजियाज्म में और गर्ल्स थोड़ी शाइनेस में, जो इन मशीन्स के ऊपर काम करना चाहिए, जिस तरह से एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, वो थोड़ी पीछे रह जाती हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है कि कोई उनके पास चॉइस ही नहीं है, वो खुद ही सब मशीन्स को हैंडल करेंगी, खुद ही सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करेंगी, प्रैक्टिकल्स खुद करेंगी, अपने आप को परफेक्ट बनाएंगी। तो जब यहाँ से एक लड़की निकलती है तो उसके पास बहुत अच्छी हैंड्स ऑन स्किल होती है अप्लाइड साइंसेस के फील्ड में, जिसकी वजह से वो यूनिक है।
2: जी मैम, जानना चाहेंगे अब क्योंकि नया सेशन शुरू हो गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, नए बच्चों के साथ नया जोश, नया उत्साह, तो स्टूडेंट्स के लिए, नए बच्चों के हिसाब से किस तरह के चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा केयरफुल रहेंगे और कॉन्शियस भी रहेंगे, एंड एट द सेम टाइम आप अपने कॉलेज के टीचिंग स्टाफ से भी क्या एक्सपेक्ट करेंगे?
3: बिल्कुल, जो अभी नया सेशन शुरू हुआ है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं ये एक्सपेक्ट करूँगी कि वो रेगुलर अपना कॉलेज अटेंड करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जैसे ही स्कूल से कॉलेज में निकलते हैं तो एक बहुत फ्रीडम का एनवायरनमेंट रहता है, तो उस फ्रीडम को वो बिल्कुल एंजॉय करें, उस फ्रीडम को यूज़ भी करें, लेकिन उसके साथ साथ एक जो सिंसियरिटी आपकी अपनी तरफ है, अपनी पढ़ाई की तरफ है, अपनी क्लासेस की तरफ है, वो बहुत अच्छे से उसको समझें। और इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं करिकुलम की, डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, NSS, NCC, तरह तरह की स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ और उसके साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़, तो उन सब में वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये 3 या 4 साल जितना समय भी वो कॉलेज में रहेंगे तो इनकी एक पर्सनालिटी डिफरेंट हो जाएगी। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक बार फ्रीडम मिली तो वो फिर कॉलेज में भी क्लासेस में जाना बंद करना है या और चीज़ों में इन्वॉल्व होना है। तो मैं चाहती हूँ कि वो बाकी चीज़ों में जो उनको कहीं ना कहीं मिसगाइड भी करेंगी उन

0: में इन्वॉल्व ना हो। एक और चीज़ जो मैं अपने स्टूडेंट से चाहूँगी कि वो हमेशा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, भले ही वो फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो। तो उनके लिए हमारे कॉलेज में अरेंजमेंट भी है, वी हैव अ काउंसलर जो कि ट्रेंड काउंसलर हैं, अगर कभी भी स्ट्रेस की कंडीशन लगती है तो उनके पास जाना चाहिए। हमारे पास मेडिकल रूम है जिसमें एक प्रोफेशनल नर्स एंड डॉक्टर हैं, तो आपको अगर कोई फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम लगती है तो आपके उनके पास जाना चाहिए, बिकॉज वी वॉन्ट अ मेंटली साउंड एंड हेल्दी फ्यूचर जेनरेशन फॉर इंडियाज़ डेवलपमेंट।
1: बिल्कुल सही कहा मैम आपने, क्योंकि जब कहते हैं ना कि अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आपका हर एक कदम पॉजिटिव होता है, और वो पॉजिटिविटी के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप न सिर्फ अपने इर्द गिर्द बल्कि पूरे देश में पॉजिटिविटी फैलाते हैं। अब क्योंकि एडमिशन का टाइम है, रेगुलर कॉलेज के एडमिशन्स तो ऑलमोस्ट ओवर हैं, और अब जो है वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की ही अगर हम बात करें, जो जिनको नहीं एडमिशन मिला वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की तरफ भी मूव करेंगे, तो उन स्टूडेंट्स को जो कई बार डिसअपॉइंट भी होते हैं और सोचते हैं कि हमारा रेगुलर कॉलेज में नहीं हुआ, अब हमें ओपन कॉलेज से जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो वो जो डिस्करेज होते हैं उसको लेकर मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर उनका मार्गदर्शन करें, क्योंकि बीइंग डायरेक्टर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, अगर आप कुछ कहेंगे तो वो उनको डायरेक्टली कनेक्ट होगा।
0: डेफिनेटली, जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, अगर आपको रेगुलर में एडमिशन मिलता है, रेगुलर में पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, आप ये मान के चलें उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि अबव 90-95% होते हैं, उनको किसी भी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन वो ऑप्ट करते हैं।
1: इज इट?
0: यस, वो ऑप्ट करते हैं कि हमें स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में पढ़ना है, क्योंकि उनको उसके साथ साथ या तो कोई और कोर्स करना है, CA करना है, या कोई और स्किल्स करनी है, या फिर अपने आप को किसी बिजनेस में, किसी जॉब में उसमें लेकर जाना है। और केवल 90% ही नहीं, उससे जो हमारे कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि वो जाकर काम कर पाएं, जो जाकर रेगुलर कॉलेज में पढ़ पाएं, वो भी वहाँ पर आकर बहुत फ्लाइंग कलर्स में जब उनका रिजल्ट आता है तो हमें पता चलता है कि 5 या 6 हमारे ही स्टूडेंट स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। रेगुलर ने उसमें टॉप नहीं किया, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं, सिविल सर्वेंट बनते भी हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो CA करते हैं, CA बनते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही प्रोफेसर बन के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से उन्होंने काम किया और प्रोफेसर बन के अभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं
1: जी।
0: तो मैं केवल यहाँ पे इतना कहना चाहूँगी कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रेगुलर कॉलेज एंड स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक वैल्यू। और इसके साथ साथ लेकिन एक चीज़ और भी है, जो स्टूडेंट स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या ओपन लर्निंग से खुद पढ़कर, थोड़ा बहुत अपने टीचर्स की मेंटरशिप लेकर, सेल्फ लर्निंग मटेरियल पढ़कर फ्लाइंग कलर्स में आता है, तो उसकी जो पर्सनालिटी है, उसकी जो ग्रिट है, उसकी जो विल पावर है, वो कहीं किसी से भी मैच नहीं कर सकती।
1: True.
0: वो बहुत ज़्यादा है
1: जी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम इतनी बेहतरीन इंटरेक्शन के लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का खजाना यहाँ हमारे सामने खोलने के लिए। एंड सबसे बड़ी बात, FM रेनबो की इस जर्नी में, इस टीम में बहुत बहुत स्वागत है आपके कॉलेज का भी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन।
0: थैंक यू, थैंक यू।
2: भाई मल्टीटास्किंग की बात करें तो मल्टीटास्किंग स्टार्ट्स राइट एट द टॉप एट शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन। अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन सुन रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर। शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज पहुंची हमारी सहयोगी माला नेगी, वहां पे की उन्होंने वहां के लोगों से बातचीत। मैं आती हूं वापस एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो, क्योंकि ये जर्नी अभी कंटिन्यू है।
3: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

0: रखना।
1: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: NCRPEE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: को साथ रखना।
1: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।

0: 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर सुन रहे हैं आप प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का ये स्पेशल एडिशन। हमारी सहयोगी माला नेगी पहुंची शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन और वहां पे की उन्होंने एक बहुत ही वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स से बातचीत। इसमें उन्होंने कवर किए ना केवल बहुत सारी सोसाइटीज बल्कि अलग अलग इंटरेस्ट जो थे स्टूडेंट्स के उनसे भी उन्होंने बातचीत की है, साथ ही स्टूडेंट काउंसिल के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी कवर किया है। और ये सारी बातचीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूं बिल्कुल अभी। प्रोग्राम चल रहा है अल्फाजन, सुन रहे हैं से आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर।
1: हाय, तो अभी मैं हूँ शहीद राजगुरु कॉलेज में और मेरे साथ है यहाँ की थिएटर सोसाइटी मुखौटा की खूबसूरत एक्ट्रेस। तो अब आप लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत ही फिल्मी सवाल है, अगर आपकी कॉलेज लाइफ एक फिल्म होती तो इस फिल्म का नाम क्या होता?
2: माइसेल्फ आस्था, और मेरे कॉलेज लाइफ पर बेस फिल्म होगी कभी खुशी कभी गम। कभी कभी गम आ जाता है जब बहुत एग्जाम और बहुत असाइनमेंट्स होते हैं, और खुशी जब आती है जब मैं अपने मुखौटा में रहती हूँ और ऐसे पढ़ाई और बाकी फन करती हूँ तो खुशी खुशी आता है।
3: माय नेम इज भाविका एंड अगर मेरी कॉलेज लाइफ एक मूवी होती तो वो फुकरे होती।
4: हाय, आई एम खुशी एंड अगर मेरी कॉलेज लाइफ एक मूवी होती तो वो यारियाँ होती, क्योंकि जब मैं कॉलेज में आई तो एकदम नई थी और सब लोग नए थे, बट कॉलेज में आने के बाद जब मैंने सोसाइटी ज्वाइन की तो मेरे को दोस्त मिले और हम लोग लाइक हर चीज़ में साथ में रहते हैं और खुशी में दुख में सब में साथ में रहते हैं, और मेरे को जो दोस्त मिले हैं मुझे पता है कि हम लोग बहुत टाइम तक साथ रहने वाले हैं।
5: हाय, माइसेल्फ कृतिका एंड अगर मैं अपनी कॉलेज लाइफ को मूवी में डिस्क्राइब करूँगी तो आई वुड से छिछोरे, बिकॉज इसने मुझे बहुत सारी लर्निंग्स दी है एंड एज वेल एज फ्रेंड्स के बारे में बताया है, क्योंकि मुझे कॉलेज में बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं एंड हमने बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करी, बहुत चीज़ें सीखी भी है एंड आगे भी ऐसे ही होगा।
6: हाय, माई सेल्फ तन्वी मोंगिया एंड मेरी अगर कोई लाइक कॉलेज लाइफ पे बेस्ड मूवी होती वो होती जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बिकॉज आई कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस ओवर थिंग्स, बट मेरे फ्रेंड्स आर देयर टू हील मी एंड टू लाइक मेक मी हैप्पी।
7: माई नेम इज सुशांति संसार एंड मूवी जो मेरी कॉलेज लाइफ पे बेस्ड होती वुड बी कल हो ना हो, बिकॉज वी हैव टू लिव द डे जैसे है।
1: थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली इंटरेक्शन। इसी तरह से अपने खूबसूरत प्लेस के जरिए लोगों को पॉजिटिव संदेश देते रहिए।
8: हाय एवरीवन, मेरा नाम मंशा है एंड अभी हम एलवायरा सोसाइटी के बारे में बात करेंगे जो हमारे कॉलेज की आर्ट सोसाइटी है।
1: ओके, सो ओवर टू यू। सो वी हैव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एलवायरा सोसाइटी विद अस।
9: हाय मैम, माय नेम इज सिमरप्रीत कौर एंड आई रिसेंटली बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एलवायरा।
1: ओके,
9: एलवायरा इज द फाइन आर्ट सोसाइटी ऑफ आवर कॉलेज। हम लोग पूरे साल में आर्ट के रिलेटेड बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, वर्कशॉप्स एंड एग्जीबिशंस करवाते हैं। हमने मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स जीते भी हैं डिफरेंट कॉलेजेस में जा जाके। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस लाइक हंसराज, रामजस, मोतीलाल, वी हैव वन देयर एंड ऑल्सो हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत इंटरेक्टिव सेशंस करवाते रहते हैं।
1: ओके, ये आपका जो जिस तरह का डिस्प्ले आप लोगों ने लगाया है खास तौर पर हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत है एंड आई मस्ट अप्रिशिएट, क्योंकि जिस तरह की खूबसूरती है इस कलाकारी में, इन चित्रों में, ये देख के ही लगता है कि बहुत मेहनत के साथ और बहुत दिल लगा के इनको बनाया गया है। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल योर मेंबर्स जिनका यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। हाय, तो हमारे साथ अब कौन है?
10: मैं हूँ वर्षा, मैं इस सोसाइटी में ट्रेजरर हूँ।
1: ओके,
10: ज्योमेट्रिक पेंटिंग्स थोड़ी ज़्यादा पसंद है तो मैं इस तरह का मैंने ट्राई किया है ज्योमेट्रिक पेंटिंग। इट्स यूजेस 3 प्राइमरी कलर्स मेनली रेड, येलो एंड ब्लू, तो जो इस पेंटिंग को और ज़्यादा ब्राइट बनाती है।
1: बहुत ही ब्राइट है, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल।
11: आई एम नाव्या, द सेक्रेटरी ऑफ एनवायरनमेंट, कॉल्ड मोज़ेक पेंटिंग। इट्स मेड फ्रॉम कटिंग पीसेस ऑफ पेपर एंड ज्वाइनिंग देम टुगेदर।
1: ओके,
11: मैंने अपने आप से सारे पीसेस कट करे हैं एंड देन पेंट किया है एंड ये पूरी,
1: इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हाय, तो अभी मैं हूँ शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन में और मेरे साथ है यहाँ की स्टूडेंट्स काउंसिल की मेंबर्स, और इनसे बेहतर अपने कॉलेज को और कौन जान सकता है। तो आइए जानते हैं इनका कॉलेज कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाकी कॉलेजेस से ज्यादा अच्छा और काफी डिफरेंट है।
12: हाय एवरीवन, आई एम एंजल, आई एम फ्रॉम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, करंटली पर्सुइंग बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, आई एम फ्रॉम सेकंड ईयर। सो द वन यूनिक थिंग दैट यू नो मेक्स अस यूनिक फ्रॉम अदर ड्यू कॉलेजेस वुड बी आवर लाइब्रेरी। मेरी लाइब्रेरी में RFID एक है जो बीप करता है अगर हमने कोई बुक इशू नहीं कराई एंड हम उसको लेके अगर बाहर लाइब्रेरी से होते हैं तो देन वो बीप करता है, एंड ये किसी भी और ड्यू कॉलेज में नहीं है, वो सिर्फ हमारे कॉलेज में है।
13: हाय, मेरा नाम मंशा है एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से हूँ एंड करंटली मैं सेकेंड ईयर में हूँ एंड हमारे पूरे कॉलेज में देर आर 14 डिपार्टमेंट्स एंड हर डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंटल फेस्ट ऑर्गेनाइज करता है विच आर वेरी फन एंड यूनिक. उसमें बहुत सारे इंटरैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग इवेंट्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फुटफॉल होता है, बच्चे बहुत पार्टिसिपेशन भी करते हैं एंड देर आर सो मेनी सोसाइटीज़ एंड क्लब्स जो है. एंड वन ऑफ द मेजर सोसाइटी ऑफ आर कॉलेज इज़ इनैक्टस एंड their vision is to like empower the transgender community and underprivileged women and students.
14: Hi, I'm Manya Kukreja, a second year student from psychology department. हमारे college में हम सब चीज़ों को बहुत सपोर्ट, जैसे एक women's college है तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा unity, बहुत ज़्यादा bond दिखने को मिल जाएगी कि सारी लड़कियाँ एक दूसरे को support करती हैं आगे बढ़ने के लिए. In fact, बहुत एक safe और बहुत एक society हमने जो बना रखी है वो इतनी close है और इतनी safe है कि किसी को लगता ही नहीं कि कोई अगर किसी और state से आया है तो है. हमारे seniors, हमारे council members इतने अच्छे हैं. बी फर्स्ट ईयर्स हमने पूरे टेन्योर देखा था, उन्होंने हमें इतना होम लाइक फील कराया, हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं और थर्ड ईयर होके हमें बहुत प्यार से ट्रीट कर रहे थे. इनफैक्ट हमारा कॉलेज हमारी मेंटल, हर स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखता है. तो हमारे कॉलेज में एक काउंसलर भी है, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी, जैसे अगर कोई इंटरस्टेट स्टूडेंट है वो इधर आया, उसको कोई दिक्कत हो रही है अडाप्ट करने में, तो वो उससे बात कर सकते हैं काउंसलर से. तो एक मेंटल हेल्थ को जो इम्पोर्टेंस दी जा रही है हमारी कॉलेज में वो बहुत कम कॉलेजेस में दी जाती है एंड हमारा कॉलेज बहुत अवेयर है इस बारे में.
15: हेलो, मेरा नाम अंशिका है, मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ. एंड एक यूनिक चीज़ जो मैं अपने कॉलेज के बारे में बोलना चाहूँगी वो है ऑर्गेनिक चीज़ें. तो अभी हम जैसे आपको टूर भी देंगे, हमारे कॉलेज में एक मशरूम कल्टिवेशन सेंटर है एंड ग्रीनरी इज समथिंग जो हर एक कैंपस में आप एटलीस्ट आज के टाइम पे आप एक्सपेक्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि हमारा कैंपस हरा भरा रहे. हमने कॉलेज में बहुत सारे प्लांट्स तो आप देख ही सकते हैं, मशरूम्स जैसे कि बटन मशरूम्स, अम्ब्रेला मशरूम्स, काफ़ी टाइप्स के मशरूम हैं एंड हमारे कॉलेज में एनवायरमेंट राइड्स भी हुई हैं. सारी फैकल्टीज, हमारी प्रिंसिपल मैम स्पेशली शी हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट एंड हम लोग जब भी कोई स्टॉल लगाते हैं थ्रू इनैक्टर्स और थ्रू एनी सोसाइटी, हम लोगों ने वो मशरूम्स हमारे स्टूडेंट्स को यू नो प्रोडक्ट्स सेल किए हैं. एंड ऑर्गेनिक वर्ड बोलना चाहूँगी मैं, यहाँ कैंपस में आके ऑर्गेनिक बहुत फील होता है एंड इट्स सच अ वंडरफुल थिंग.
16: हेलो एवरीवन, मैं सोफिया, अ मैनेजमेंट स्टूडेंट फ्रॉम सेकंड ईयर. ऑलरेडी सबने इतनी पढ़ाई कर दी है हमारे कॉलेज की, बट आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग. लाइक हमारा जो फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, वी हैव अ मशीन दैट इज टेक्सचर एनालाइजिंग मशीन इन फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एंड दैट मशीन रियली हेल्प द डिपार्टमेंट एंड आई डोंट थिंक वो किसी भी और डी यू कॉलेज के पास है. एंड द कॉलेज रियली वर्क्स ऑन द वेलबींग ऑफ द लाइक एनवायरमेंट लाइक एवरीबडी सेड.
17: थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली इंटरेक्शन, मजा आया आप लोगों के बारे में जान के, आपके कॉलेज के बारे में जान के. थैंक यू सो मच.
16: थैंक यू मैम.
17: हाय, तो अभी मैं हूँ शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज में और अभी मेरे साथ हैं इस कॉलेज की बहुत इंपॉर्टेंट मेम्बर्स, स्टूडेंट्स, आप जो नाम जो डेजिग्नेशन देना चाहें, लेकिन इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉलेज के कितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन हो, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, उसमें इनका बहुत ही की रोल होता है. तो आइए सबसे पहले इनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं.
18: हाय, आई एम रिधमा दीवान, आई एम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल हियर.
19: हाय, मैं पलक सैनी, आई एम अ जॉइंट ट्रेजरर ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल एंड आई एम फ्रॉम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट थर्ड ईयर.
20: ओके.
21: हाय, आई एम कनिष्का, आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, आई एम जॉइंट सेक्रेटरी इन द स्टूडेंट काउंसिल.
22: Hi, my name is Mayushi and I am in the third year of BSc Honours Biomedical Science and I am the Joint Cultural Secretary in Student Council.
17: All right. So, अब मैं ये देखूंगी कि हमारा rapid fire round आप लोग कितना अच्छे से manage करते हैं. So, we'll start from you only. कुछ सवाल rapid fire, बहुत ही short and crisp answers जो हैं वो आपको देने हैं. So, are you ready?
22: Yes, ma'am.
17: Okay. चाय या कॉफी?
22: कॉफी.
17: Okay. प्यार या पैसा?
21: मैम दोनों.
17: दोनों? अच्छा, ये क्या बात हुई, बट यू हैव टू चूज वन.
21: पैसा.
17: अटेंडेंस या फ्रीडम?
21: फ्रीडम. नहीं, बट मेरे को अटेंडेंस चाहिए क्योंकि अटेंडेंस लूंगी तो फ्रीडम मिल जाएगी ना.
17: अच्छा,
21: अटेंडेंस लग जाएगी.
17: फ्रीडम टू डिसाइड वेदर टू अटेंड कॉलेज और नॉट?
21: अटेंडेंस.
17: ओके, शी इज वेरी फर्म, मतलब अटेंडेंस मतलब अटेंडेंस, नो फ्रीडम. ऑलराइट, सोशल मीडिया या दोस्तों की चौपाल?
21: दोस्तों की चौपाल.
17: मॉर्निंग या नाइट स्टडी?
21: नाइट स्टडी. मॉर्निंग में काउंसिल में रहते हैं ना.
17: ऑलराइट. दिल्ली या गोवा?
21: गोवा.
17: हॉस्टल या घर?
0: घर.
17: मूवी या डाइन आउट?
21: मूवी.
17: ओके. एआई या ह्यूमन इंटेलिजेंस?
21: एआई.
17: एक करोड़ अभी या ड्रीम जॉब 5 साल के बाद?
21: ड्रीम जॉब 5 साल के बाद.
17: ये है आज की लेटेस्ट जेनरेशन

0: जो बहुत प्रैक्टिकल है, जिनको पता है कि 5 साल बाद इन्हें 5 करोड़ से कई ज़्यादा मिलने वाले हैं। बहुत मज़ा आया और थैंक यू सो मच इतना सब कुछ अरेंज करने के लिए आज की इस इंटरेक्शन।
1: थैंक यू मैम।
2: थैंक यू।
3: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जन कैंपस कॉलिंग, जहां पर हम हर हफ्ते आपको कैंपस के एक नए कोने से रूबरू कराते हैं, आपके लिए बहुत सारी वहां की बातें समेट कर लाते हैं। हमारी सहयोगी माला नेगी पहुंची है शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर विमेन, और वहां पे उन्होंने ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कैच किया है, यहां के स्टूडेंट से बातचीत की, यहां के प्रिंसिपल से बातचीत की। और हां, एक्टिविटी की जब मैं बात कर रही हूं तो अगला जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, जिसमें आजकल की हमारी ये जो जेन जी है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है उसको उसमें पार्टिसिपेट भी कर रही है, एंड इट्स वन ऑफ द हॉटेस्ट एक्टिविटीज़ राइट नाउ, और इसको कहते हैं भजन क्लबिंग जी। तो माला ने वहाँ पर पहुँच के वहाँ की इस एक्टिविटी को कैच किया, और सिर्फ कैच नहीं किया, हम सबके लिए उसको जो है ना पार्सल भी किया है हम सभी के लिए। तो आइए चलते हैं एक बार फिर से शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन, और जानते हैं कि वहाँ पर भजन क्लबिंग में माला ने क्या मज़े किए।
0: हाय, तो अभी मैं हूँ शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज में खूबसूरत लड़कियों के बीच में। ये खूबसूरत ही नहीं है, बहुत बेहतरीन सिंगर्स भी हैं, और इंडियन और वेस्टर्न म्यूजिक का अद्भुत अमलगमेशन जो आपको आज सुनने को मिलेगा वो शायद आप कभी ना भूल पाओ। तो सबसे पहले इनकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस को इंजॉय करते हैं और उसके बाद इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं।

0: हेलो गाइज, माई नेम इज़ वंशिका पाल एंड मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ. मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ.
1: हेलो, आई एम हर्षिता. आई एम ऑल्सो फ्रॉम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट सेकेंड ईयर.
2: हाई, माई नेम इज़ अदिति एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट सेकेंड ईयर.
3: हेलो ऑल, आई एम जारुल, सेकेंड ईयर.
4: हाई एवरीबडी, आई एम गौरी कलोया. आई एम द प्रेजिडेंट ऑफ इलायरा WMS. आई हैव बीन पार्ट ऑफ द सोसाइटी सिंस द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज. आई एम करेंटली इन माई फोर्थ ईयर परसुइंग BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स एंड आई हैव बीन हैविंग अ ग्रेट टाइम.
5: Hi, I'm Ishita Sophia and I'm a student of Microbiology Department.
6: And you are the lovely guitarist. Beauty with music. Okay.
7: Hi everyone, I'm Anvesha and I'm from second year Microbiology Honours.
8: Hi everybody, I'm Diksha and I'm the treasurer of Philara WMS Society and I'm pursuing BSc Physics Honours right now.
6: मतलब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जब तुम अपने भारी भरकम ये साइंस वाले कोर्सेज बताते हो ना, तो मेरे को थोड़ा डर सा लगता है. मतलब म्यूजिक तक ठीक है, उसके बाद फिजिक्स ऑनर्स, ये माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑल. बट इट वॉज लवली टू बी अ पार्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस. और यहाँ बीच में बैठ के कुछ ना करना, तालियां बजाना और सिर्फ सुनना भी अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस लवली एक्सपीरियंस.
9: अमेजिंग है ना, इतनी सारे एकेडमिक अचीवमेंट्स और उसके साथ साथ इतने सारे इंटरेस्ट, इतनी सारी सोसाइटीज, इतना सब कुछ कर लेना. जी हाँ, बिल्कुल यही है हमारी नई जनरेशन की पहचान. और अभी आपने सुना भजन क्लबिंग. ऑब्वियसली जो शब्द हैं वो पुराने हैं, लेकिन साज, आवाज़ और अंदाज ये नए हो चुके हैं. गिटार ने जगह ले ली है ढोल और मंजीरे की, और यही करती है ना हर जनरेशन अपने समय में यही करना चाहती है. वो नई नई परिभाषाएँ देती है चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को, वो नई नए दिशाएँ जो है वो खोजती है, नए मान तलाशती है, नई दुनिया का निर्माण भी करती है और नए आयाम खोज कर निकाल लेती है. ये बाउंड्रीज पुश करते हैं लगातार, ना केवल एकेडमिक्स की, ना केवल वोकेशंस की, बल्कि उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटीज की, बिलीफ की और इन जनरल सभी चीज़ों की. तो यही है हमारी उस नई जनरेशन को डेडिकेटेड हमारे प्रोग्राम, और ख़ासतौर पर कैंपस की एनर्जी जो इनके पास होती है उसका कोई मुकाबला नहीं होता है. यही समेट कर लाते हैं हम हर हफ्ते आप सभी के लिए हमारे इस कार्यक्रम के जरिए. नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का स्पेशल एडिशन जो अल्फाजन का रहता है, यह आपके लिए लेकर आता है कैंपस लाइफ को समेट कर. फिलहाल आज की मुलाकात बस यहीं तक. आज हमारी सहयोगी माला नेगी ने सर की, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस फॉर वुमेन की. आज का एपिसोड यहीं तक, अगली बार फिर हाजिर होंगे आपके लिए कैंपस का एक और नया कोना खोज के. फिलहाल स्वाति को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो.

नमस्कार, सुनिए अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। राज्यसभा ने सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की संख्या, संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और वापसी के लिए चर्चा शुरू कर दी है। सरकार ने कहा है कि वह देश भर में स्थित 579 मूल्य निगरानी केंद्रों द्वारा प्रस्तुत 41 खाद्य पदार्थों के दैनिक मूल्यों की निगरानी करती है। लोकसभा में आज लिखित उत्तर देते हुए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर सरकार ने पश्चिम एशिया की स्थिति के प्रभाव की निगरानी और आकलन करने तथा आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए 7 सशक्त समूहों का गठन किया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने आज युवाओं से नशा मुक्त युवा अभियान में सक्रियता से भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना पहले नशा मुक्त राष्ट्र का निर्माण करने के बाद ही

साकार हो सकता है। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलीशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में पहुंच गई हैं। ये थे अब तक के हिंदी में मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: अपनी वाणी में आपसे कुछ कहना था, दिल की एक बात आज आपके सामने रखनी थी। रख दूं, अब एक्चुअली कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत समय से सोच रही हूं पर आज कह ही देती हूं कि जिंदगी जब भी तेरी बज्म में लाती है हमें, प्यारे श्रोताओं, जिंदगी जब भी तेरी बज्म में लाती है हमें, ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है हमें। हाँ हाँ, जानती हूँ उमराव शाह का गाना है, उमराव जान का गाना है, लेकिन इसके ये जो शब्द है ना, इस समय बिल्कुल ठीक और सटीक बैठते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी इस बज्म, इस मुलाकात को। कार्यक्रम सिटी लाइट्स, आकाशवाणी एफएम रेनबो, आपके साथ मैं मिस ब्राइट, नाम है मीना जैन और मैं हूँ आपकी सबसे बड़ी फैन।

एक बात आपसे और कहनी है, वो भी कह दूं। दिल क्यों ये मेरा न जाने यहाँ और वहाँ इधर और उधर हो रहा है, शायद इन सब की वजह से मैं समझ नहीं पा रही कि कहाँ जाऊँ। देखिए, शाम को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 6:30 बजे लेक्चर रूम में, जो कि एनेक्सी बिल्डिंग में है, एक फिल्म दिखाई जाने वाली है जिसका नाम है 2 Poets and a River। इतना ही नहीं, उसके बाद डिस्कशन भी होगा फिल्म मेकर के साथ। वैसे आपको बता दूं, इस फिल्म को ICTM का बेस्ट डॉक्यूमेंट्री प्राइज मिला था पोर्चुगल में 2022 में। ये तो एक हुआ। दूसरा, इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक बहुत अच्छी एग्जीबिशन लगी है, बनारस घाट इन माई आईज। ये एक पेंटिंग एग्जीबिशन है और ये चल रही है कन्वेंशन सेंटर 4 में। साथ ही एक एग्जीबिशन है विजुअल आर्ट्स गैलरी में अव्य, ये एक ग्रुप पेंटिंग और स्कल्पचर एग्जीबिशन है। अब अगर मैं बात करूं वापस IIC की, तो वहां पर अंदरूनी सरहदें यानी कि इनर फ्रंटियर्स एग्जीबिशन है 13 अगस्त तक, सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक आर्ट गैलरी में IIC एनेक्स में देख सकते हैं। और तो और, श्रीधरनी गैलरी में वेरिएबल रजिस्टर्स, ये एक एग्जीबिशन है जो कि 9 अगस्त तक चलने वाली है। जानते हैं, प्रिंट मेकिंग इन मॉडर्न इंडिया 1930 से लेकर 1980 तक, प्रिंट में जो भी कमाल कमाल के एकदम अद्भुत काम हुए ना, उसकी झलक यहाँ दिखाई जाएगी। इसको देखने का समय वही 11 बजे से 8 बजे तक। अब बताइए, समझ गए ना आप मेरा दिल यहाँ से वहाँ क्यों हो रहा है, समझ नहीं पा रही कि कहाँ जाऊँ। अगर आपको कुछ समझ आए तो बता दीजिएगा।

मौसम अब पतंगों का है, नभ में रास पतंगों का है, इंद्रधनुष के रंगों का है, मौसम नई उमंगों का है। दोस्तों, जैसे ही त्योहार का मौसम आता है, बस वहीं हमें आसमान में तैरती उड़ती फिरती नृत्य करती पतंगे नजर आती है, और कई बार तो इतना सुहाना लगता है कि कहीं रास्ते में भी हो तो लगता है 2 मिनट रुक के जरा ऊपर देख लें, और उन्हें देख कर न जाने अचानक ही अपने आप ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन दोस्तों, आप सबको अलर्ट करना चाहती हूँ मैं, उन पतंगों के साथ एक ऐसा धागा जुड़ा है, एक ऐसा माझा जुड़ा है कि अगर ध्यान नहीं दिया आपने, प्रोहिबिटेड जो कि बिल्कुल अलाउड ही नहीं है, वो माझे का इस्तेमाल किया तो तकलीफ देह दर्दनाक अतिशोक्ति नहीं होगी, अगर कहूँ जानलेवा भी हो सकता है। जी, वो माझा कैसा है? नायलॉन और मेटालिक पाउडर से बनाया गया है। नायलॉन पर कांच या फिर लोहे का चूरा चढ़ाकर उसे धारदार बना दिया है। ये धार बिल्कुल ब्लेड जैसी है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर होने की वजह से करंट का भी खतरा रहता है, और इन सब का सबसे ज्यादा खतरा है हमारे टू व्हीलर्स ट्रैवलर।

का, क्योंकि हेलमेट पे लगकर ये फिसल कर सीधा गर्दन पर आता है। पतंग का तो पता नहीं, लेकिन गर्दन कटने या बहुत गहरा जख्म होने के चांसेस इसमें हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है, जितने भी टू व्हीलर्स हैं, अगर उन्हें पता है कि उनके एरिया में या जो जहां भी ट्रैवल कर रहे हैं वहां पतंगे आसमान पर छाने लगी हैं, तो मोटा गमछा या कपड़ा गर्दन पे बांध कर ही ट्रैवल करें। दूसरी बात, जितने भी पतंग उड़ाने वाले हमारे दोस्त हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि माझा खरीदते वक्त ध्यान दे कि आप कौन सा वाला माझा खरीद रहे हैं, कहीं वो ऐसा जानलेवा माझा तो नहीं है। अगर आपको पता चले कि कहीं ऐसा हो रहा है तो तुरंत जो भी इसकी एजेंसीज हैं या थाना वहाँ जाके आप कंप्लेन करें। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है, जानते हैं, दुकानदारों के साथ बैठक कर रही है, उन्हें समझा रही है कि ये माझा लेने से क्या क्या हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, ये माझा प्रतिबंधित है, जी हाँ, प्रोहिबिटेड है। उनको ये भी बता रही है कि अगर पकड़े गए तो क्या क्या कानून कार्रवाई की जा सकती है, और बच्चों को जागरूक करने के लिए पतंग कटेगी तभी तो लूटोगे नाम से अभियान भी शुरू किया गया है। तो दोस्तों, हमारा फर्ज है कि हम अपनों का ध्यान रखें, और उसके लिए अलर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी अलर्ट रहिएगा, आपके आसपास कोई भी अगर आपको ऐसा माझा इस्तेमाल करते हुए मिले तो आपको पता है कि क्या करना है।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

उफ उफ उफ जी दोस्तों, रेलगाड़ी का सफर किसे अच्छा नहीं लगता। कितना मजा आता है ना, हिलते डुलते वहीं अपने उसी कंपार्टमेंट में, सब कितने कई अनजान लोग हैं उनके साथ दोस्ती हो जाती है, बातचीत करते करते, खाना शेयर करते करते यूं ही समय बीत जाता है। और तो और, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आजकल हर जगह वो पट्टी लगी होती है जिस पे लिखा होता है कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप इस नंबर पर, इस हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो हमारे कुछ साथियों ने जरा मजे लेने के लिए 1005 ऐसी शिकायतें दर्ज की जो केवल 5 मोबाइल नंबरों से की गई हैं। जी हाँ, शिकायतें तो दर्ज हुई लेकिन ये बच्चे या ये लोग ये भूल गए कि साथ में इनके फोन नंबर्स भी रजिस्टर हो गए हैं। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों, एक ही मोबाइल नंबर से डिफरेंट ट्रेन्स, डिफरेंट डेट्स पर शिकायत दर्ज हुई है लेकिन एक्चुअल में और फैक्चुअल कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। यानी कि जिस डेट पे उन्होंने पर्टिकुलर ट्रेन की शिकायत की, उस दिन वो ट्रेन जाती ही नहीं है या वो चलती ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें सामने आई हैं। ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये किसके लिए? ये मजे लेने के लिए क्या दोस्तों? नहीं ना, हमारे और आपकी सहूलतों के लिए। और हमारे कुछ दोस्तों ने क्या किया? एनीवेज, अब तो सब फंसेंगे क्योंकि एक ही तरह की शिकायत अलग अलग ट्रेन्स, अलग अलग डेट्स पर बार बार आई है और 1005 तो वो हैं जिस पर अभी काम किया गया है, न जाने और कितने। पर अब जानते हैं अब क्या हो रहा है, अब इस मामले की जांच शुरू हो गई है और तो और अब इस पर सख्त कार्रवाई करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। तो जब भी आपको ये मिले ना कि शिकायत इस हेल्पलाइन पर करनी है, सोच समझ कर जो सही है वो ही कीजिएगा, अन्यथा ना कीजिएगा।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

हर बार एक सवाल मन में आता है कि ये समय कौन से जूते पहनता है जो इतनी जल्दी कट जाता है। अभी तो बज्म शुरू हुई थी और देखिए 5:36 भी हो गए और पूरे 16 सेकेंड्स भी हो गए। एनीवेज, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिटी लाइट्स, आपके साथ हूँ मैं मिस ब्राइट और मैं हूँ अपने श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन ओनली ऑन आकाशवाणी FM रेनबो।

दिल्ली में तो इस वक्त सब यही गाना गा रहे हैं, बरस जाए बादल बरस जा, क्योंकि झलक दिखा के कर गया दीवाना, मगर था कौन नहीं पहचाना। कब आए बादल कब गए पता ही नहीं चला, भाई हमारे दिल्ली के इस तरफ तो बिल्कुल बरसात नहीं हुई, हल्की सी छुटपुट सी हुई और फिर पता नहीं कहाँ चली गई, क्या ही हुआ। तो हम सब ने मिलकर मैनिफेस्ट किया है कि बरस जाए बादल। कोई ऐसा यंत्र होता ना मेरे पास तो मैं बादलों का डायरेक्शन चेंज कर देती कि भाई असम मेघालय की तरफ ना जाके थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ी वहां राहत मिले, थोड़ी हमें भी यहां राहत मिले। क्यों दोस्तों, राहत की अगर हम बात करें तो अक्सर लंबे हाईवेज या एक्सप्रेस वे पर स्पीड लिमिट्स लिखी होती है कि भाई भारी वाहन के लिए 40 और बाकी सब के लिए 60-70, और जो ड्राइवर्स होते हैं बस वो 160 की स्पीड पे लगा के गाड़ी अपनी भगाते रहते हैं। लेकिन उन्हीं हाईवेज और एक्सप्रेस वे पर अलग अलग

समय पर ट्रैफिक का अलग अलग नजारा देखने को मिलता है। कभी तो इतना जबरदस्त ट्रैफिक जाम होता है और कभी सड़कें इस तरह से खाली होती है कि 60 की भी लगता है कम है, काश 70 और 80 होती। और ऐसे ही टाइम पर हो जाते हैं फिर एक्सीडेंट्स या फिर मिलते हैं लंबे लंबे जाम। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर समय के हिसाब से अब स्पीड तय की जाएगी। रात के 12 से सुबह 7 बजे तक कार की स्पीड होगी 65 और जो भारी वाहन है उसकी होगी 50। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक कार की स्पीड लिमिट होगी 55 और भारी वाहन की होगी 45। शाम को 5 बजे से रात 12 बजे तक कार की स्पीड होगी 60 और भारी वाहन की होगी 40। और ये इसलिए किया जा रहा है दो बहुत बड़े कारणों से कि कभी भी जो वहाँ ट्रैवलर्स हैं उन्हें जाम की स्थिति को फेस ना करना पड़े एंड नेवर एवर किसी का भी एक्सीडेंट हो इन स्पीड्स की वजह से। तो इस तरह से ये एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और ये काफ़ी रिसर्च के बाद इसको अप्लाई किया जा रहा है। तो बस देखिए, अगेन करने वाले सब अपना काम कर रहे हैं, हमें इस हकीकत को पहचान कर इस तरह से बिहेव करना है कि जो एक्सपेरिमेंट्स हो वो सफल हो और हम रूल्स रेगुलेशंस के साथ चलें।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बबई। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

कार्यक्रम चल रहा है सिटी लाइट्स और आज 5 अगस्त कई वजह से काफी इम्पोर्टेंट है, पर कुछ ऐसी वजह है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसे स्वतंत्रता सेनानी और आंध्र टैगोर के नाम से प्रसिद्ध बैजवाड़ा गोपाल रेड्डी का जन्म 1907 में आज ही आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में हुआ था। उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा कई बार वो जेल भी गए। आजादी के बाद कुछ समय के लिए वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उनके नेतृत्व में शिक्षा और ग्रामीण विकास को नई गति मिली। वे एक उत्कृष्ट साहित्यकार, कवि और अनुवादक भी थे। उन्होंने तेलुगु साहित्य और संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया और फिर 9 मार्च 1997 को उनका निधन हुआ। हम याद करते हैं आज श्री गोपाला रेड्डी को। दूसरी खास बात जो आज ही के दिन हुई थी और वो ये है दोस्तों कि 5 अगस्त 1991 को भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा था जब लीला सेठ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनी। जी हाँ, वो देश के किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस थी और उन्होंने न्यायिक सेवा में महिलाओं की भागीदारी को नई पहचान दिलाई और उनके इस मुकाम को भारतीय न्यायपालिका में ऐतिहासिक उपलब्धि माना जाता है। डेफिनेटली है।

स्टूडियो में गीता आ गई हैं अपना झोला लेकर, उसमें बहुत सारे मसाले हैं क्योंकि अगला कार्यक्रम है मैसेज मसाला मिक्स। मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, गुड बाय फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट इवनिंग।

नमस्कार दोस्तों, लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसके विधेयक के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़कर 37 की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए था। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज रहा। पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने आज युवाओं से नशा मुक्त युवा अभियान में सक्रियता से भाग लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि विकसित भारत का सपना पहले नशा मुक्त राष्ट्र का निर्माण करने के बाद ही साकार हो सकता है। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू किया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में आज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की व्यापक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें पश्चिम एरिया और उससे आगे बदलती भू राजनीतिक स्थिति का आकलन किया गया। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। ये थे अब तक के एफएम रेनबो के मुख्य समाचार।

यस ऑफ कोर्स यू आर माय सोनिया. वेल टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 6:05. ये है 102.6 एफएम रेनबो. प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स. मैं हूं आपकी आरजे गीता. स्टे ट्यून्ड.

वेल, दोस्तों कहते हैं कि शुक्रिया या थैंक यू सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा एहसास है, बहुत ही खूबसूरत एहसास है। जब हम किसी को दिल से धन्यवाद कहते हैं, शुक्रिया कहते हैं, थैंक यू कहते हैं, तो सिर्फ सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान नहीं आती, बल्कि हमारे अपने मन को भी एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक सुकून मिलता है। ज़िंदगी में अक्सर हम उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, हम सभी ऐसा अक्सर हम सभी के साथ होता है, जो हमारे पास नहीं है अक्सर हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं। लेकिन अगर एक पल रुककर उन लोगों और उन बातों को ज़रा याद करें जो हमारी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एहसास होगा कि हमारे पास शुक्रिया कहने की कितनी सारी वजह हैं, कितने सारे रीजंस हैं। माँ बाप का प्यार होता है, दोस्तों का साथ होता है, अच्छी हमारी हेल्थ होती है, उसके लिए भी हमें सुबह उठकर सबसे पहले भगवान को थैंक यू कहना चाहिए कि एटलीस्ट आज का दिन हमने देखा, और एक अच्छा सा घर है, या फिर हर सुबह मिलने वाली एक नई शुरुआत, उसके लिए भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए। हर दिन हमें किसी ना किसी बात के लिए थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। तो आज जो है मैसेज मसाला मिक्स में हम बात करेंगे आज का ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। आज आपको क्या बताना है, आज आपको बताना है कि किसके लिए दिल से थैंक यू कहना चाहेंगे आज आप, और क्यों कहना चाहेंगे, आपको रीज़न भी बताना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। क्या बताना है आपको, आज आप किसके लिए दिल से थैंक यू कहना चाहेंगे एंड क्यों, रीज़न भी आपको मेरे साथ शेयर करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070।

पटियाला से नरेंद्र सोनी मेरे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं गुड इवनिंग शुभ संध्या। लिखते हैं कि आज सुबह जब मैं ऑफिस आ रहा था तो हमारी ऑफिस की बॉस हैं जो कि एक लेडी है, उन्होंने मुझसे कम से कम 3 बार थैंक यू कहा, बोले थैंक यू भाई। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आगे लिखा है कि मेरे काम से खुश होकर। आपको कितना अच्छा लगा होगा ना, और ये ज़रूरी है किसी से खुश होकर अगर आप थैंक यू बोलेंगे तो अच्छा लगेगा।

वेलकम बैक। टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माई स्टूडियो क्लॉक 6:14। वेल, लाइफ इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल व्हेन वी लर्न टू से थैंक यू, है ना। कई बार हम अपनी जिंदगी में उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, और जो हमारे पास है उन्हें हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हैप्पीनेस बिगिंस विद ग्रेटिट्यूड। एक छोटा सा थैंक यू किसी का दिन भी बना सकता है, जैसा अभी मैसेज आया था। एक और मैसेज मेरे पास आया है, लिखते हैं कि गुड इवनिंग, मेरा नाम है आरिफ रब्बानी फ्रॉम जिला हापुड़। ओके, मैं अपने दोस्त को थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे डिप्रेशन से निकालने में मेरी मदद की। दिल से शुक्रिया मेरे दोस्त, लव यू। जी, थैंक यू सो मच आपका। एंड आई थिंक आपके जो दोस्त हैं, अगर वो प्रोग्राम सुन रहे होंगे तो आपका थैंक यू उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होगा। एक और मैसेज मेरे पास आया, लिखते हैं कि गुड इवनिंग, कैसी हो गीता जी, थैंक यू सो मच। और थैंक यू, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा अपने पेरेंट्स को, और उसके बाद मैं अपने मालिक को अपनी तरफ से, उनको अपने मालिक को दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उन्हें क्या लिखा है समझ नहीं आया, उनसे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मेरी सोच सबके लिए ऐसी है, और मैं उनको थैंक यू भी बोलना चाहूँगा जो मेरी हर सांस में रोम रोम में बसे हुए हैं। थैंक यू सो मच, आपने मैसेज लिखा है, लेकिन सबसे पहले तो आपने अपना नाम नहीं लिखा, दूसरी चीज़ आप कहाँ से लिख रहे हैं। जब भी आप मैसेज करें, अपने नाम और जगह के नाम के साथ मुझे शेयर करें, तो मैं बता पाऊँगी आप कहाँ से जुड़े हैं। थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। मोहम्मद सरफराज आलम, जो कि हाट दर्शना बाजार ज़िला अररिया बिहार से जुड़े हैं मेरे साथ, हमारे प्रोग्राम के बहुत ही रेगुलर लिसनर हैं, और बहुत ही खूबसूरत ये लिखते हैं हेलो आरजे गीतू जी, गुड इवनिंग, आपको बहुत ही प्यारा सा नमस्कार मैं कहना चाहूँगी। आगे लिखते हैं, आज मैं अपने माँ बाप, गुरुजनों, पत्नी, सास ससुर, दोस्तों और सभी रिश्तेदारों को दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा। आगे लिखता है कि क्यों, आगे लिखते हैं ये, माफ़ कीजिएगा, आगे लिखते हैं कि रीज़न ये है कि मेरे माँ बाप ने मुझे जीवन, संस्कार और सही राह दी। गुरुजनों ने ज्ञान देकर मुझे आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। मेरी पत्नी हर परिस्थिति में मेरा साथ देकर मेरा हौसला बढ़ाती है। मेरे जो सास ससुर हैं, उन्होंने हमेशा मुझे जैसे बेटा जैसा स्नेह और सम्मान दिया है। मेरे दोस्तों ने मुश्किल समय में साथ निभाकर दोस्ती का असली मतलब सिखाया है। और मेरे सभी रिश्तेदारों ने अपने प्यार और आशीर्वाद और सहयोग से हमेशा मुझे मजबूत बनाया है। आप सभी का स्नेह, विश्वास और दुआएं ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सरफराज जी, बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने लिखा है।

राजेश्वर यादव लिखते हैं, केरला से, आपका शो बहुत अच्छा लगता है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। मैं अपनी वाइफ को थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरी वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूर्यकांत मेरे साथ जुड़ गए हैं वैशाली गाजियाबाद से, लिखते हैं कि मैं अपनी प्रिय पत्नी को हृदय की गहनतम गहराइयों से, वाह क्या हिंदी लिखते हैं मेरे दोस्त, गहनतम गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जीवन के प्रत्येक संघर्षपूर्ण क्षण में उनके अटूट धैर्य, निस्वार्थ समर्पण, अविचल विश्वास और स्नेह ने मुझे सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। उनके अमूल्य साथ के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। वाह वाह फैंटास्टिक मैसेज, थैंक यू सो मच सूर्यकांत जी। अमित श्रीवास्तव मोहाली से जुड़ गए हैं, लिखते हैं कि मैं आज आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ इतने अच्छे सॉन्ग से प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए। थैंक यू सो मच, ये भी एक मतलब बनता है आपका थैंक यू कहना। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है, गाने अच्छे लगते हैं, तो से थैंक यू, इट्स नॉट अ बिग डील।

वेल, जिन्होंने अभी अभी रेडियो सेट ऑन किया है, अब उनकी बारी है। आप जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन है या ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप दिल से थैंक यू कहना चाहेंगे। क्या वो आपकी माँ है जो बिना थके हर दिन आपका ख्याल रखती हैं? क्या वो पापा हैं जो आपकी हर ज़रूरत पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं? कोई दोस्त, कोई टीचर, कोई आपका लाइफ पार्टनर, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया हो, बताइएगा मुझे। मेरा नंबर है 9868107070। मैं हूँ गीता।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: वेलकम बैक। टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 6:27। प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स और मैं हूँ गीता। विकास ठाकुर सिल्लीगुड़ी वेस्ट बंगाल से लिखते हैं कि गुड इवनिंग मैम, आई वुड लाइक टू थैंक माय फादर। बिहार से वेस्ट बंगाल

पढ़ने और रहने के लिए लाने के लिए मैं अपने पापा को थैंक यू बोलना चाहूँगा, बिकॉज गांव से यहाँ ना आते तो एजुकेशन भी ना मिलती और आज मैं CISF में कांस्टेबल ना होता। वाओ, क्या बात है। सही बात है, वैसे हम हमेशा ना अपनी माँ को थैंक यू बोलते हैं, माँ को क्रेडिट ज़्यादा देते हैं, माँ को देना चाहिए। लेकिन पता है, हमारी हर छोटी बड़ी ज़रूरत पूरी करने के लिए जो इंसान चुपचाप दिन रात मेहनत करता है, वो होते हैं हमारे पापा। कई बार वो अपनी पसंद की चीज़ें भी छोड़ देते हैं, अपनी ख्वाहिशें टाल देते हैं, लेकिन बच्चों की खुशियों में कभी कोई कमी नहीं आने देते। हम अक्सर माँ का प्यार देख लेते हैं क्योंकि वो उसे खुलकर एक्सप्रेस करती है, जताती है हमारी माँ प्यार, लेकिन पापा का जो प्यार होता है ना, वो अक्सर उनकी जिम्मेदारियों और उनकी खामोशी में कहीं ना कहीं छिपा होता है। थैंक यू सो मच विकास ठाकुर जी।

वेलकम बैक। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ गए हैं, कुछ लोग नाराज भी हो गए हैं। कोई बात नहीं, मना लेंगे, नाराजगी तो चलती रहती है जिंदगी में। मैसेज आया मेरे पास मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से, लिखते हैं मैं उन लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे मुश्किल दौर से निकालने में मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। सबसे पहले अपने बड़े भाई मोहम्मद इस्तियाक को, और उन लोगों को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा जो बीच रास्ते में छोड़कर चले गए और सिखा गए कि हर वक्त एक जैसा नहीं होता। ट्रू।

विशाल मल्होत्रा जी जुड़ गए हैं सिरसा हरियाणा से, लिखते हैं कि मातृभाषा समझ के लिए, समझने के लिए अपनी भाषा विश्वास की हमेशा मैं खुशी से मेरी माँ मेरी और बहुत आभारी सभी के लिए सराहना है। इंद्रधनुष रेडियो 102.6 एफएम सुनने के लिए, अच्छी भावना के रूप में रवैया के लिए सबसे अच्छा, सभी आरजेस इंद्रधनुष 102.6 एफएम रेनबो के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू विशाल जी।

एक मैसेज आया है उड़ीसा से, लिखते हैं कि गुड इवनिंग, थैंक यू कहना चाहती हूँ दिल से मेरी फ्रेंड रितु को, क्योंकि उसकी वजह से मैं एक फेक रिलेशनशिप से बच के निकल पाई, उसने मुझे रास्ता दिखा दिया, और थैंक यू दिल से रितु को, और एक सॉन्ग सुनाने की रिक्वेस्ट करूँगी आपको। आगे क्या सॉन्ग लिखा है समझ नहीं आया। थैंक यू सो मच, आपने मैसेज किया है इस प्रोग्राम में, और देखिए ये प्रोग्राम रिक्वेस्ट बेस्ड नहीं है, और अच्छी बात है आपकी दोस्त ने आपको बचा लिया, क्योंकि कई बार इस तरह के रिलेशनशिप में इंसान फंस जाता है और निकलना मतलब एक ऐसा भंवर होता है जिससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप रितु को वाकई में दिल से थैंक यू बोलेंगी और बोल रही हैं तो अच्छा लगेगा उनको। मनीष शर्मा दिल्ली से जुड़े हैं, लिखते हैं कि आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑल इंडिया रेडियो को, हमारे एफएम रेनबो को, और जो बिना एडवर्टाइजमेंट के या कहो कि सोशल वेलफेयर के एडवर्टाइजमेंट के साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं और लगातार एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं जी। मनीष शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से जुड़े हैं, लिखते हैं कि आदरणीय गीतू जी सादर प्रणाम, आपको भी मेरा प्यारा सा नमस्कार, कार्यक्रम सुन रहे हैं हम मैसेज मसाला मिक्स, और दुनिया में माता पिता ही अपने बच्चों को निस्वार्थ प्रेम करते हैं, हमेशा अपने बच्चों का अच्छा सोचते हैं, आपकी सानिध्य और जीवन बहुत शुभ और सुखद हो। थैंक यू सो मच आप तीनों का कि आप प्रोग्राम सुनते हैं और अपना फीडबैक, अच्छी अच्छी बातें आप मेरे साथ शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच। और आपने सही कहा कि पेरेंट्स का ही प्यार एक ऐसा होता है दुनिया में जो निस्वार्थ होता है, उसके पीछे किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं होता, थैंक यू सो मच। हम ये एक मैसेज मेरे पास धामपुर, कृष्णचंद श्रीवास्तव शुगर मिल धामपुर से, जी हाँ धामपुर की चीनी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो क्या लिखते हैं आप, लिखते हैं कि गीता जी नमस्ते, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, मैं 4 महीने से गोरखपुर रह रहा हूँ, मैं अपने प्रिय मित्र प्रेमचंद प्रेमी जी को थैंक यू कहना चाहता हूँ, वो मुझे रोज़ाना फ़ोन करते हैं और मेरा हालचाल लेते हैं, थैंक यू सो मच कृष्णचंद श्रीवास्तव जी। शायद प्रेमचंद प्रेमी हमारे प्रोग्राम के बहुत ही रेगुलर लिसनर हैं और मुझे अभी तक उनका मैसेज इस प्रोग्राम में दिखाई नहीं दिया है, आई थिंक कहीं बिजी होंगे और आपका जो मैसेज है उन तक मेरा ख्याल है पहुँच गया होगा, थैंक यू सो मच। एक मैसेज आया, लिखते हैं कि मैम पापा वो होते हैं जिसके सिर्फ पापा जी कहने से वो सारी खुशियां मिल जाती हैं, जैसे जिसे पाने के लिए हमने इतनी मेहनत करते हैं, राकेश वोरा बुरारी दिल्ली से। बिल्कुल सही फरमाया आपने, पापा की डेफिनेशन एक बिल्कुल अलग है, माँ की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। अभी इस गाने के बाद मैं माँ पर भी बात करूँगी कि माँ किस तरह से पूरा दिन लगी।

सोनिया त्यागी दिल्ली द्वारका से जुड़ी हैं। बहुत ही खूबसूरत मैसेज उन्होंने लिखा है। लिखती है कि शुक्रिया उन मुस्कानों का जो आपने दी है। वाह क्या बात है। शुक्रिया उन मुस्कानों का जो आपने दी है, शुक्रिया उन खुशियों का जो आपने दी है। रहे यूं ही आपका साया हमेशा, यही दुआ है और दिल से शुक्रिया टू माई पति परमेश्वर प्रदीप त्यागी जी। तो प्रदीप त्यागी जी, आपने सुन लिया, सोनिया जी आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज भेज रही हैं और थैंक यू बोल रही हैं। सही बात है, एवरी रीज़न इज़ अ गुड रीज़न टू बी ग्रेटफुल। जो आज हम इस खूबसूरत से एहसास को इस प्रोग्राम में सेलिब्रेट कर रहे हैं,

भेरू लाल वाकड़ या धाकड़ जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, जो मित्र रोज हमें याद करते हैं और संदेश भेजते हैं। आज उन सभी दोस्तों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू जी।

जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुरा से मेरे साथ बहुत सारे मेरे दोस्त जुड़ गए हैं। मैं नाम पढ़ना चाहूंगी, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह सभी जुड़ गए हैं मेरे साथ। लिखते हैं, नमस्कार, आपको कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। रोज मैं और मेरा परिवार आपका प्रोग्राम सुनते हैं। पसंद भी आ रहा है आपका प्रोग्राम, और प्रोग्राम से अच्छी आपकी आवाज़ लगती है। थैंक यू आप सभी का।

गुड्डू धाकड़ मध्य प्रदेश उज्जैन जिले के बेडवान गांव से जुड़ गए हैं। लिखते हैं कि मैं तो अपने दोस्तों को थैंक यू कहना चाहता हूं जो मुझे अभी राजस्थान घुमा रहे हैं। क्या बात है, थैंक यू गुड्डू साहब। प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो मैं मम्मी पापा और पूरा परिवार को थैंक यू कहना चाहूँगा, दूसरे नंबर पर रेनबो की पूरी टीम को, जो आप हमारा दिन भर मनोरंजन करने के साथ साथ एक अच्छे दोस्त की तरह हमसे बात भी करते हैं, और उसके लिए दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मनीष जुड़े हैं ब्यावरा जिला राजगढ़ से। लिखते हैं कि मैं तो अपने भारत देश के उन सभी किसान भाइयों को थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि वो हर दिन हमारी सांसों को चलने का काम करते हैं, और मैं भी उनमें से एक किसान हूँ। जी हाँ, ये बात तो आपने सही लिखी है, अगर किसान नहीं होते तो हमारी ज़िंदगी कैसे चलती। मैं भी तहे दिल से सारे किसान भाइयों को थैंक यू कहना चाहूँगी।

दीप रावत दिल्ली से जुड़े हैं, बहुत ही खूबसूरत मैसेज इन्होंने लिखा है। टाइम कम होता है मेरे पास, मैं बहुत सारे मैसेजेस अपने प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करती हूँ, इसलिए गाने के बीच में भी मैं जब म्यूज़िक होता है तो मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ। लिखते हैं कि माँ और मेरी प्यारी वाइफ, आप दोनों मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत और खुशी हो। माँ आपके प्यार, दुआओं और हर कुर्बानी के लिए दिल से शुक्रिया, और मेरी जान हर कदम पर मेरा साथ देने, मुझे समझने और मेरी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आप दोनों हैं। रब से हमेशा दुआ है कि आप दोनों हमेशा खुश रहें, सेहतमंद रहें और मुस्कुराती रहें। दिल से शुक्रिया और बहुत सारा प्यार। वाह, बहुत ही खूबसूरत लिखा है आपने, थैंक यू सो मच। आई थिंक अगर वो प्रोग्राम सुन रही होंगी तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होंगी।

वेल पता है आपको, मैं सबसे पहले अपनी माँ को थैंक यू कहना चाहूँगी। ये मैं अपनी बात अब आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि देखिए माँ जो होती है, हमारी अलार्म बजने से पहले जिस इंसान का दिन शुरू हो जाता है वो होती है हमारी माँ। कभी ब्रेकफास्ट, कभी टिफ़िन, कभी पूरे घर की जिम्मेदारी, और अगर वो वर्किंग है, काम पर जाती है, जॉब करती है, तो ऑफिस और घर दोनों को इतनी खूबसूरती से बैलेंस करती है कि अक्सर अपनी थकान को भी स्माइल के पीछे छुपा लेती है। सबसे इमोशनल बात तो यह है दोस्तों कि अगर माँ की तबीयत ठीक ना हो तब भी अपने बच्चे की एक आवाज़ सुनते ही वो तुरंत उठ जाती है, अपना दर्द भूलकर सबसे पहले बच्चे का ख्याल रखती है। और शायद इसलिए कहा भी जाता है कि माँ का प्यार किसी कंडीशन पर नहीं, सिर्फ दिल से चलता है। Isn't it?

नीता जी जुड़ी हैं अमरावती से, लिखते हैं गुड इवनिंग मैम, मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, हर रोज़ सुनती हूँ मैं और अपने मन की बातें साझा करने को मिलता है। जब हमारी कुछ पहचान नहीं थी, हमारी कंडीशन ख़राब थी तो कोई पहचानता नहीं था, लेकिन अभी सब बराबर होने के बाद जो हमको सलाम करते बात भी करते हैं, सभी परिवार को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू नीता जी।

हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये खाना नसीब नहीं होता और हमें जो नसीब होता है हम उसका शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। तो हर पल उस ऊपर वाले का, उस खुदा का, उस भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करें कि हे भगवान, आपने हमें बहुत कुछ दिया है। थैंक

0: बागों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
4: वेल दोस्तों, टाइम हुआ है ऑन द डॉट फ्रॉम माय स्टूडियो क्लॉक 6:56। सुशांत आ चुके हैं प्रोग्राम लेकर अपना स्टूडियो में, और अब स्टूडियो की घड़ी मुझे इजाजत नहीं दे रही कि आपसे और बात करूं। आप सभी का शुक्रिया जिन लोगों ने मेरे प्रोग्राम में मैसेजेस किए, और उन सभी का जिनके नाम मैं इस प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाई, थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगी ठीक 8 बजे। बाय।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: साथ 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

नमस्कार दोस्तों, लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़कर 37 की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अपराधियों को संयम बरतना चाहिए था। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक कर राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल शासन, कौशल विकास और डेटा आधारित प्रशासन पर चर्चा की। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में आज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की व्यापक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें पश्चिम एशिया और उससे आगे बदलती भू राजनीतिक स्थिति का आकलन किया गया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। और भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। ये थे अब तक के एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, घड़ी ने जैसे ही रात के 8 बजाए, समझ लीजिए अब वक्त है खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करने का। दिन भर की भागदौड़, ऑफिस की टेंशन, ट्रैफिक का शोर, अब सबको थोड़ी देर के लिए कह दीजिए गुड बाय, क्योंकि अगले एक घंटे तक आपका साथ निभाएगा सिर्फ और सिर्फ मस्त वाला म्यूजिक। मैं हूँ गीता और आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो। प्रोग्राम है म्यूजिक मस्ती, जहाँ हर गाना अपने साथ लेकर आता है बहुत सारी यादें, मुस्कुराहटें और दिल को छू लेने वाला बहुत ही खूबसूरत एहसास। तो अगर आप घर बैठे रहें, परिवार के साथ हैं, या बस अपनी चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, या फिर कहीं भी हैं, जहां भी हैं, इस खूबसूरत शाम को और भी हसीन बनाइए हमारे साथ। वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए, दिल को संगीत के हवाले कीजिए, क्योंकि अब शुरू हो रही है म्यूजिक मस्ती एक से बढ़कर एक शानदार गीतों के साथ सिर्फ और सिर्फ 102.6 FM रेनबो पर।

वाह क्या बात है, क्या कमाल का गाना था ना दोस्तों, और उससे भी ज्यादा कमाल का उसका विजुअल ट्रीट था। जिस तरह से तृप्ति डिमरी ने अपनी अदाओं, एक्सप्रेशन और ग्रेसफुल डांस मूव से स्क्रीन पर जादू बिखेरा है ना, वो सचमुच देखने लायक है। और इतना ही नहीं, हर स्टेप में कॉन्फिडेंस, हर नज़र में नज़ाकत, और उनका हर मूव इतना ज़्यादा, इतनी अदा थी ना उनके हर मूव में कि क्या बताऊँ, एक अलग ही चार्म नज़र आता है। यही तो होता है दोस्तों जब खूबसूरत म्यूज़िक और शानदार परफॉर्मेंस साथ आ जाए। अगर आपने सिर्फ गाना सुना है तो इसका वीडियो भी ज़रूर देखिएगा।

0: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
1: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
0: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
1: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
5: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
6: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
5: अल्फा जेन,
6: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

वेल दोस्तों, आज की म्यूजिक मस्ती यहीं तक। उम्मीद है कि आज के गीतों ने आपकी शाम को थोड़ा तो खूबसूरत जरूर बनाया होगा और थोड़ा म्यूजिकल भी बनाया होगा। रिमेंबर वन थिंग, लाइफ इज बेटर विद ब्यूटीफुल गुड म्यूजिक। जब भी थोड़ा सा थका थका लगे, आपको अपनी पसंद का कोई भी गाना जरूर सुनिए, क्योंकि संगीत वो जादू है जो बिना कुछ कहे भी दिल की हर बात समझ लेता है। मैं हूँ गीता, अब आपसे इजाजत चाहूंगी, फिर मुलाकात होगी क्योंकि चांद आ चुकी है बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम लेकर, तो आप उनके साथ रहिएगा। मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी सेम डे एंड सेम टाइम। टिल देन, गुड नाइट।

न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया है। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन तेज। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय खिलाड़ी महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार और आप सुनते रहिए रेनबो हमारे साथ लगातार।

नमस्कार, रात्रि के 9 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसके विधेयक के अंतर्गत भारत के मुख्य न्याय

हाय फ्रेंड्स, आज की रात उन तमाम रातों से अलग है जिनमें आप हमारे साथ नहीं थे। हम सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच। अगर आपको हमारी बात पर एतबार नहीं है तो अपने दिल पर हाथ रखिए, तो रखिए ना, अपनी धड़कनों से पूछिए तो जरा जनाब, क्योंकि एक दिल दूसरे दिल की सारी बातें जानता है। और जानते हैं दोस्तों, आपका दिल क्या कह रहा है। तो चलिए जल्दी से अपनी आंखें बंद कीजिए और सिर्फ हमें सुनिए। आपकी याद आती रही, आपकी याद आती रही।

0: हम भी नहीं रह पाते आपके बिना, इसलिए बस हम अभी आते हैं।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
0: और दोस्तों यकीन जानिएगा, हम नहीं जानते ये क्या है, शायद ये कोई दीवानगी है या कोई पहेली, या ये भी हो सकता है कि ये मौसम की खुमारी हो, पर कुछ ना कुछ तो है जो अपनी ही धड़कनें हमें इतनी जोर से सुनाई दे रही है, इतनी जोर से कि क्या आपको भी अपनी धड़कनों का शोर सुनाई दे रहा है।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि ये दुनिया कितनी बड़ी है और इतनी बड़ी दुनिया में न जाने कितने कितने सारे लोग रहते हैं और इतने सारे लोगों में से भी हम कितने सारे लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन उनमें से भी कोई एक ही दिल में कुछ इस कदर समा जाता है कि उसके अलावा बाकी सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। और ये कुदरत का कमाल ही तो है कि प्यार वाला जादू भी सबके साथ नहीं होता, उसके लिए बहुत किस्मत वाला होना पड़ता है।
2: होता है क्या जादू, तू जाने या मैं जानूं।
1: जैसे कि आप हो, जैसे कि हम हैं,

दोस्तों, दिल को अगर किसी की मुस्कुराहट की आदत हो जाए तो भी इजहार से पहले हजारों सवाल उठते हैं। एक अजीब सी कश्मकश होती है, नजरें इकरार करना चाहती है मगर दिल बार बार ठहर कर सोचता है कि कहीं ये एहसास एक तरफा तो नहीं। वैसे ये सवालात ज़रूरी भी है और लाजमी भी, क्योंकि अगर सारे सवाल पहले ही कर लिए जाएँ तो बाद में सिर्फ प्यार बचेगा, सवाल की तो जगह ही नहीं बचेगी। दिल के इस नाजुक सवाल और नाजुक से सवाल और मासूम उलझनों के साथ आकाशवाणी रेनबो पर चांद के साथ आपकी याद आती रही।

0: पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: बदल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अच्छा आप ही बताइए दोस्तों, क्या मौसम का और यादों का आपस में कोई रिश्ता हो सकता है? आप क्या बोलोगे? हमें नहीं पता, पर हमें ऐसा लगता है कि मौसम का और यादों का रिश्ता बेहद गहरा होता है। तभी तो हर साल की हर बारिश की हर बूंद न सिर्फ दिल धड़काती है बल्कि होंठों पर एक मुस्कान भी दे जाती है, और उस मुस्कान पर हर बार लिखा होता है आपका नाम, मतलब उनका नाम जो आपके दिल पर लिखा हो, जिनकी याद आपकी आती हो और जो आपके दिल के बेहद करीब हो।

दोस्तों हर दिन का एक उसूल है जिसमें सूरज का उगना, चिड़ियों का चहचहाना, गाय का रंभाना, लोगों का चलना फिरना शुरू होना, थोड़ी बहुत गाड़ियों की आवाज़ें आना वगैरह वगैरह शामिल है, है ना। लेकिन क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि किसी सुबह आप जागे, आपने आंखें खोली और ये सब कुछ आपको दिखाई देना बंद हो जाए, कुछ सुनाई ना दे, क्योंकि आपको मोहब्बत हो चुकी हो? क्योंकि मोहब्बत का एहसास होता ही इतना खूबसूरत है। चलिए इस एहसास को और करीब से जानते हैं इस खूबसूरत से नगमे के जरिए।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

0: All right, that's Chubby Checkers with Let's Twist Again. You know what? I was just hearing the song and it reminded me that during my young days, I saw a film which was by Mahmood, of course, and he sang the same song almost. The Hindi version of the song, Aao Twist Kare. I don't know if you've heard of it or not, but now I remember that it was sung by Manna Day. And it was picturized on Mahmood. Lovely song and lovely movie as well. If you haven't seen it, go then do check it out. And you will find out the difference. Yes, there's not much difference between these two songs yet. Oh yeah, but anyway, that's how things move on. Anyway, this is 1961 that you heard with the Chubby Checkers. Let's Twist Again. Time on the street clock, 28 minutes past 10 p.m. I'm going to take a short and sweet break and I'll be right back after these messages. You do not need to go anywhere because after these messages, we've got plenty of more songs from the 60s. You're listening to the Rainbow Classics with me, your very own Satan. That's a shout for you. All from Rainbow. And break time.
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: कोयल सी तेरी बोली,
5: हाय
4: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
7: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
6: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
8: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
9: ठीक है,
8: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।

0: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
2: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा, कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए तरीके आजमा रहे हैं।
0: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्रों में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में अफ्रीका दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अफ्रीका के विकास में उसकी प्राथमिकताओं के अनुसार सहयोग कर रहा है। भारतीय रेल ने कंटेनर ट्रेन चलाने वाले ऑपरेटर्स के लिए नियमों में बदलाव को मंजूरी दी। अब कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर एक ही अखिल भारतीय लाइसेंस के तहत भारतीय रेल के सभी मार्गों पर कंटेनर ट्रेन चला सकेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सिलक्यारा सुरंग बचाओ अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रैट माइनिंग श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में आज ललित कला अकादमी का 72वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया और कोरिया

मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार और आप सुनते रहिए रेनबो हमारे साथ लगातार।

मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिसका फिर पे दम निकले। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। आदाब नमस्कार दोस्तों, वादे के मुताबिक हम हाज़िर हैं रंगे महफिल के साथ। ये वो महफिल है जो आपके बिना, आपके साथ के बिना अधूरी है, और आकाशवाणी रेनबो पर आपके बिना अधूरा है ये चांद भी।

0: दोस्तों, कुछ लोग ज़िंदगी से चले भी जाएं तो भी दिल की बस्तियों से कभी रुखसत नहीं होते। वो ख्याल बनकर साथ चलते हैं, ख्वाब बनकर आंखों में ठहरते और याद बनकर हर धड़कन के साथ धड़कते हैं। शायद इसी एहसास का नाम इश्क है, जहां तसव्वुर में होने वाली मुलाकात ज़्यादा मायने रखती है बनिस्बत रूबरू मुलाकातों के। आइए हम और आप मिलकर इस कैफियत में एक साथ डूब जाते हैं।
1: वो गुजर रहे हैं,
0: कुछ खास है ये कैफियत।

0: रंग महफिल की गज़लों का रंग तो है ही, साथ ही इसका रंग आप ही हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप यूं ही हमारे साथ लगातार बने रहिएगा।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
0: दोस्तों, इश्क जब अपने इंतहा पर पहुंचता है तो मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं रहती, वो जीने की वजह बन जाती है। फिर किसी का साथ खुशी नहीं, जज्बात बन जाता है, ज़रूरत बन जाता है, और उसकी जुदाई दिल का सबसे गहरा ज़ख्म। पता है, मोहब्बत जैसी शय इतनी नाजुक होती है कि उसे लफ्ज़ों से बयां कर पाने का अख्तियार हर किसी को हासिल नहीं होता। तभी तो गज़लें मरहम की मानंद बेपनाह इश्क, वफा और तड़प की दास्तान सुनाकर बेचैन दिल को सुकून पहुंचा दिया करती है, सुकून मुहैया कराती है। आपके बिना ये सफ़र अधूरा है, ये महफिल अधूरी है।

हर मोहब्बत की अपनी पहली एक दस्तक होती है, जिसके आगाज़ का रंग भले ही अलग हो, लेकिन मोहब्बत के बाद दिलों जहन में होने वाली तब्दीलियां तकरीबन एक जैसी होती हैं। हाँ, इसके अंजाम में फ़र्क हो सकता है, और मोहब्बत का हर अंजाम तय होता है इस बात से कि दोनों की मोहब्बत में उसकी तासीर कितनी है। समझ रहे हैं ना आपकी हम क्या कह रहे हैं? अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, चलिए गज़लों के ज़रिए मिलकर समझेंगे।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
6: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

दोस्तों, हर कहानी का अंजाम हमारी मर्जी का नहीं होता। कुछ ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, कुछ रिश्ते वक्त की गर्द में धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी जीने का हुनर तो यही सिखाता है कि हर कमी के साथ जीना सीख जाए। और यही हमें जीवन सिखाता है, जो साथ है उसकी कद्र करें, जो चला गया उसे दुआओं में याद रखें, क्योंकि हर खुशी मुकम्मल हो ना हो, लेकिन फिर भी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है। तो चलो यूं ही सही, इसी खूबसूरत सोच के साथ पेश खदमत है ये अगली गज़ल, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो इस वक्त हमारे साथ है।

यादें कभी दस्तक नहीं देती, वो तो बस किसी मिसरे, किसी खुशबू या किसी धुन के बहाने दिल में उतर आती हैं, और फिर आंखों के सामने गुजरे हुए मौसम, अधूरे वादे, रूठी हुई मुस्कुराहटें और बिछड़े हुए लोग एक एक करके लौटने लगते हैं। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि वो ख़त्म होकर भी कभी ख़त्म नहीं होती, और वो याद बनकर हमेशा साथ चलती है, जिसका बेहद नफीस और दर्द भरे बयान की वानगी है ये खूबसूरत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

धन्यवाद चांद, बहुत ही खूबसूरत शो के लिए, बहुत खूबसूरत गीत संचयन के लिए। गज़लें और ठुमरी का बेजोड़ मिश्रण सुनने को मिला आज। फिलहाल हम बढ़ चुके हैं घड़ी की उस तरफ जहां उसने बताया कि 12 बज चुके हैं और दिन का कैलेंडर भी बदल चुका है, और क्योंकि हम अगले कैलेंडर में दाखिल हो चुके हैं अगले दिन में, तो सुनते हैं इस दिन के पहले घंटे के मुख्य समाचार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा में डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक भी पारित हुआ। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डी फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में अफ्रीका दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अफ्रीका के विकास में उसकी प्राथमिकताओं के अनुसार सहयोग कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास लैंडमाइन विस्फोट में सेना के 2 जवान घायल। भारतीय रेल ने कंटेनर ट्रेन चलाने वाले ऑपरेटरों के लिए नियमों में बदलाव को मंजूरी दी। अब कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर एक ही अखिल भारतीय लाइसेंस से भारतीय रेल के सभी मार्गों पर कंटेनर ट्रेन चला सकेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों के अनिश्चितकालीन हड़ताल से ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। राज्यसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2024-25 के सर्वेक्षण में देश के किसी भी जिले में हाथ से मेला ढोने वाले कर्मी नहीं पाए गए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रेट माइनिंग श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया, और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, और आप जुड़ चुके हैं सहजता के साथ हमारे दैनिक कार्यक्रम दैनिक प्रस्तुति जीरो और शो में। मेरे यानी रजत के साथ आप सभी का स्वागत। बस कुछ

0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा है इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। कैसे डिपॉजिट करेंगे? डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
8: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

नमस्कार, प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा में डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक भी पारित हुआ। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारेंडोस से मुलाकात की। भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र की संभावनाओं पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने नई दिल्ली में अफ्रीका दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अफ्रीका के विकास में उसकी प्राथमिकताओं के अनुसार सहयोग कर रहा है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक कल ताशकंद में हुई। देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, रक्षा शिक्षा, क्षमता निर्माण और रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। भारत ने पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास लैंडमाइन विस्फोट में सेना के 2 जवान घायल। भारतीय रेल ने कंटेनर ट्रेन चलाने वाले ऑपरेटरों के लिए नियमों में बदलाव को मंजूरी दी। अब कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर एक ही अखिल भारतीय लाइसेंस से भारतीय रेल के सभी मार्गों पर कंटेनर ट्रेन चला सकेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से ओपीडी सेवाएं प्रभावित। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रेट माइनिंग श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रिंबो पर करते हैं हम एक बार फिर से आपका स्वागत अपने एक नए कार्यक्रम में जिसका नाम है सुहानी रात। तो आइए मिलकर इन सुहाने गीतों के साथ, मधुर गीतों के साथ बनाते हैं अपनी रात को सुहावना और सुनते हैं कुछ बेहतरीन गीत।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

नमस्कार, मध्यरात्रि के 2 बज चुके हैं। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा में डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक भी पारित हुआ। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस से मुलाकात की। भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र की संभावनाओं पर इस मुलाकात में चर्चा की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में अफ्रीका दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अफ्रीका के विकास में उसकी प्राथमिकताओं के अनुसार सहयोग कर रहा है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की 6 बैठक कल ताशकंद में हुई। भारत ने पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास लैंडमाइन विस्फोट में सेना के 2 जवान घायल हो गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से सेवाएं बाधित। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। ये थे मुख्य समाचार अब तक के। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भुलाए ना बने मेरे यानी रजत के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आप सभी का इस कार्यक्रम में रहेगा स्वागत। मिलते हैं, जुड़ते हैं बस थोड़ी देर में।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना

0: भूले।
1: रेनबो डेस्टिनेशन
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा है इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए। यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा में डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक भी पारित हुआ। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस से मुलाकात की। भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र की संभावनाओं पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने नई दिल्ली में अफ्रीका दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अफ्रीका के विकास में उसकी प्राथमिकताओं के अनुसार सहयोग कर रहा है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई का आग्रह किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक कल ताशकंद में हुई। भारत ने पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास लैंडमाइन विस्फोट में सेना के 2 जवान घायल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से सेवाएं बाधित। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: जी खड़े खड़े क्या देख रहे हैं आप?
1: कमाल है, उस चांद को घंटों देखता रहा, उसने एक बार भी नहीं टोका।
0: तो चांद को ही देखे ना।
1: मगर वो सांस नहीं लेता।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

में डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक भी पारित हो गया है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीफेक सामग्री और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस से मुलाकात की। भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र की संभावनाओं पर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में अफ्रीका दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अफ्रीका के विकास में उसकी प्राथमिकताओं के अनुसार सहयोग कर रहा है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में यह मुद्दा उठाया। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक कल ताशकंद में हुई। भारत ने पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास लैंडमाइन विस्फोट में सेना के दो जवान घायल हुए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से सेवाएं बाधित हुई हैं। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। 4:02:42 समय है कार्यक्रम सारे गामा का। नए पुराने फिल्मी गीतों के इस मधुर सफर को बस अब थोड़ी देर में हम करेंगे शुरू मेरे यानी रजत के साथ। इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी, देश और दुनिया के कोने कोने और हर हिस्से से जुड़ने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए अगर नहीं किया तो। मैं हूँ रजत, आप सभी का स्वागत प्रोग्राम सारे गामा में।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
9: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

नमस्कार, प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा में डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक भी पारित हुआ। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के

हुई। भारत ने पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र में हिंसा रोकने के लिए और आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास लैंडमाइन विस्फोट में सेना के 2 जवान घायल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से सेवाएं बाधित। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया

0: अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।